स्टूडेंट्स के साथ नदी में नहाने के लिए गए। उन्होंने देखा कि किनारे पर एक परिवार के ही सदस्य थे जो बड़े ही गुस्से में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़े, मुस्कुराए और पूछा, ये लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं? स्टूडेंट्स कुछ देर सोचते रहे। उनमें से फिर एक ने कहा, जब हम शांति खो देते हैं तो हम चिल्लाने लगते हैं। तो सूफी ने पूछा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति बगल में ही खड़ा है तो चिल्लाते क्यों हैं? बात नरमी से भी तो कही जा सकती है। स्टूडेंट्स ने कुछ और जवाब दिए लेकिन सूफी को मजा नहीं आया। आखिरी में सूफी ने समझाया, देखो जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं तो उनके दिल बहुत दूर हो जाते हैं। उस दूरी को कम करने के लिए वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं जिससे कि बात सुनाई दे जाए। वो जितने गुस्से में होते हैं उतनी दूरियां उनकी बढ़ती जाती हैं। फिर उसे कम करने के लिए दरअसल वो चिल्लाते हैं। दोस्तों सोचिए ना, परिवार में ही दो लोग बिल्कुल बगल बगल में ही खड़े होते हैं लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ उस वक्त उनके दिल दूर दूर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ने पूछा, अच्छा क्या होता है जब दो लोग प्यार में होते हैं? सूफी संत ने कहा, वो धीरे धीरे बातें करते हैं, उनके दिल करीब हो जाते हैं, उनकी बीच की दूरियां ना के बराबर हो जाती हैं, इसलिए चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह दोस्तों, ये बात तो सही है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो चिल्ला कर कभी बात नहीं करते, वो दरअसल फुसफुसा के बात करते हैं। इसका मतलब हुआ उनके दिल काफी नजदीक होते हैं। सूफी ने आगे कहा, जब वो और अधिक प्यार करते हैं तो उनका तो बोलना ही बंद हो जाता है, कानाफूसी करने से या सिर्फ देखने भर से काम चल जाता है। इसलिए दोस्तों, दिलों को दूर

आइए दोस्तों बात करते हैं गुस्सा करने से, क्रोध से कितना नुकसान होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है। दलाई लामा जी कहते हैं, कठिन परिस्थितियों में गुस्से से बचकर धैर्य के साथ काम करने से आप उन सभी बुरे परिणामों से बच सकते हैं जो

गुस्सा आने पर किसी भी व्यक्ति को भोगने पड़ सकते हैं। कई बार आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको कठोर कदम लेने पड़ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ठोस कदम आप गुस्से में आकर उठाने के बजाय करुणा और दूसरे के प्रति चिंतित होकर भी तो उठा सकते हैं। किसी के विरुद्ध बहुत कठोर कदम उठाने का एक कारण ये भी है कि अगर आप अपने साथ हुए अन्याय या नुकसान को यूं ही नजरअंदाज करेंगे तो उस बात का खतरा रहता है कि उस व्यक्ति को वैसा नकारात्मक व्यवहार करने की आदत पड़ जाए, जो कि आगे चलकर दरअसल उसी व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए कठोरता से विरोध करना जरूरी है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसा दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा और चिंता के कारण कर रहे हैं। ऐसा कीजिए, एक स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें कोई आदमी जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, जो आपके निकट है और आपको प्रिय भी है, किसी खास स्थिति में गुस्सा हो जाता है। ऐसा किसी कटु संबंध में होता है या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में जहां निजी तौर पर कुछ परेशानी हो। उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पूरी तरह से अपनी मानसिक शांति खो बैठता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक तरंगे छोड़ रहा होता है, यहां तक कि खुद को मार रहा होता या चीजें तोड़ रहा होता है। उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा किए हुए गुस्से के परिणामों के बारे में सोचिए तो आप उस व्यक्ति में शारीरिक बदलाव होता हुआ महसूस करेंगे। वो व्यक्ति जो आपके नजदीक है, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे देख लेने से ही आपको अच्छा लगता है, अब एक बहुत ही गंदा और कुरूप व्यक्ति में बदल चुका होता है। मैं ये आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कल्पना करने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपनी तुलना में दूसरों के दोष देखना आसान होता है ना। तो अपनी कल्पना की मदद से कुछ देर इस पर ध्यान लगाइए। तो अब इसके बाद इसी स्थिति का विश्लेषण कीजिए और उन्हीं स्थितियों में अपने अनुभव के साथ जरा जोड़कर देखिए। सोचिए कि आप खुद ऐसी अवस्था में कितनी बार आ चुके होंगे जब आप बेहद गुस्सा हो गए होंगे, चीख रहे होंगे और नकारात्मक ऊर्जा दे रहे होंगे। दृढ़ निश्चय कीजिए तब जरा अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति को कुरूप और गंदा देख रहे थे, आप कैसे दिख रहे होंगे। अब तय कीजिए कि मैं खुद को गुस्से और घृणा से बचा कर रखूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरी भी वही दशा होने वाली है जो उस व्यक्ति की हुई, जो दरअसल मेरा प्रिय था लेकिन गुस्से में उसने सब बर्बाद कर दिया। मेरा भी यही परिणाम होगा, मेरी भी मानसिक शांति खत्म हो जाएगी, मैं भी धैर्य खो बैठूंगा और उसी तरह कुरूप बन जाऊंगा। अब इस निर्णय लेने के बाद ध्यान के अंतिम कुछ मिनटों में बिना और कुछ विश्लेषण किए अपने दिमाग को उस निष्कर्ष पर फोकस कर दीजिए, केंद्रित कर दीजिए। अपने दिमाग को उस गुस्से और घृणा के प्रभाव से दूर हटा लीजिए। स्वयं ही कहिए, मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा, होने ही नहीं दूंगा। इसी दृढ़ निश्चय को पैदा करते रहिए। बस कुछ ही मिनटों में अपने मस्तिष्क को उस दृढ़ता पर केंद्रित रहने दीजिए और आप एक खूबसूरत इंसान के रूप में निकल कर आएंगे। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

इस बेचैन संसार में हर कोई किसी न किसी तरह की शांति, खुशी या कोई आश्रय पाने के लिए तरस ही रहा है। ऐसे में हम आखिर क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, इसका पता लगाना हमारे लिए जरूरी तो है ना। शायद हम में से ज्यादातर लोग अशांति, युद्ध, संघर्ष, कलह से भरे हुए इस संसार में एक ऐसा आश्रय चाहते हैं जहां पर कुछ शांति हो। इसलिए हम खोज में लगे हैं। हम एक के बाद एक दूसरे नेताओं के पीछे, एक धार्मिक संगठन से दूसरे धार्मिक संगठन के पीछे, या फिर एक गुरु से दूसरे गुरु के पीछे दौड़ते रहते हैं। मगर क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं, या किसी भी तरह से बस तुष्टि, मौज मजे की तलाश कर रहे हैं, जिससे खुशी पा लेने की उम्मीद रखते हैं हम। खुशी और तुष्टि में देखिए दोस्तों अंतर है। क्या खुशी को खोजा जा सकता है, सोचिए। खुशी आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज है। वो किसी और चीज के साथ अचानक ही चली आती है। यहां बहुत तेज जिज्ञासा, ध्यान, सोच, ख्याल की जरूरत है दोस्तों। ऐसे किसी चीज की खोज में लगने से पहले हमें पता लगाना चाहिए कि हम पाना क्या चाहते हैं दरअसल, खुशी या तुष्टि। तुष्टि का मतलब सेटिस्फैक्शन, पूर्णता। मुझे लगता है अधिकतर लोग तुष्टि की तलाश में हैं, खुशी की नहीं। वो संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी खोज के आखिरी में पूर्णता का एहसास करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शांति खोज रहा है तो वो उसे बड़ी आसानी से पा सकता है। आंखें मूंदकर अपने आप को किसी उद्देश्य, किसी विचार के लिए समर्पित कर दीजिए और उसमें आश्रय ले लीजिए। निसंदेह ऐसा करने से समस्या का हल तो नहीं हो जाएगा, किसी विचार के घेरे में अपने को अलग थलग कर लेने से हमारे मन में जो उलझन चल रही है उससे मुक्ति तो नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपने भीतर और बाहर पता लगाना होगा कि वो क्या है जिसे हम में से हर कोई चाहता है। यदि हम इसके बारे में साफ हैं तो हमें किसी गुरु के पास, किसी उपासना गृह में या संगठन में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए हमारी कठिनाई अपनी मंशा में साफ होने की है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि दरअसल हमें चाहिए क्या। सारी तकलीफ तो यही है। क्या इसके बारे में हम साफ हो सकते हैं? हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे धार्मिक आध्यात्मिक सभाओं में जाते हैं, चर्चाएं करते हैं, संगठनों को ज्वाइन कर लेते हैं, और इस तरह से इस उलझन का, अपने जीवन के क्लेशों का समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। और यदि हम ये सब नहीं कर पाते तो सोचने लगते हैं कि हमने पा क्या लिया। यानी कि हम कहने लगते हैं कि कोई विशेष संगठन ऐसा है, कोई विशेष गुरुजी, कोई आचार्य, कोई ग्रंथ ऐसा है जो हमें संतुष्ट करता है। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो शायद उसमें मिल जाएगा, और बस हम उसमें जड़ होकर, कैद होकर रह जाते हैं। बाहर की तरफ देखना ही नहीं चाहते हम।

दोस्तों कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए। दोस्तों जब आप खुशी को नहीं जानते तो महज ये एक विचार है, और जब आप इसे जानते हैं, खुशी को जानते हैं, तो वो आप ही हैं। खुशी एक इंसान की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जब आप भीतर से आजाद महसूस करते हैं तभी तो खुशी दिखाते हैं। जब हम अपने स्वभाव से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि ये बात बड़ी अजीब सी है कि खुद खुशी का स्रोत होने के बावजूद हम इसे दूसरी जगहों पर ढूंढते रहते हैं। हमें उनके कारणों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। ऐसा क्या है जो हमारी खुशी को प्रभावित करता है? पहला स्वास्थ्य हो सकता है, हेल्थ हो सकती है। दूसरा हमारे आसपास का माहौल, पर्यावरण हो सकता है। और तीसरा शायद दिल, हमारा विचार। चौथा हो सकता है महत्वाकांक्षा, हम चाहते क्या है जिंदगी में, हम हमेशा क्या उसी को सोचते रहते हैं। कई बार वो चीजें भी हमें दुखी कर सकती हैं। मान लीजिए कि ये जो ऊपर मैंने चार बताए, स्वास्थ्य, पर्यावरण और तीसरा चित्त, हमारा मानस, चौथा महत्वाकांक्षा, इनमें से फर्ज कीजिए हमारे पास तीन हैं, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं तो ये हमारी स्थिति को उत्तेजित कर देगा। अब इच्छा का मतलब है भविष्य में इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से खुशी दिखाना। यदि आप कहें कि जब आप सभी इच्छाओं से छुट्टी पा लेंगे तब खुश होंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं दोस्त। चुनौती अपनी गतिविधियों को छोड़े बिना खुश रहने में है। ये एक ऐसा कौशल है जो सीखा जा सकता है। इसके लिए छोटे बच्चों से बेहतर कोई शिक्षक नहीं मिलेगा आपको। उनको गौर से देखिए, उनकी आकांक्षाएं तो बहुत होती हैं, फिर भी वो पल में खुश हो जाते हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वही करते हैं जो जरूरी है, लेकिन वो उन तक ही सीमित नहीं रहते। उनका मन बहुत ही आसानी से एक चीज से दूसरी चीज पर चला जाता है। हमें मन को इच्छा अनुसार निर्देशित करना चाहिए और किसी भी चीज पर अटके नहीं रहना चाहिए। देखिए, खुशी एक विचार है, एक दृष्टिकोण है जिसे विकसित किया जाना चाहिए, मैं मानता हूं। महर्षि पतंजलि ने संतोष या खुशी को एक नियम, एक व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में बताया। आपको खुद को खुशी के मूड में ढालना होगा। वो सिर्फ एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव देखिए आते ही रहेंगे। हर स्थिति में व्यक्ति को खुशी के स्वभाव में बने रहने की कोशिश तो करनी होगी। दुनिया की किसी भी चीज को अपनी खुशी में खलल न डालने दें, दृढ़ संकल्प करें। बहुत सारे सन्यासियों के नाम आनंद से खत्म होते हैं। उनका नाम ही उन्हें याद दिलाता है कि वो आनंदमय हैं। वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते और चारों ओर खुशियां फैलाने में लगे रहते हैं। कोई भी मनुष्य अपने घर, परिवार या अड़ोस पड़ोस से कटके नहीं रह सकता। यदि परिवार में एक व्यक्ति दुखी है तो इसका प्रभाव तो दूसरे सदस्यों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहना बिल्कुल बेकार होगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दुखी रहो, होगा ही नहीं ऐसा। हालांकि खुशी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, पर यह हमारे चारों तरफ के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जब अगली गली में दंगे हों तो अंदाजा लगाइए आपकी गली क्या खुश हो सकती है। इसलिए हमें अपने साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम खुश हो पाएंगे। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

भक्त नरसी मेहता जूनागढ़ सौराष्ट्र में गृहस्थ जीवन बिताते हुए भगवान की पूजा उपासना और रोगियों की सेवा में लगे रहते थे। वो अपने रचे हुए पदों पर तन्मय होकर गाया करते थे और बस श्रोता मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। एक दिन दलित समुदाय के एक भक्त ने उनसे पूछा, क्या आप मेरे घर आकर संकीर्तन करेंगे और हमें पवित्र करेंगे? मेहता जी ने कहा, कीर्तन क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल मैं करूंगा, तुम तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। नरसी मेहता उसके घर पहुंचे। बहुत तन्मय होकर उन्होंने भगवान का संकीर्तन किया, प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद उनकी जाति के कुछ रूढ़िवादी सवर्णों को जब ये पता चला कि नरसी जी एक दलित के यहां जाकर कीर्तन करके आए हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने पंचायत पर नरसी मेहता को दलित के घर कीर्तन करने के आरोप में जाति से बहिष्कृत कर डाला। नरसी मेहता जी ने सवर्ण जाति के मुखिया से बहुत विनम्रता से कहा, भगवत भक्तों की कोई जाति नहीं होती प्रभु, जो भी एक साथ कीर्तन करते हैं वो सब एकाकर होकर एक ही जाति के हो जाते हैं। आप लोगों ने तो मुझ पर बड़ा एहसान किया कि केवल एक जाति के दायरे से मुझे निकाल दिया। अब मैं बहुत बड़ी जाति का एक सदस्य हूं, मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मुखिया सारंगधर भक्त नरसी का मुंह देखते रह गया।

दोस्तों, आप भीतर से कितने भी धनवान हैं, ये बात ही आपको वास्तविक रूप में संपदा से संपन्न बनाती है। इस संपदा का एक बड़ा भाग है हमारे निजी अनुभव। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो केवल सीखने और अनुभव करने के लिए। जी हां, अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे तो प्रेम हो गया है, अब मैं क्या करूं, तो आप प्रेम में कमजोर मत पड़िए, उसे अपनी ताकत बनाइए। देखिए, प्रेम एक अनुभव है, आपको इसका अनुभव करना चाहिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम अनुभव का एहसास इतनी आसानी से नहीं कर सकते जब तक कि हमारा अतीत प्रदूषित हो। मतलब कि अगर हम पीछे से परेशान होकर आए हैं तो अनुभव का एहसास हमारे अंदर ठीक से आएगा नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाता कि हम नाश्ते की टेबल पर बैठकर अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में ऑफिस की डांट का अनुभव चल रहा होता है। क्यों? ये विचार हमारे वर्तमान के सुखद अनुभव को खराब कर देता है। मनुष्य को अतीत के अनुभवों के बजाय वर्तमान को सुखद अनुभवों में परिवर्तित करना चाहिए। मतलब अभी इस वक्त, इस पल में जिए।

0: रहस्यदर्शी संत कबीर जी ने कहा था कि ढाई अखर प्रेम का।
1: उसी चीज को लेकर बहुत सारे संतों ने बहुत सारी बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रेम जो है आत्मा का भोजन है, प्रेम आत्मा में छिपी हुई परमात्मा की ऊर्जा है, प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है, प्रेम को जीवन और परमात्मा के बीच संगीत की संज्ञा दी गई और कहा गया कि प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं है, तुमसे विराट अपनी उंगलियां तुम्हारे ऊपर रखता है। हां, तुम चाहो तो बजने से इनकार कर सकते हो, तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो, तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की उंगलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा ही नहीं कर पाएंगी। वो कहते हैं कि जब तुम प्रेम में होते हो तो किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया, किसी ने सोए हुए तारों को छेड़ दिया, बस वही प्रेमी हो जाता है। वो प्रेमी हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है जिसने आपके दिल के तार छेड़े, लेकिन प्रेम का स्वर एक ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कोई नाता रिश्ता बनाते रहो लेकिन अचानक कोई एक घटना घट जाती है, ये मूल्यवान है, समझ लेना इसको। प्रेम के तीन तल होते हैं। देखिए, प्रेम एक इंद्रधनुष है, उसमें कई रंग हैं, निम्नतम से लेकर श्रेष्ठतम तक, काम से लेकर राम तक। प्रेम कोई एक आयामी घटना नहीं है, बहुत सारे पहलू होते हैं उसके। मूलतः तीन आयाम समझ लीजिए। पहला आयाम शरीर का, शरीर का प्रेम नाम मात्र को प्रेम है, 1% प्रेम होता है, 99% रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। 1% होते हो तुम, 99% होता है अचेतन। जिस तल पर जानवर जीते हैं उसी तल पर अधिकतर मनुष्य भी जीते हैं। जिन्होंने प्रेम का पहला तल ही जाना वो प्रेम के दुश्मन हो जाते हैं। इस तरह के दुश्मनों ने ही धर्म को बिगाड़ दिया है। प्रेम की ऊंचाइयां जानी नहीं, प्रेम की छोटी होने की बात को करने लगे और तब प्रेम के खिलाफ हो गए। एक तो प्रेम है शरीर के तल का, जो कि जानवर जैसा होता है, विवाह के नाम पर जो चल रहा है बस वही प्रेम है। और दूसरा प्रेम है मन का, जो कविता की तरह होता है, बहुत मानवीय होता है। क्या घटता है प्रेम के दो पलों में? दो व्यक्ति पास आते हैं, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि हम दो हैं, ऐसा भी नहीं लगता कि हम एक हो गए हैं, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम दो हैं। उसी पल में तुम्हें पहली दफा ये पता चलता है कि दो भी हैं और एक भी है, क्योंकि दोनों दिलों के बीच में जो संगीत चल रहा है वो अलग अलग नहीं बज रहा, वो एक ऑर्केस्ट्रा है, एक साथ बज रहा है। उसमें एक लयबद्धता है, एक के बीच में दो लोगों के होने का अनुभव है, दो के बीच में एक के होने की अनुभूति भी है। प्रेम जो है वो एक पहेली हो जाती है और बस यही खोज धार्मिक खोज में बदल जाती है। यही प्रेम प्रार्थना बन जाता है, वही प्रेम परमात्मा को तलाशता है, क्योंकि वही प्रेम फिर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में नहीं रह जाता, वो प्रेम तो फिर व्यक्ति और अव्यक्ति के बीच में हो जाता है, यानी कि प्रभु के बीच में, यानी कि परमात्मा के बीच में हो जाता है। वो प्रेम तो फिर अंश और समग्र के बीच हो जाता है, बूंद और सागर के बीच हो जाता है।

चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। हम अक्सर बोल देते हैं, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी राशि ऐसी ही है। लेकिन क्या सिर्फ राशि एक टैग है, या फिर एक दर्पण है जिसमें हम अपनी आदतें, अपनी डर, अपनी ताकत देख सकते हैं? आज हम सरफेस लेवल के ट्रेड्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे हर राशि के अंदर छुपे मनोवैज्ञानिक पैटर्न की, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शैडो और उनका जीवन मंत्र। चलिए शुरू करते हैं एक गहरी सच्ची यात्रा। मेष, शुरुआत करने वाले। मेष लोग जन्म से पायनियर होते हैं, इनके अंदर एक अलग सी आग होती है कुछ नया करने की। इन्हें रुकना पसंद बिल्कुल नहीं है, इन्हें कंपीट करना बहुत पसंद है। साइकोलॉजी के लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा डर अगर मेष राशि वालों को किसी चीज का होता है तो वो ये है कि उन्हें लोग भूल जाएंगे। इसीलिए ये हर जगह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, पहला कदम हमेशा लेना चाहते हैं। पर जब चीजें इनके हिसाब से नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है इनमें। इनकी ताकत इनका करेज, हिम्मत इनकी कमजोरी, इनकी जल्दबाजी और इनका जीवन मंत्र, हर जंग लड़ना जरूरी नहीं है। मेष राशि वालों, कभी कभी शांति भी जीत होती है। वृषभ राशि, वृषभ को सुकून चाहिए और कुछ नहीं, स्टेबल रिश्तों का, स्टेबल करियर का, स्टेबल जीवन का। इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल नीड है सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये लोग तब फलते फूलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि जमीन मजबूत है, पर इसी सिक्योरिटी की वजह से ये बदलाव से बहुत ज्यादा ही डरते हैं। चेंज इन्हें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी लॉयल्टी और इनकी कंसिस्टेंसी, और इनकी कमजोरी इनकी जिद और कंफर्ट जोन से चिपक जाना।

अडैप्टेबिलिटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी डेप्थ यानी गहराई की कमी। सब कुछ ऊपर ऊपर से देखना है, अंदर झांकने की कोशिश शायद इन्होंने कभी नहीं की। इनका जीवन मंत्र, हर बात जानना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसमें गहरा उतरना जरूरी है। कर्क राशि, भावनाओं के रक्षक। कर्क राशि के लोग इमोशनल इंटेलिजेंस से भरे हुए होते हैं। ये लोग रूम का मूड फील कर लेते हैं। इनका सबसे बड़ा नीड है बिलोंगिंग। इन्हें अपनापन चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, एक सेफ स्पेस चाहिए। पर जब उन्हें लगता है कि उनकी केयर का रिटर्न नहीं मिल रहा तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और बहुत गहराई से हर्ट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संवेदनशीलता, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनके मूड स्विंग्स और बार बार पास से जाकर चिपक जाना। इनका जीवन मंत्र, हर याद को संभाल कर रखना जरूरी नहीं, कुछ को आशीर्वाद देकर जाने देना चाहिए। सिंह राशि, प्रकाश के वाहक। सिंह को स्पॉटलाइट पसंद है, पर स्पॉटलाइट सिर्फ ईगो नहीं होता, ये इनकी नेचुरल वॉर्मथ है। साइकोलॉजी के हिसाब से सिंह का सबसे बड़ा डर होता है इग्नोर हो जाना। इसीलिए ये लाउड भी हो सकते हैं और आपको लग भी सकते हैं कुछ ज्यादा ही लाउड, पर इनका दिल बहुत बड़ा होता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी जेनरोसिटी और नेचुरल लीडरशिप। ये कहीं भी किसी भी क्राउड को अपने आप लीडरशिप से मोहित कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका बड़ा सा ईगो। इनका जीवन मंत्र, सच्चा राजा वो है जो सबको साथ लेकर चले। कन्या राशि, कन्या हर चीज को बेटर बनाना चाहती है। इनकी नजर डिटेल्स पकड़ती है और गहराई पकड़ती है। इनका इनर पैटर्न होता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर कभी कभी ये इम्प्रूवमेंट को ऑब्सेशन बना लेते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म इनका सबसे बड़ा बोझ है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका डिसिप्लिन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी खुद पर बहुत कठोर हो जाना। जीवन मंत्र, जो आप कर चुके हैं उस पर गर्व कीजिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हम इंडियंस का असली टैलेंट क्या है पता है? ऑनलाइन 1999 का प्रोडक्ट देखकर बोलते हैं, अरे महंगा है। फिर 1899 का देखते ही मन से एक बात निकलती है, वाह 100 रुपीज बचा लिए। प्रोडक्ट वही है पर फीलिंग बिलियनेयर वाली। What?

दिमाग, किस्मत और फ्री विल, हम चुनते हैं या हमें चुना जाता है। दोस्तों, कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, जो फैसले मैं लेता हूं क्या वो सच में मैं ले रहा हूं, या वो मेरा दिमाग पहले ही डिसाइड कर चुका है, या फिर कहीं सितारे भी इस कहानी का हिस्सा तो नहीं। आज हम बात करेंगे तीन चीजों की, न्यूरोसाइंस, फ्री विल और एस्ट्रोलॉजी। तीनों अलग लगती हैं, पर कहीं ना कहीं एक ही सवाल जुड़े हैं, इंसान कितना आजाद है। पहला अध्याय, दिमाग का राज। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? ये कहती है कि हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। हर सोच, हर इमोशन, हर डिसीजन न्यूरॉन्स के बीच चलने वाली छोटी सी बिजली की लहरों का एक नतीजा है। रिसर्च में ये पाया गया है कि कभी कभी हमारा दिमाग डिसीजन ले लेता है और हमें उसका एहसास मिलीसेकंड्स बाद होता है। सोचिए, आपने हाथ उठाया, आपको लगा आपने डिसाइड किया, पर एक्सपेरिमेंट बताता है दिमाग ने सिग्नल पहले ही भेज दिया था। तो सवाल ये है, अगर दिमाग पहले ही तय कर लेता है तो मैं कहाँ हूं? क्या फ्री विल सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज है, एक दूर का इल्यूजन है? दूसरा अध्याय, सितारे और ग्रह। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष कहती है, जब आप पैदा होते हो उस वक्त ग्रहों की पोजीशन आपके स्वभाव और आपके जीवन की दिशा पर असर डालती है। ये कहती है आपका टेम्पर, आपका गुस्सा, आपका डिसीजन लेने का तरीका, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब कुछ एक कॉस्मिक पैटर्न है। अब न्यूरोसाइंस कहता है आपका बिहेवियर दिमाग के स्ट्रक्चर और हार्मोन से आता है, और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपका पैटर्न जन्म के वक्त ही सेट हो जाता है। दोनों अलग जुबान बोलते हैं, पर दोनों एक बात मान रहे हैं, इंसान का एक पैटर्न जरूर है और एक पैटर्न में ही चल रहा है। तीसरा अध्याय, फ्री विल बीच में कहां है? फ्री विल का मतलब है मैं अपनी मर्जी से चूज करता हूं, पर अगर मेरा दिमाग केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है और मेरी पर्सनालिटी एक जन्म कुंडली के पैटर्न से बंधी हुई है, तो मेरी मर्जी कहां है और कितनी मेरी है? ये डिबेट बहुत सालों पुरानी है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं फ्री विल पूरी तरह से एक इल्यूजन नहीं है। हमारे पास एक पॉज बटन जरूर होता है। इंपल्स आता है, जैसे गुस्सा, लालच, डर, पर हम इंपल्स पर एक्शन लें या रोकें, ये हम सीख सकते हैं। इसी ट्रेनिंग, इसी अवेयरनेस को कहते हैं फ्री विल, और यही एक बीज हो सकता है अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी गुस्सा आता है। न्यूरोसाइंस कहेगा आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर ज्यादा एक्टिव है। एस्ट्रोलॉजी कहेगी आपका मास स्ट्रॉन्ग है। पर दोनों के बीच एक तीसरा सच है, आप अपने रिएक्शन को धीरे धीरे समझ के बदल सकते हो। मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, थेरेपी, ये सब दिमाग के सर्किट्स को बदलते हैं। मतलब पैटर्न लिखा हो सकता है, पर कहानी पूरी तरह पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। किस्मत वर्सेस चुनाव। सोचिए, जिंदगी एक नदी है। एस्ट्रोलॉजी कह सकती है नदी का सोर्स और डायरेक्शन पहले से ही तय है। न्यूरोसाइंस कह सकता है पानी का फ्लो ग्रेविटी और टेरेन डिसाइड करता है। पर फ्री विल क्या है? फ्री विल शायद ये है कि आप नदी में तैरना सीख सकते हो, धारा के साथ या उसके खिलाफ। पानी को रोक नहीं सकते, पर अपनी चाल संभाल सकते हो। आज का जमाना, आज के समय में ब्रेन स्कैन मशीन बता सकती है कि कौन सा हिस्सा कब एक्टिव हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर जन्म का समय देखकर आपका टेम्परमेंट बता सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर आपको पता चल जाए कि आपका ये पैटर्न है, तो क्या आप उस पैटर्न के गुलाम रहोगे या उसे समझकर
उसका फायदा उठाकर उस पर काम करोगे। एक गहरी सोच, शायद फ्री विल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। शायद फ्री विल का मतलब ये है कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। न्यूरोसाइंस हमें दिखाता है कि दिमाग कैसे काम करता है। एस्ट्रोलॉजी एक सिंबॉलिक मैप देती है कि हम किस प्रकृति के हो सकते हैं। पर स्टेयरिंग व्हील वो शायद फिर भी हमारे ही हाथ में है। दोस्तों, सच इन तीनों के बीच कहीं ना कहीं है, आधा आगे आधा पीछे आधा बीच में। हम पूरी तरह आजाद तो नहीं हैं, पर हम पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं हैं। हम एक पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, पर उस पैटर्न को समझकर उसे इवॉल्व करना शायद वही इंसानियत का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई फैसला लेना हो, एक पल रुककर जरूर सोचिए, ये मेरे दिमाग का इंपल्स है, मेरी कुंडली का पैटर्न है, या मेरी सजग सोच का चुनाव है। हो सकता है तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो, और शायद यही जिंदगी का असली राज है। हम लिखे हुए भी हैं और लिख भी रहे हैं। जरा लिख कर देखिए।

0: से दिल में समा, अजीब आजरा लहरा के आजरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आजरा आ लहरा के आजरा आ, आजा रे आजरा लहरा के आजरा।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
2: शादी में कोई रिलेटिव मिलते ही बोलता है, बेटा कितना कमा लेते हो, शादी कब कर रहे हो, वेट थोड़ा बढ़ गया है ना। मैं सोचती हूँ आप लोग रिश्तेदार हो या एंजल परफॉर्मेंस अप्रेजल की कमिटी। और सबसे डेंजरस लाइन, तुमसे छोटी वाली की शादी हो गई क्या? मतलब कंपैरिजन का ओलंपिक चल रहा है और मुझे पता भी नहीं था कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ।

तुला राशि। तुला का मिशन है बैलेंस। ये कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं हर लेवल पे, हर कीमत पर। इनका साइकोलॉजिकल नीड है शांति, पर कभी कभी दूसरों को खुश करते करते अपनी आवाज खो देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत डिप्लोमेसी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका डिसीजन नहीं ले पाना। जीवन मंत्र, अपनी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरों की। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सुपरफिशियल नहीं होते, इन्हें सच चाहिए और सिर्फ सच, पूरा सच। इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पैटर्न है कंट्रोल और ट्रस्ट। ये तब तक दिल नहीं खोलते जब तक श्योर ना हो जाएं, पर जब ट्रस्ट हो जाता है तो लॉयल्टी अनमैच्ड होती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका ट्रांसफॉर्म होने की कैपेबिलिटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनके शक की आदत। जीवन मंत्र, हर इंसान दुश्मन नहीं है, कभी कभी जिंदगी को सरप्राइज देने दो। धनु राशि। धनु को बंधन पसंद नहीं है, इन्हें एक्सप्लोर करना है जगह भी विचार भी। इनका कोर नीड है फ्रीडम, आजादी, बट कभी कभी कमिटमेंट से बचने लगते हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी पॉजिटिविटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी रेस्टलेसनेस, किसी भी करवट चैन ना पा पाना। जीवन मंत्र, आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। मकर राशि। मकर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनका साइकोलॉजिकल बेस है अचीवमेंट, और इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए हर कीमत पर कभी कभी इमोशंस को साइड कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका पेशेंस और इनका एम्बिशन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका इमोशनल डिस्टेंट हो जाना बार बार। जीवन मंत्र, सफलता तब और सुंदर लगती है जब किसी के साथ बांटी जाए। कुंभ राशि। विचारों के क्रांतिकारी। कुंभ अलग सोच के होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। इनका सबसे बड़ा पैटर्न है इनकी इंडिविजुअलिटी, पर कभी कभी इमोशनल कनेक्शंस कम हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनोवेशन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बात बात पे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना समाज से। जीवन मंत्र, बदलाव दिल से शुरू होता है, सिर्फ आइडिया से नहीं। मीन, सपनों के सौदागर। मीन इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनकी बेसिक नीड है इमोशनल यूनिटी, सब साथ चले, पर कभी कभी रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी इमेजिनेशन और इनकी संवेदनशीलता, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बात बात पर भाग जाना, जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाना। जीवन मंत्र, सपनों को पंख दो पर जमीन मत छोड़ो। दोस्तों, राशियां लेबल नहीं होती, वो पैटर्न्स होती हैं। हर साइन एक कहानी है, हर साइन एक सफर है, और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ अपनी राशि नहीं हैं, आप अपनी चॉइसेस भी हैं। सितारे दिशा देते हैं, पर मंजिल पर चलना आपको ही है। आज अपनी राशि को समझिए, पर उसे एक्सक्यूज मत बनाइए, उसे एक अवेयरनेस बनाइए। क्योंकि जब इंसान अपनी प्रकृति को समझ लेता है, तब वो अपनी किस्मत को लिखने लगता है। राशियां आसमान में होती हैं, पर उनका सच दिल में जगता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी, पर असली रीजन बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: दोस्तों, कई बार मैंने कई लोगों को वॉकिंग करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान पीछे की तरफ चलते हुए देखा, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं ये। थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आइए जानते हैं इसके कुछ और सच। सो बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की ओर चलने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इससे विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इससे शरीर के संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की तरफ चलना बुजुर्गों, वयस्कों या चोट से उबरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि ये गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पीछे की ओर चलने से घुटनों और पीठ के नीचे हिस्से पर तनाव कम हो जाता है। क्योंकि चलने के लिए छोटे कदमों की लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे चलने या दौड़ने की तुलना में जोड़ों पर कम प्रभाव पड़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग मानसिक स्वास्थ्य जैसे दिमाग तेज होना, एकाग्रता और यहां तक कि मूड सुधार में भी योगदान करता है। पीछे की ओर चलने के अभ्यास को फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना बड़ा आसान है और उसे घर के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है। ये गति में बदलाव और वर्कआउट की विविधता में शामिल है, जिससे रोजाना व्यायाम करना दिलचस्प और प्रेरक भी बन सकता है। इस संबंध में फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह आप ले सकते हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में? विशेषज्ञ कहते हैं कि मांसपेशियों की मजबूती से लेकर जोड़ों के तनाव को कम करने तक बैकवर्ड वॉकिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि पीछे चलने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है, इसलिए जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। मजेदार बात हुई।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आइए एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति किसी कंसल्टेंट के पास गया, यानी कि सलाहकार, और उससे पूछने लगा कि भैया ये बताइए, कंसल्टेंसी यानी कि सलाहकारिता क्या होती है। अब देखिए, जो कंसल्टेंट महोदय थे उन्होंने कहा, मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो कि दो लोग मेरे पास आते हैं, एक तो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन है और दूसरा बहुत ही गंदा है, धूल से भरा हुआ है, बाल एकदम डर्टी हैं, धूल में सना हुआ है। अब मैंने दोनों को कहा कि जाइए और नहा लीजिए। अब बताओ बेटा कि कौन नहाएगा? तो पहले स्टूडेंट ने पहले ही कहा कि जो डर्टी है, जो बहुत ही गंदा है, जिस पे धूल लगी हुई है, जो कीचड़ से सना हुआ है, वही तो नहाएगा। तब सलाहकार ने यानी कि कंसल्टेंट ने कहा, नहीं सुनो, क्लीन पर्सन जो नहा धो के आया है, साफ सुथरा है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको आदत है नहाने की, साफ सुथरा रहने की। जबकि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा है, उसको तो नहाने धोने की इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी महत्ता के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अब बताओ कौन नहाएगा? तब वापस से उस स्टूडेंट ने, उस व्यक्ति ने कहा, जो साफ सुथरा व्यक्ति है ना सर, वही नहाएगा। तब कंसल्टेंट ने वापस कहा, नहीं, जो गंदा बहुत ही मैला कुचैला सा व्यक्ति है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको तो जरूरत है ना साफ सफाई करने की। तो चलो अब बताओ कौन नहाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर, जो मैले कुचैले कपड़ों में है, बहुत ज्यादा गंदा है, वही नहाएगा। कंसल्टेंट ने कहा, अरे नहीं बेटे, दोनों नहाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को तो नहाने की और साफ सुथरा रहने की आदत है और दूसरे व्यक्ति को इस वक्त नहा धोकर साफ सुथरा हो जाने की जरूरत है। तो चलो मुझे बताओ कौन नहाएगा? अब की बार व्यक्ति बहुत परेशान होकर बोला, सर दोनों ही नहाएंगे। तब उस सलाहकार ने, कंसल्टेंट ने दोबारा कहा, गलत है बेटे, कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि जो गंदा है उसे तो नहाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है साफ सुथरा होने की, और जो साफ सुथरा व्यक्ति है वो तो पहले से ही नहा धो के आया है, साफ सुथरा होके आया है। तो अब बताइए कौन नहाएगा? अब की बार तो वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और उसने बोला, सर आप हर बार अपना जवाब बदल देते हैं, हर बार आपका जवाब सही लगता है, अब हमें पता ही नहीं कि सही जवाब है कि आप ही बताएं। तब उस सलाहकार ने, उस कंसल्टेंट ने कहा, बेटा इसी को कंसल्टेंसी कहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि रियलिटी यानी कि सच्चाई क्या है, जरूरी यह है कि मैं एक ही सच्चाई को कितनी अलग अलग तरह से सामने रखकर तुम्हें कंफ्यूज कर सकता हूं, इसी को कहते हैं कंसल्टेंसी।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

लीजिए दोस्तों, मिलिए डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से। आजादी के 7.5 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है तो गांव में जाइए और किसी स्मृति समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठिए जिनकी यादाश्त अच्छी हो, मजबूत हो। तब आपको सन 1947 से लेकर 2024 तक का देश साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान महानगरों और शहरों में नहीं है, अपने 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, मगर इन गांवों की एक टीस बहुत पुरानी है। महानगर और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में ऐसा फंसाया है कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया, उनका गांव पुष्ट दर पुष्ट इसके लिए उन पर नाज करेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए। तब ओडिशा देश के अति पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है बेरुनपदी भी सड़क, बिजली, अस्पताल, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो बहुत दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उन्हें फाका कशी से ही गुजरना पड़ता था। एक जोड़े कपड़े में कई कई हफ्ते निकल जाते थे। मगर ये नियति अकेले उन्हीं के परिवार की तो नहीं थी ना। ऐसे में सभी अभावग्रस्त परिवार एक दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते थे। राहत की बात बस इतनी सी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोकते थे। हालांकि उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने तो कभी खेतों में घास छीलने की जिम्मेदारी उन्हें दे देते थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद प्रदीप की पढ़ाई में रुचि गहरी होती ही गई। करीब 12 साल की उम्र में वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उड़िया सुनते थे और बोलते थे। पहली बार यहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी। शुरू शुरू में वो कुछ हिचके, थोड़े झेपे, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की निगाह में प्रदीप की मेधा आ गई, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 10वीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा आ गई थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए दांव पर लगा दी। परिवार के इस त्याग से प्रदीप बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित थे। वो परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर के शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता वो उसमें किसी ना किसी तरह की दैनिक मजदूरी कर लेते। एक ऐसा मोड़ भी आया जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगी और बात उनकी झोपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी जिनसे वो अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ MBBS की डिग्री थी। वो जी जान से जुट गए। साल 2004 में MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के गुर सीखे। जाहिर है ये ऐसा चिकित्सा क्षेत्र है
जो पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे, उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने के लिए रोचक प्रस्ताव आया। लेकिन उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की वो लाइन याद आ गई, हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना तो नहीं था, वो अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसर से पीड़ित पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना था। प्रदीप ने घर की तामीर करवाई, मगर उनके बनने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया, ताकि गांव और आसपास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सके। इसके बाद बकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रख दिए गए वहां। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देखकर डॉक्टर प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की जहां कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे वो। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी अपनी जमीनें दान में दे दी। करीब 10 एकड़ में पिछले साल ही उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2500 बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देने की है। डॉक्टर प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बैरुनपदी का कर्ज तो उन्होंने अदा कर दिया।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: मैं हूँ आज भावना और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे विक्रम और बैताल की कहानी। रोज ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ।
3: राजा विक्रमादित्य सावधानी से पुनः पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक अन्य कहानी सुनाई। अवंती राज में शशिवाला नामक एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा था तो चोल राज्य का राजकुमार वहां आया। उसने राजा से कहा कि वो राजकुमारी शशिवाला से विवाह करना चाहता था। ये सुनकर राजा को अच्छा लगा। चोल राज्य एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन राजा को सोचने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। उन्होंने राजकुमार से पूछा, तुम में क्या हुनर है? राजकुमार ने उन्हें बताया कि वो एक अच्छा तीरंदाज है। वो आवाज सुनकर ही तीर चला सकता है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। राजा ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। आप मेरे मेहमान बनकर रहे, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। फिर राजकुमार को मेहमान खाने में भेज दिया गया। अगले दिन वैशाली के राजकुमार ने आकर शशिवाला का हाथ मांगा। राजा ने उससे भी उसका हुनर पूछा। वो बोला, मैं बहुत सुंदर रेशम कातकर कपड़े बुन सकता हूँ। ये काम किसी दूसरे को नहीं आता। मैं थोड़ा सा कपड़ा अपने इस्तेमाल के लिए रखने के बाद बाकी सारा कपड़ा गरीबों को बांट देता हूँ। ये कहकर वैशाली के राजकुमार ने अपने बुने हुए कपड़े का नमूना राजा को दिखाया। राजकुमार की बातें सुनकर और कपड़े की कोमलता देखकर राजा हैरान रह गया। ये तो वाकई कमाल की बात थी। राजा ने उसे भी अपने मेहमान खाने में ठहरने को कहा ताकि वो कोई फैसला कर सके। वैशाली का राजकुमार किसी भी हाल में राजकुमारी शशिबाला से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने वहां ठहरने से मना नहीं किया। वो जानता था कि इस मामले का निर्णय होने में थोड़ा समय लग सकता है। उधर शशिवाला को उसकी दासियों ने सूचना दी कि कोई राजकुमार उसका हाथ मांगने आया है। फिर उन्होंने राजकुमार के हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना दिखाया, जो शशिवाला को बहुत अच्छा लगा। वो एक राजकुमारी थी और बहुत सुंदर वस्त्र पहनती थी, लेकिन ऐसा सुंदर और कारीगरी वाला कपड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। शीघ्र ही दरबार में तीसरा राजकुमार आया। वो भी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसने बताया कि वो एक महान विद्वान था। उसने वेदों और उपनिषदों का सारा ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद चेदी राज्य का राजकुमार आया। उसका दावा था कि उसे पशु पक्षियों की बोली आती है। राजा ने उसे भी अपना मेहमान बना लिया। चेदी का राजकुमार पशु पक्षियों की बोली बोल सकता था। ये बात जल्द ही सबको मालूम हो गई। महल के बहुत से नौकर और नौकरानियां इस बात की परख करना चाहते थे। वे महल के चिड़ियाघर से एक मोर और एक तोता ले आए। राजकुमार ने उनसे बातें की और उन्हें पुचकारा। ये देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा और रानी ने तय किया कि शशिवाला स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करेगी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि वो जिस वर को पसंद करे उसके गले में वरमाला पहना दे। फिर उन्होंने तीनों राजकुमारों को बुलाकर एक साथ बैठा दिया। थोड़ी देर बाद शशिवाला अपने हाथों में वरमाला लेकर आ गई। ये कहानी सुनकर बेताल ने राजा से पूछा, राजा विक्रम, अब तू बता, राजकुमारी शशिबाला किसका चुनाव करेगी? अगर तूने सही उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन राजा के पास कोई उपाय भी नहीं था। वे बोले, सुनो बेताल, कोई आदमी अपने कर्मों से ही ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय होता है। इसलिए राजकुमारी शशिबाला को एक क्षत्रिय से ही विवाह करना चाहिए। शशिबाला अपने लिए चोल देश के राजकुमार को चुनेगी, क्योंकि वो एक क्षत्रिय यानी योद्धा है। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी तीनों राजकुमार गुणी नहीं है, लेकिन प्रत्येक गुण का हर जगह एक महत्व होता है। राजकुमारी ने उन तीनों राजकुमारों को भी अपने राज्य से सम्मान के साथ विदाई दी होगी तथा उनके गुण और कला की प्रशंसा की होगी। बेताल बोला, विक्रम तुमने सही उत्तर दिया। एक क्षत्रिय ही राजकुमारी की सही पसंद हो सकती है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सकें। राजा विक्रमादित्य बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटक रही थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और अपने राज की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। पूर्णपुर में राजा वीरभद्र का शासन था। उसका एक वफादार मंत्री था जिसका नाम था सत्यमणि। एक दिन सत्यमणि ने राजा के पास जाकर विनती की, महाराज मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, इसलिए आपका आशीर्वाद और अनुमति लेने आया हूँ। राजा वीरभद्र ने उसे अनुमति दे दी। सत्यमणि ने सागर तट पर बने शिव मंदिर में दर्शन किए। जब वो मंदिर से बाहर आया तो सागर में उठ रही हिलोरों को देखने लगा। इससे उसे इतना आनंद आया कि वो सारी रात वहीं बैठा रह गया। आधी रात को उसने एक अद्भुत नजारा देखा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। सत्यमणि ने सोचा कि यह हवा उसे कोई संकेत कर रही थी। वो उठकर सागर की ओर चल दिया। जो जो वो सागर के पास पहुंचता गया त्यों त्यों उसे अपने आसपास एक चमक दिखाई देने लगी। ये एक अलग प्रकार की रोशनी थी। सत्यमणि ने देखा कि सागर से एक पेड़ बाहर आ रहा था जो बहुत चमक रहा था। उसकी पत्तियां सोने की थी तथा फल फूल हीरे मोती और जवाहरात के बने थे। उस पेड़ पर बैठी एक सुंदरी वीणा बजा रही थी। इसके बाद वो पेड़ पानी में ओझल हो गया। अगले दिन सत्यमणि फिर वहीं गया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। जब पेड़ बाहर आया तो वो तैरकर वहां तक गया और सुंदरी से उसके बारे में पूछा। वो कुछ नहीं बोली। सत्यमणि ने अपनी यात्रा वहीं रोक दी। वो राजा वीरभद्र के पास वापस गया और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। राजा भी उस पेड़ को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने राज्य का काम सत्यमणि को सौंपा और वो पेड़ देखने के लिए चल दिया। जो ही वो पेड़ पानी से बाहर आया राजा तैरकर उसके पास पहुंच गया। सुंदरी हमेशा की तरह वीणा बजा रही थी। वो राजा को देखकर बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये स्थान खतरे से खाली नहीं है? यहां तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें इसी समय यहां से वापस चले जाना चाहिए। जाओ, तुरंत यहां से लौट जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी व्यक्ति के प्राण जाए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुनकर यहां आया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शीघ्र ही उन दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद वो सुंदरी बोली, महाराज आप अमावस्या को रात को इस पेड़ के पास मत आना। लेकिन राजा अपनी तलवार लेकर अमावस्या की रात को पेड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ में से अचानक एक राक्षस बाहर आ गया। राजा वीरभद्र पहले से ही उसके हमले के लिए तैयार था। उनकी लड़ाई के बीच राक्षस मारा गया। फिर राजा ने सुंदरी से पूछा, ये राक्षस अमावस्या की रात को पेड़ पर क्यों आता था? सुंदरी ने उसे धन्यवाद दिया और सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने लगी। मैं गंधर्व विद्यासागर की बेटी हूँ। वे मेरे हाथ का ही पका और परोसा हुआ भोजन करते थे। एक दिन मैं उन्हें खाना देना भूल गई। तब उन्होंने मुझे गुस्से में शाप दे दिया कि एक राक्षस हर अमावस्या की रात आकर मुझे विवाह करने के लिए धमकाएगा। लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने वरदान दिया कि एक दिन एक राजा आकर मेरी रक्षा करेगा और उस राक्षस को जान से मार देगा। इस तरह आप मेरे जीवन में आए। ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। वो सुंदरी को अपने साथ महल में ले आया। जब ये बात सत्यमणि को पता चली तो उसने आत्महत्या कर ली। सत्यमणि ये नहीं सह सका कि जिस सुंदरी को उसने अपने सपनों की राजकुमारी चुना था वो राजा की रानी बनकर उसके सामने आए। अब उसके पास अपनी जान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो सुंदरी राजा के साथ महल में रानी बनकर रहने के लिए आ गई थी। जब भी सत्यमणि महल की ओर जाता उसे उस सुंदरी को रानी कहकर पुकारना और सलाम करना पड़ता था, जबकि उसने अपनी पत्नी के रूप में उसकी कल्पना की थी। सत्यमणि के लिए दिन प्रतिदिन ऐसा करना किसी सजा से कम न होता, इसलिए उसने संसार से विदा ले ली। ये कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, हे विक्रम, सत्यमणि ने आत्महत्या क्यों की? यदि तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे बोले, सत्यमणि अपनी मूर्खता से ही मर गया। वो उस सुंदरी को देखते ही पसंद करने लगा था। अगर सत्यमणि को सुंदरी से प्रेम हो गया था तो उसे पेड़ वाली बात राजा को नहीं बतानी चाहिए थी, खुद ही सुंदरी से बात करने का उपाय करना चाहिए था। बेताल बोला, विक्रम, सही उत्तर दिया तुमने। ये सत्यमणि की अपनी गलती थी, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा पुनः उसे पकड़ने के लिए अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े, ताकि वे साधु को दिया हुआ अपना वचन पूरा कर सकें।
2: दोस्तों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुनते रहिए रेडियो टेंटाविल 90.8 FM झाबुआ की आवाज, आरजे भावना के।

0: राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल नामक भूत की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक नई कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, मलय देश नामक राज्य में राजा समरजीत का राज था। वो एक विद्वान और साहसी योद्धा था। एक दिन राजा समरजीत के एक दरबारी कृष्ण आनंद ने उससे कहा, महाराज हमारे राज्य में एक धनी व्यापारी चंद्रमणि रहता है। उसकी बेटी का नाम मणिमाला है। वो असीम सुंदरी है। मेरा विचार है कि उससे आपकी रानी बनना चाहिए। राजा ने अपनी भरोसेमंद दासियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे देखकर आए कि मणिमाला उनके लिए युग वधु होगी या नहीं। दासियां मणिमाला की बुद्धि और सुंदरता देखकर हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं राजा मणिमाला की सुंदरता में खोकर राज्य की भलाई के लिए काम करना ही न छोड़ दे। अतः उन्होंने वापस आकर राजा से कहा, महाराज हमने मणिमाला से भेंट करके उससे बातें भी की, लेकिन मणिमाला को देखकर नहीं लगता कि उसे इस राज्य की रानी बनाया जाना चाहिए। जब राजा समरजीत ने दासियों की बात सुनी तो उसने मणिमाला को अपनी रानी बनाने का विचार दिमाग से निकाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर महल की समझदार दासियां मणिमाला को देखकर अपनी राय दे रही हैं, तो ये बात गलत नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद चंद्रमणि ने अपनी बेटी मणिमाला का विवाह कृष्ण आनंद नामक दरबारी से कर दिया। एक दिन राजा समरजीत अपने दरबारी कृष्ण नंद के घर के सामने से गुजरे। उसने घर की छत पर खड़ी मणिमाला को देख लिया। राजा उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो उठा और अपने मंत्री से पूछा कि वो युवती कौन है। मंत्री ने बताया कि वो उनके दरबारी कृष्ण आनंद की पत्नी है, हाल ही में उनका विवाह हुआ है। ये वही युवती है जिसके बारे में उसने पता करवाया था कि वो उसकी रानी बनने के लायक है या नहीं। राजा ने उन दासियों को बुलाया जो चंद्रमणि के घर मणिमाला को देखने गई थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मणिमाला से भेंट करने के बाद मुझसे कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन मैंने उसे आज देखा, वो तो बहुत सुंदर है। तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? दासियों ने डरते डरते उत्तर दिया, महाराज हमें माफ कर दें, हमने सोचा कि कहीं उसकी सुंदरता ही बाधा न बन जाए। अगर वो आपको अपने वश में कर लेती तो राज्य की शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाती। यही वजह है कि हमने आपसे सच नहीं कहा। उसी समय कृष्ण आनंद भी दरबार में आ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपका वफादार नौकर होने के कारण मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। मैंने दासियों की सारी बात सुनी, लेकिन अब भी एक उपाय है। मैं चाहता हूं कि मणिमाला आपको सौंप दूं। ये सुनकर राजा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं कभी दूसरे पुरुष की पत्नी पर नजर नहीं डालता, ऐसा करना महापाप है। फिर राजा ने गुस्से में आकर दासियों को फांसी देने का आदेश दे दिया। राजा ने कहा कि अगर दासियों ने उससे झूठ न कहा होता तो आज मणिमाला उसकी रानी होती। वो बड़ी शान से अपनी सुंदर रानी के साथ दरबार में बैठता। अगर मणिमाला उसकी पत्नी होती तो उसके महल की शोभा बढ़ जाती। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बता विक्रम क्या यहाँ दासियों का दोष था? विक्रमादित्य ने कहा, जब दासियों ने राजा को गलत सूचना दी तो उन्होंने अपनी सीमा तोड़ दी। उन्होंने वफादारी नहीं निभाई, लेकिन ये अपराध राज्य की भलाई के लिए किया। दरअसल यहाँ राजा समरजीत का दोष ज्यादा है, जिसने उन्हें सजा देकर इससे भी बड़ा अपराध किया। बेताल बोला, विक्रम तूने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा भी उसके पीछे पीछे चल दिए ताकि उसे पकड़कर साधु के आश्रम ले जाया जा सके।
1: दोस्तों वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, सुनते रहिए रेडियो टेंटेबल 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज आरजे भावना के साथ।

इसके बाद बेताल राजा को एक अन्य कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है, हिमाचल प्रदेश में जिमतवाहन नामक एक राजा शासन करता था। वो बहुत धार्मिक स्वभाव वाला था। राजा के एक बेटा था अग्निवाहन, वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा था तो अग्निवाहन वहां जाकर अपने पिता से बोला, मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, बेहतर होगा कि आप मुझे राजा बना दें। ये सुनकर राजा और उसके दरबारी हैरान हो गए। जिमतवाहन शांति प्रिय शासक था, उसे अपने बेटे से बहुत प्यार था, इसलिए वो सिंहासन से उतर आया। इसके बाद उसने ऐलान कर दिया कि वो तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है। इधर राजा बनते ही अग्निवाहन प्रजा पर अत्याचार करने लगा, लोग बहुत नाराज हुए। उधर जिमतवाहन वन में तपस्या कर रहा था, तभी एक औरत रोती हुई उसके पास गई और कहा, मेरा एक ही बेटा है, एक राक्षस ने आज रात उसे खाने की धमकी दी है। उसने कल आकर कहा था कि अपने बेटे को मेरा भोजन बनने के लिए तैयार रखना, अगर ऐसा नहीं किया तो मैं सबको खा जाऊंगा। वो औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। राजा ने उसे दिलासा दिया तो वो थोड़ा शांत हुई। राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हारा बेटा बनकर बैठ जाऊंगा, जब राक्षस आए तो तुम बता देना कि ये मेरा बेटा है। वो औरत ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसे इसके लिए तैयार कर लिया। जब राक्षस उस औरत के बेटे को खाने आया तो राजा ने स्वयं को उसके आगे कर दिया। राक्षस ने राजा को खा लिया और उस औरत के बेटे की जान बच गई। राजा उस औरत के बेटे के वेश में था, राक्षस ने उसे एक आम आदमी समझा और देखते ही देखते खा गया। वो औरत अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। राजा जिमतवाहन ने उस औरत के बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान गवा दी। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को ये कहानी सुनाकर कहा, विक्रम तुम राजा के बलिदान के बारे में क्या कहोगे? राजा ने उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि राजा जिमतवाहन ने अपना बलिदान देकर कोई भला काम किया है, उसने तो मोक्ष पाने के लिए ही ऐसा किया। जिमतवाहन अपने दुष्ट बेटे के बारे में सब कुछ जानता था, फिर भी बेटे के धमकाने पर उसने अपना राज्य उसे सौंप दिया। अग्निवाहन के अत्याचारों से सारी प्रजा दुखी थी और अनेक कष्ट सह रही थी। क्या जिमतवाहन को उसके इस कार्य के लिए क्षमा किया जाना चाहिए? यदि वो चाहता तो अपने दुष्ट पुत्र से राज्य का शासन वापस लेकर अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता था, लेकिन उसे तो मोक्ष पाना था, उसे दूसरों के कष्ट से क्या लेना देना था, इसलिए उसने अपने को राक्षस के हवाले कर दिया। बेताल ने कुछ देर सोचकर कहा, मुझे लगता है तुमने सही उत्तर दिया है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल राजा के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया और राजा तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे।

0: दुनिया रेडियो 90.8 FM जाबवाकी आवाज। अब हम सुनेंगे ईदगाह की कहानी, तो सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM जाबवाकी आवाज।
1: रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में खूब हलचल है, सब ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी लड़कों को ज्यादा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रखते थे, आज वो आ गई। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या मतलब, इनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं।
2: 1, 2, 10, 12 मेरे पास 12 पैसे हैं। 1, 2, 3, 8, 9, 15 और मेरे पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या।
1: इन सब में सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब सूरत वाला एक दुबला पतला लड़का है। उसका बाप पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया और एक दिन उसकी माँ भी मर गई। माँ के मरने के बाद हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वो खुश है क्योंकि उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं।
2: जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे लाएंगे।
1: उधर अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में एक दाना भी नहीं है।
3: आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। किसने बुलाया है इस निगोड़ी ईद को, इस घर में उसका कोई काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के जीने मरने से क्या मतलब, उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा।
1: हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है,
2: तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना।
1: हामिद को देखकर अमीना का दिल भीतर ही भीतर कचोट रहा था।
3: गांव के सब बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का मेरे सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले में ले जाने दूं। मेरी नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है इसके पास। मैं ही इसके साथ चल पड़ती और थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती, यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे।
1: उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए थे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें आने के बाद सहसा ईदगाह नजर आई। सब ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। फिर सबके सब एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, नूरे वकील खरीदता है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। मोहसिन कहता है,
2: मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फैर कर देगा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी।
1: हामिद खिलौनों की निंदा करता है,
2: मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकना चूर हो जाए।
1: लेकिन वह ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देखकर ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। अभागे हामिद के पास 3 पैसे हैं। कैसे वो कुछ लेकर आता। बस ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की आई। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया,
2: दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियाँ कभी ना जलेंगी।
1: ये सोचते हुए वो दुकानदार से पूछता है,
2: ये चिमटा कितने का है?
4: तुम्हारे काम का नहीं है जी।
2: बिकाऊ है कि नहीं?
4: बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं?
2: तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है?
4: 6 पैसे लगेंगे। अच्छा, तुम्हारे लिए ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो।
1: हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा,
2: 3 पैसे लोगे?
1: ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आए। मोहसिन ने हंसकर कहा,
4: ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा?
1: हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा,
2: जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की।
4: तो ये चिमटा कोई खिलौना है?
2: खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की है। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की छिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा।
1: चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कप के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद और नूरे एक तरफ हैं, हामिद और सम्मी दूसरी तरफ।
2: अगर कोई शेर आ जाए तो मियां भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम-ए-हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता? भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हमें पकड़ने कौन आएगा? ये सिपाही बंदूक वाला, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम-ए-हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम-ए-हिंद कर सकता है।
4: वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे,
2: तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा।
1: इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्ठे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की,
2: मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा।
1: इतना कहते ही हामिद ने बाजी मार ली। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सिमी, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं रही। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। संधि की शर्तें तय होने लगी।
2: जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो।
1: महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे।
2: मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा।
1: 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती अपने हाथ में ले खुशी से जा उछली, तो मियां भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक से धारे। नूरे वकील को बांस के पंखे से हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब रहा महमूद का सिपाही। महमूद को ठोकर लग जाती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। उधर अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। जैसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी।
3: ये चिमटा कहाँ था?
2: मैंने मोल लिया है।
3: क्या पैसे में?
2: 3 पैसे दिए।
3: सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया?
2: तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया।
1: बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया।
3: बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही।
1: ये सोच अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?
0: कार्यक्रम मेरी दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नई कहानी के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हूँ से आरजे भावना आप पढ़ंगला भाइयों नु घरों घरों स्वागत करिए से आपरा झाबुआना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे भावना, आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टेंटाबल 90.8 FM झाबुआ की आवाज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आशा। दोस्तों, आपने आशा कार्यकर्ता के बारे में तो सुना ही होगा, कई लोग जानते भी होंगे आशा कार्यकर्ताएं होती क्या है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर शैलेश कुमार साकले जी, जो की राज्य कार्यक्रम अधिकारी आशा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। हम जानते हैं सर के साथ में कि आशा कार्यकर्ताएं होती क्या है, उनकी भूमिका क्या है। सर, शुरुआत करें
3: जी।
2: सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो स्टेशन रेडियो टाइमटेबल में।
3: जी धन्यवाद, और आपको और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: जी सर नमस्कार, आपने इतना समय निकाला, भोपाल से झाबुआ तक का सफर तय किया और यहाँ तक आए हमारे स्टूडियो में, हमें बहुत ही अच्छा लगा। अब हमारे श्रोताएं भी बहुत सी जानकारी आपसे हासिल करना चाहेंगे, तो हम शुरुआत करें। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आशा कार्यकर्ताएं होती क्या हैं और ये क्या करती हैं।
3: भावना जी, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई लगभग 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी, तब ग्रामीण इसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजाय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, और मुख्यतः ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता की कल्पना की गई जो कि उसी समुदाय का, मतलब जिस गांव या जिस बस्ती में हमें, उसी बस्ती से एक सामाजिक, एक आशा कार्यकर्ता, एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है जिसको कि ये कहा गया सामाजिक मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और वही शॉर्ट फॉर्म आता है आशा।
2: जी सर।
3: तो हमारी आशा कार्यकर्ताएं मुख्यतः समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में कड़ी का काम करती हैं। जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं या सेवाएं शासन की तरफ से समुदाय के लिए सृजित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनको समुदाय तक पहुंचाने का मुख्य काम, मुख्य संदेश वाहक का काम हमारी आशा कार्यकर्ताएं करती हैं। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, फिर 2012 के बाद हमने इसको राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से इसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, और शहरी क्षेत्रों में भी आशा कार्यकर्ता हुई। तो इस वक्त हमारे पास मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 65,000 आशाएं और शहरी क्षेत्रों में लगभग 5,000 आशाएं, इस तरह करीब 70,000 आशा कार्यकर्ता प्रदेश में कार्यरत है।
2: जी सर, आपने बताया कि ग्रामीण हटा दिया गया, ये ग्रामीण हटाने का क्या उपलक्ष्य था?
3: देखिए, पहले ये सोचा गया था कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है।
2: जी।
3: बाद में ये पता लगा कि कई शहरी क्षेत्र, खास करके जिनको हम शहरी मलिन बस्ती बोलते हैं, है ना, या स्लम एरिया बोलते हैं, या कहना तो नीचे, लेकिन उनको बोलते हैं गंदी बस्ती,
2: मतलब जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी।
3: हाँ, ये यहाँ पर स्वास्थ्य के जो सूचकांक है, स्वास्थ्य की स्थिति है, वो कई ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर है, तब हाँ दयनीय है। तो इसको एक समग्र रूप देने के लिए, मतलब ये शहर गाँव कस्बे सभी जगह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध है।
2: जी सर, आशाओं का काम क्या होता है?
3: बेसिकली देखिए, आशा जैसा मैंने बताया, सभी स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाती है। तो सबसे पहला उसका जो मुख्य काम होता है, घर घर जाके सर्वे करना। हर घर के सर्वे में वो घर के परिवार के सदस्यों की सूची बनाती है, मुखिया कौन है, उनका नाम क्या है, घर में कितने बच्चे हैं, महिलाएं कौन है, तो या ये आशा के रूटीन काम में ये काम आता है, जिससे उसको पता लगता है कि कितने घरों में गर्भवती महिलाएं हैं, कौन धात्री महिलाएं हैं जो छोटे बच्चों की माएँ हैं, किन घरों में छोटे बच्चे हैं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। आशा का काम उसके बाद फिर जो जिस समुदाय में या जिस गांव में, बस्ती में वो रहती है, वहाँ जन्म मृत्यु, विवाह और छोटे बच्चों का टीकाकरण के लिए सूची बनाना, तो ये उनका पंजीयन करना। इसके अलावा जो हम अलग अलग सेक्टर लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे मीटिंग बुलाते हैं, उन मीटिंग्स को अटेंड करना।
2: जी सर।
3: और एक VHND एक होता है, हर गांव में हर क्षेत्र में, हर शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, या तो किसी मंगलवार या शुक्रवार ग्राम स्वास्थ्य पर पोषण दिवस, ये स्वास्थ्य पर पोषण दिवस होता है, उसमें गर्भवती माताओं की जांच की जाती है, छोटे बच्चों का, गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जाता है, पोषण संबंधी सलाह दी जाती है। तो वीए चंडी के लिए समुदाय को मोबिलाइज करके लाना, ये आशा काम रहता है। इसी तरह ग्राम में एक समिति होती है, ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति, जिसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, शॉर्ट फॉर्म में VHSNC, उसकी प्रतिमाह मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ताकि ग्राम के लोग अपने गांव की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में स्वयं बात कर सके। ये मुख्यतः आशा के काम है। बाकी स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य विभाग बहुत सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाता है, जैसे अभी निरोगी काया अभियान चला, कोरोना के बाद कोरोना के वैक्सीनेशन का अभियान चला, तो इस तरह के अभियान समय समय पर चलते रहते हैं और इन सब में आशा की बहुत सक्रिय भूमिका होती है।
2: जी सर, मतलब गांव या फिर शहरों के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर तक पहुंचाना, उनको स्वास्थ्य सेवाएं दिलाना, ये उनका काम होता है।
3: आशा का काम जैसे भी एक महिला विवाह होके आई वहीं से चालू हो जाता है। पहले वो उसको परिवार नियोजन के साधनों की सलाह देती है, उसे ये कहती है कि अभी विवाह से कम 2 साल तक वो कोई बच्चा पैदा ना करे, वो अभी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले। उसके बाद यदि वो गर्भवती होती है तो गर्भवती माता की प्रसव पूर्व 4 जांचें होना चाहिए और संस्थागत प्रसव होना चाहिए ताकि प्रसव सुरक्षित हो। ये आशा इसमें मोटिवेट करती हैं। जब बच्चा होता है तो बच्चों को करीब 1.5 महीने तक आशा 6 बार 7 बार उसके घर जाके बच्चे को देखती है, ताकि ऐसा तो नहीं कि बच्चे में कोई जोखिम के लक्षण हो, खतरे के लक्षण हो। फिर उस बच्चे का पूरे 1.5 साल तक वो इंश्योर करती है, उस माँ को ये सलाह देती है कि अब 3 साल तक अगला बच्चा ना करे। और तो ये इसको बोलते हैं मतलब बच्चों के बीच में अंतर रखना। और जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो स्थायी परिवार साधन की सलाह देती है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, जहाँ जहाँ स्वास्थ्य आता है वहाँ वहाँ आशा का काम आ जाता है।
2: आशा मतलब एक तरह से घर की जो बड़ी दीदी होती है। हाँ, हाँ, वो काम होता है आशा,
3: बिल्कुल, बल्कि
2: इसलिए शायद आशा दीदी कहा जाता है।
3: जी जी जी, मतलब कई बार ये होता है कि जो प्रसूता महिलाएं होती है वो अपनी आशा से इतनी कम्फर्टेबल होती है कि वो चाहती है कि ये प्रसव के समय हमारे साथ रहे, अपने परिवार के किसी सदस्य के बजाय वो उस पर ज्यादा विश्वास करती है।
2: जी, जिस तरह घर की बड़ी दीदी होती है शायद, मैंने सही।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: सर, ये आशा इस तरह से जो काम करती हैं उनका कोई मानदेय राशि तो होता होगा?
3: हाँ, आशा के सभी कार्यों पे एक प्रोत्साहन राशि रहती है, हर काम के एवज में उसको मिलती है, जो कि जैसे मान लो वो प्रसव पूर्व 4 जांचें कराती है और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराती है तो हम उसको 1200 रुपए देते हैं।
2: चार जांचें
3: और संस्थागत प्रसव सब मिलाकर होता है वो। इसी तरह छोटे बच्चों की देखभाल करती है तो उसको 500 रुपए देते हैं। कुल मिला के हमारी लगभग 50 से ऊपर गतिविधियां हैं और हर एक पर्व उसको इंसेंटिव या कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि रहती है।
2: जी, अगर आशा जी की भूमिका देखा जाए हमारे देश को धीरे से स्वास्थ्य में बेहतर बनाने में, क्या होगी वो?
3: देखिए, स्वास्थ्य के 3 सूचकांक होते हैं, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आरंभ होने के पहले स्थिति बहुत ही विपरीत थी और स्वास्थ्य सूचकांकों की स्थिति भी बहुत थी, लेकिन अब आशाओं के और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सम्मिलित प्रयास से हम अपने 3 सूचकांकों में बहुत ज़्यादा बेहतर वृद्धि कर चुके हैं। स्वास्थ्य सूचकांक का ये कम होना चाहिए, जैसे 1 लाख गर्भवती महिलाएं, मातृ मृत्यु दर मतलब 1 लाख गर्भवती महिलाएं में से कितनी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान या प्रसव से 1.5 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है, ये संख्या मातृ मृत्यु दर होती है। ये निगेटिव चीज है, लेकिन अभी भी प्रदेश में ये 173 है। और इसी तरह शिशु मृत्यु दर मतलब 1000 जीवित बर्थ में कितने बच्चे जन्म से 1.5 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है, ये शिशु मृत्यु दर है। अभी ये 43 है, 43 है और पूरे भारत में हम लोग नीचे हैं, सबसे ज़्यादा है। और कुल प्रजनन दर मतलब कि वो एक वर्ष में हम कितने लोग, कितने सदस्य जुड़ जाते हैं, जैसे ये लगभग 2 है, जैसे 1000 की आबादी में 20 लोग और जुड़ जाते हैं, इतना जन्म, तो इनको सबको हमको जनसंख्या का स्थिरीकरण करना है, मातृ मृत्यु दर कम करना है, शिशु मृत्यु दर कम करना है। तो आशाओं के प्रयास से सबसे ज्यादा जो हुआ कि चूंकि गर्भवती माता की पहले जांच हो गई तो ऐसा लगा कि वो जगरमल वो जोखिम में है, उसको एनीमिया है, ब्लड प्रेशर है, तो तुरंत हमने उसको इलाज दे दिया, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दे दी, आयरन सुक्रोज चढ़ा दिया, तो इस माताओं की मृत्यु कम हुई। बच्चों को जहां तक देखा कि बच्चे अगर ऐसा तो नहीं कि वो खतरे के निशान में आ रहे हैं, उनकी सांस तेज चल रही है या निमोनिया डायरिया जैसी कुछ चीज हो रही है, तो तुरंत उसको रेफर किया जाता है, वहां अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता है, बच्चों की जान बच जाती है। तो ये सूचकांकों को कम करने में आशा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये और आगे आगे और चैलेंजेस आते जाते हैं। अब जैसे कि अब मैं आपकी और दर्शकों की जानकारी के बता दूं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब गैर संचारी रोग, पांच गैर संचारी रोग हमने मेन किए हैं। एक तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जो कि अपने दिल के दौरे का कारण बनता है, डायबिटीज यानी मधुमेह बोलते हैं जिसको, और तीन तरह के कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये जो पांच चीजें हैं ये आज की तारीख में 62% मृत्यु इन कारणों से हो रही है, और ये वो चीजें हैं जो यदि हम अर्ली डिटेक्ट करें तो इनका इलाज संभव है। मृत्यु का बड़ा काम है। और लेकिन तो ये इसके लिए जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं इसके लिए भी हम आशाओं को प्रशिक्षित करते हैं। आशा समाज में जाकर प्रत्येक जो व्यक्ति 30 वर्ष से ऊपर का होता है उसका एक सीबेक फॉर्म भरते हैं, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट होता है। वो जैसे किसी व्यक्ति से जाके पूछती है क्या वो तम्बाकू का सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, या महिला है तो फिर उसमें उनको अलग उनके तरह के प्रश्न रहते हैं, वो इन सब चीजों की जानकारी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के आरंभिक लक्षण उनको पता लग जाते हैं, यदि वो तुरंत अपना इलाज आरंभ कर दें तो उससे बचत हो सकती है। लेकिन ये तो ये सब चीजों पे आशा की भूमिका आ गई है। इसके अलावा और भी दूसरे बहुत से चीज जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आ रहे हैं, पहले मातृ आशा का जो था वो मातृ स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित था और टीकाकरण से संबंधित था, अब नए नए जैसे जैसे कार्यक्रम आते जा रहे हैं हम आशाओं को उसके लिए प्रशिक्षित करते हैं और आशाओं की उसमें बहुत सकारात्मक और सक्रिय भूमिका रहती है।
2: जी सर, अभी आपने बताया कि आप आशाओं को प्रशिक्षित कराते हैं, तो वो प्रशिक्षण का कुछ आप यहाँ पे बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, किस तरह से आप प्रशिक्षित करते हैं सारी आशाओं को?
3: देखिए, भारत सरकार का एक संस्थान है NHSRC, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जो आशाओं के प्रशिक्षण के मॉड्यूल डिजाइन करता है और उनके प्रशिक्षक भी तैयार करता है। जिला स्तर पे हमारे जैसे हमारे सभी 52 जिलों में हमारे ट्रेनिंग सेंटर है, झाबुआ में भी एक ट्रेनिंग सेंटर है, तो इन ट्रेनिंग सेंटरों में हम प्रशिक्षकों के माध्यम से और NHSRC जो हमको मॉड्यूल देता है, पहले होता है प्रारंभिक प्रशिक्षण, फिर होता है दक्षता के प्रशिक्षण होते हैं जिसमें आशाओं को मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और कुछ संचारी रोगों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल किस तरह करें, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इसका भी 5 दिन का प्रशिक्षण होता है, और अब एक्सपांडेड पैकेज आ रहे हैं जिसमें कि मेंटल हेल्थ और OEEE ना ओरल हेल्थ, INT और इमरजेंसी, ये सब पैकेज अब धीरे धीरे आशाओं के नए आ रहे हैं जिन पे आगामी वर्षों में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा।
2: सर, आशा कार्यकर्ताओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
3: जी, मैं हमारे प्रदेश की सभी आशा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ कि उनके सतत प्रयास से हम लोग स्वास्थ्य सूचकांकों की बेहतरी में हमको सहायता मिली है, मदद मिली है, और आगे आने वाले जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उसमें सभी में आप समर्पित भाव से, निष्ठा से कार्य कीजिए और अपने प्रदेश को स्वस्थ बनाने में, अपने समुदाय को स्वस्थ बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी आशा बहनों के लिए काफ़ी अच्छा संदेश दिया। हो सकता है अभी कुछ आशा बहनें हमारी ये संदेश सुन भी रही होंगी, वो आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाह भी रही होंगी लेकिन वो कर नहीं पा रही हैं, तो उनकी ओर से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे रेडियो टेंटेव हिल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन होगा। आप अगर फिर से यहाँ झाबुआ जिले में कभी भी आएँ तो हमारे रेडियो स्टेशन पर आएँ, यहाँ पर विजिट करें और फिर से कोई नया संदेश दें जो आगामी प्रशिक्षण होने वाला है आशाओं के लिए, उसके लिए भी आके कोई संदेश दें आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर
3: जी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं।

0: રેડિયો ટાંટિયા ફીલ 90.8 FM. આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं. मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा.
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष.
1: जी हां श्रोताओं, और हम आपके बीच में लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी का.
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं. और वर्षा, हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी घर पर बैठे हैं क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बारिश का महीना आएगा और हम अपने अगले फसल की तैयारी करने में हम जुट जाएंगे.
1: अरे नहीं नहीं मनीष जी, आप ये गलत कह रहे हैं. पता है, किसान हमारे वो साथी होते हैं जो कभी भी फ्री नहीं होते हैं. तो वो अगर घर में बैठे भी हैं, जो आपने कहा है वो ठीक है, वो बैठे होंगे, लेकिन वो उस टाइम में भी अपनी कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे. वो सोच रहे होंगे कि जैसे ही बारिश होगी तब हम क्या करेंगे, कौन सी फसल लगाएंगे जिससे कम पानी लगे, जिसमें हमें मुनाफा ज्यादा हो, जिसमें लागत कम लगे, कैसे हम जुताई करेंगे, कैसे कौन से बीज होंगे जिनका चयन हम करेंगे. तो काफी सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं जिन पर वो गंभीरता से सोच रहे होंगे. तो किसान साथियों, हम यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि क्यों ना हम जैविक पद्धति की ओर बढ़े, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, दिन ब दिन हमारा मौसम जो है एकदम प्रभावित होता चला जा रहा है. और इस तरह से जब सालों साल मौसम को प्रभावित होने में लगेगा तो हमारा जो क्लाइमेट है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो जरूर होगा. तो आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा पड़ने लगी है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी. पहले समय से बारिश होती थी, समय से गर्मी होती थी, समय से सर्दी होती है. जो ये चक्र था वो अपने समय के अनुसार चलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है.
2: बिल्कुल वर्षा, आपने बिल्कुल सही कहा है. और खास तौर पर हम अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, जो हमारे किसान साथी, चूंकि बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, अगर झाबुआ जिले की बात करें, वो क्या करते हैं कि दो सीजन की फसल लेते हैं, रवि की और खरीफ की फसल लेते हैं. इसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे ही फसल बोते हैं इसके बाद वो पलायन कर जाते हैं, चाहे वो गुजरात, राजस्थान या अन्य शहरों में चले जाते हैं. लेकिन यहाँ पर सरकार कहती है कि हमारे किसान साथी घर पर क्यों नहीं बैठते, घर पे क्यों नहीं रुकते हैं, उनकी आय किस तरीके से दुगनी होगी, क्योंकि सभी सरकारें प्रयास कर रही हैं कि हमारे किसान साथियों की आय दुगनी हो. लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि आपके शहर झाबुआ में रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खुला है और उस पर जो खेती किसानी की जानकारी हम लोग लेकर आते हैं वो सुनने लायक है. आप उस पर अमल करिएगा, क्योंकि वो छोटी छोटी जानकारी आपके जीवन में बहुत महत्व देंगी. तौर पर देखा जाए, गर्मी का मौसम है, गर्मी का सीजन चल रहा है, सबसे पहले किसान साथियों को सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे गर्मी में सबसे पहले अपने खेतों की गहरी जुताई कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ढालू जमीन है और पथरीला इलाका है. किसान साथी अधिकतर देखा जाता है कि ट्रैक्टर से ना कर वो हल वखर से अपनी खेती को करते हैं. तो ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई अपने खेतों की कर दें. साथ साथ में गहरी जुताई करने के बाद वो जो खेतों में खाद की अगर बात करें, जैविक खाद की बात करें, पहले पुरानी पद्धति से अगर देखा जाए, पुराने समय में हमारे किसान साथियों के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते थे कि जैसे ही गर्मी का मौसम आया वो अपने खेतों की जुताई करने के बाद उसमें बढ़िया गोबर का खाद डालते थे और उसका एक बार फिर से पलट देते थे उसी खेत को, जिससे वो खाद उस जमीन में मिल जाए. और बारिश जैसे ही होने का समय होता था इसके बाद वो अपने बीजों का चयन कर लेते थे कि हमें बीज कौन सी बोना है. लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी संबंधित अधिकारी, जैसे कृषि विभाग हुआ, KVK हुआ, उनसे संबंधित अधिकारियों से बात कर वो पूछे कि हमारे किसान साथी ऐसे में, चूंकि समय बहुत गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा है, किसान साथी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की अगर आय की बात करें तो किस तरीके से बढ़ेगी. खाद आप घर पर बनाइएगा, उस पर बोइएगा, तो खाद का जो खर्चा है वो आपका बच जाएगा.
1: बिल्कुल मनीष जी, आपने एकदम सही बात बताई है. और चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी में, हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं खेतीबाड़ी कार्यक्रम में जैविक खेती के बारे में, यानी कि जैविक पद्धति से कैसे खेती हम कर सकते हैं, क्या क्या फायदे इसके हैं जैविक खेती के. चलिए इस बातचीत को हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम और भी जानकारी जैविक खेती से जुड़ी हुई आपको बताते रहेंगे.
2: लेकिन वर्षा, इससे पहले चूंकि

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: बढ़ते रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाले हैं। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर होता है। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी

0: कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भरकर रख लिया जाता है। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड़ बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनाने चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छानकर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखें। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं। वर्मी बेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 से 5 दिन पुराना गोबर लें। केचुआ खाद बनाने के दौरान भी किसी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपड़ा रेडियो अपनी बात है। और मित्रों, अभी आपने केचुआ खाद बनाने की एक नई विधि के बारे में सुना है और समझा भी है, क्योंकि ये विधि हमारे पेड़ों के आसपास की जा सकती है और इससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं और अपने खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। और खास तौर पर जैविक पद्धति की अगर बात करें तो अब सरकार भी अब कहने लगी है कि आज से कुछ दिनों बाद फिर से लोग अब जैविक खेती की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे और शुरू भी होने लगा है कि लोग अब जैविक पद्धति की ओर रुख कर रहे हैं, जैविक पद्धति से खेती करना शुरू कर दिया है। साथ साथ में अभी फिलहाल में ही सरकार ने घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुख करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी फिलहाल की सरकार ने ये घोषणा की है कि 52 जिलों में 100 गांवों में हम प्राकृतिक खेती करने का हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम फिर से प्राकृतिक खेती और अपनी जैविक पद्धति की ओर रुख करने लगे हैं। अब नई चीज हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं, आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों के लिए, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीट के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। अब वक्त हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट यानी कार्यक्रम

खेत खलियान में मौसम की जानकारी का, तो आइए जान लेते हैं कि मौसम आखिरकार क्या कहता है। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना देखते हुए हमारे किसान भाई भैंसे को तैरने के लिए पानी में छोड़ें और 2 बार नहलाएं ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे और हरा एवं रसदार चारा पर्याप्त मात्रा में इनको खिलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क एवं आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना भी बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। मूंग एवं उड़द में रस चूसक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और पाए जाने पर बचाव हेतु इमीडा क्लोरोप्लेड दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खाली खेत में गर्मी की गहरी जुताई यानी 20 से 25 सेंटीमीटर मिट्टी की पलटने वाले हल से कर दें, ताकि सूर्य ताप से कीट व्याधियों के जो अंडे रहते हैं एवं खरपतवार के बीज जो रहते हैं वो नष्ट हो सके, तथा फसल के अवशेष यानी नरवाई जो रहती है उनको ना जलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई सब्जियां और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शुरू कर देवे। वर्तमान मौसम में बैगन में जो फल एवं तना छेदक के कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए क्लोनोनाफास 25 सीसी दवा की 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू हुई, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोरम फास 40 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देवे। तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि फल में यदि फटने की समस्या आ रही है तो 6.0 ग्राम बोरेक्स पाउडर प्रति लीटर पानी में की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नेप्थलीन एसिटिक एसिड 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी एवं फिनोलोफिक्स 5.0 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। शिमला मिर्च में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव हेतु बाप्स्टीन दवा की 2.0 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। तो ये थी जानकारी मौसम विभाग की। साथियों, हमने बहुत सारी बातें इसमें कर भी ली हैं, जान भी ली हैं, सोच भी ली हैं, समझ भी ली हैं। अब वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम में अगले सेगमेंट का, यानी सुनते हैं सफल किसान की कहानी। तो आइए सुनते हैं सफल किसान की कहानी को, लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है। तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो केबीके रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी के रंग आपकी ही सेहत के संग के इस प्यारे से प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपनी बॉडी से रिलेटेड कई चीजों के बारे में हम जानें, अवेयर हों और अपना ही ख्याल रखना शुरू करें। जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल की है, वो हमारी मदद के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए हमेशा हैं। लेकिन डॉक्टर्स खुद भी कई बार कहते हैं कि आप लोग अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि जब आप ज्यादा ही तबीयत खराब करके डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं जब वो आपको ठीक नहीं कर पाते। उसी पर्पस से, उसी उद्देश्य से हम डॉक्टर्स को इस प्रोग्राम में ला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, आमंत्रित करते हैं, जिससे कि वो आपसे बात कर सकें। आज हमारे प्रोग्राम में सीनियर कंसल्टेंट एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर किरण खरात हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर किरण, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा, छोटा सा, दो ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अवर लिसनर्स अबाउट यू, बट फिर भी थोड़ी सी उनसे बात करें, अपना इंट्रोडक्शन दें।
1: थैंक यू वेरी मच समीर, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण खरात, आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आई प्रैक्टिस इन पुणे, और हिंदी में तो अस्थि रोग तज्ञ कहते हैं।
0: जी जी।
1: और मैं अभी पुणे में 20 साल के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके पहले आई प्रैक्टिस इन द यूके, United Kingdom for 15 years.
0: Oh my God.
1: Came back to India in 2005. So this sort of coincided with the movie Swadesh.
0: Jee. Oh. And, so cute.
1: And really, at that moment, the song was my anthem. बिकॉज आपका म्यूजिकल प्रोग्राम है, रेडियो शो है
0: जी,
1: और ए आर रहमान जी का जो गाना था, ये जो देश है तेरा,
0: इट
1: वाज माय एंथम सॉन्ग एट दैट टाइम व्हेन आई केम बैक। या
0: बहुत बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है साहब, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है और बड़ी ही प्यारी बात कही। दोस्तों आपने सुना, डॉक्टर किरण लव्स हिज कंट्री सो मच कि उन्होंने उस प्यारे से सॉन्ग को अपना एंथम कहा है। कितनी खूबसूरत बात है ये, बहुत खूब।

0: तो इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में हमारे सिंपल ऑडियंस के लिए ये पूछना चाहूंगा कि हमारा पूरा शरीर एक ऐसे कमाल के स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है जिसको हड्डियां या बोन्स कहते हैं। इसके बिना कोई भी जीव, कोई भी लिविंग बीइंग इस दुनिया में प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो सकता। तो इस कमाल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: जरूर समीर जी, आपने ठीक कहा। एक्चुअली आई कैन रिफ्रेज इट एंड टेल यू दैट बोन्स आर आवर बॉडीज अनसंग हीरोज।
0: वाओ।
1: या हड्डियां हमारे शरीर के गुमनाम गायक है। और सचमुच इट कीप्स अस गोइंग, बिकॉज जैसे कि इट्स लाइक अ स्कैफोल्ड, यू नो, जैसे अपना घर का जो फ्रेम होता है
0: जी,
1: तो वैसे ही अपना जो बोन स्ट्रक्चर है, इट इज मेड ऑफ लिविंग टिश्यूज लाइक कोलेजन, जो हेल्प्स फ्लेक्सिबिलिटी, कैल्शियम विच इज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन्स, एंड ऑल्सो द बोन्स प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स लाइक द स्कल, यू नो, इट गार्ड्स आवर ब्रेन, and the bone marrow helps grow blood cells. So सचमुच अद्भुत है। हड्डियां जो एक भरोसेमंद ढांचा है, हमें मजबूत रखती है, और सचमुच इस हड्डियों की वजह से हम खड़े रह सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वरना we would all be like jellyfish,
0: you know, yes, very yes,
1: flexible.

0: won't be able to hold ourselves together.
1: बहुत खूब, आपकी बिल्कुल इसी बात से मुझे ख्याल ही आ रहा था कि अगर हड्डियां ना होती तो हम तो जेलीफिश के जैसे होते, कहीं भी पड़े होते, ना खड़े हो पाते, ना मूव कर पाते. वी वुड हैव बीन सो यू नो वल्नरेबल. हड्डियां हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर देती हैं जिसमें हम प्रोटेक्टेड रहते हैं. मोर ओवर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने दोस्तों को जरूर जरूर बताना चाहूंगा, आपने भी अभी अभी मेंशन किया कि जो जीवन अमृत है, यानी कि हमारे पूरे शरीर को जो चीज बनाती है, दैट इज बोन मैरो, वो बोन्स के अंदर होता है. बोन्स उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. वो प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं ब्लड के, जो एक्चुअली हमारे हर चीज को बनाते हैं. उनको भी स्टेम सेल्स, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी इन्हीं वॉरियर्स का है, इन्हीं अनसंग हीरोज का है, जैसा डॉक्टर किरण ने बहुत एप्रोप्रिएटली कहा. बहुत खूब, थैंक यू सो मच. मेरे ख्याल से दोस्तों को आज अपने बोन्स, अपने हड्डियों से मोहब्बत होने वाली है. उन्हें पता चलने वाला है कि वो कितनी ज्यादा जरूरी हैं. तो डॉक्टर साहब, वैसे ये बोन्स, ये अनसंग हीरोज, ये वॉरियर्स बनते कैसे हैं, और किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि बचपन से ही बोन्स मजबूत होती चली जाएं?
0: एब्सोल्युटली, हड्डियां ऑसिफिकेशन से बनती है. सो बच्चों की हड्डियां नरम होती है, तो अगर बच्चों को फ्रैक्चर होता है तो हम उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, बिकॉज वो पूरी तरह ब्रेक नहीं होते. जहां की बुजुर्ग लोग जब उनकी फ्रैक्चर जब होते हैं, ब्रिटल बोन्स या फ्रेजाइल बोन्स होते हैं, तो चौक की तरह वो ब्रेक होते हैं और काफी काफी उसके टुकड़े होते हैं. और यही फर्क है बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में. तो ऑसिफिकेशन से ये बन जाती है, और अपने शरीर में हर हड्डी पे एक ऑसिफिकेशन सेंटर होता है जिसे एपिफाइसिस कहते हैं, और साधारण 17-18 साल तक वो अपना काम करता है. फिर बाद में वो फ्यूज हो जाते हैं, और तब जो फाइनल हाइट फीमेल या मेल की हो जाती है. और उसे बरकरार रखने के लिए, उसे स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, मैं मेरे पेशेंट्स से कहता हूं कि यू नो सिंपल थिंग्स लाइक प्रॉपर कैल्शियम रिच फूड्स, यू नो मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, सनलाइट एक्सपोजर, धूप में जाना फिरना, अच्छा खाना, फिश या अच्छे हेल्दी फूड्स लाइक टोफू, पनीर, इवन वॉकिंग, लिफ्टिंग वेट्स, योगा, स्विमिंग, एनी वेट बेरिंग एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पेशली धूम्रपान और शराब से वंचित रहना चाहिए, बिकॉज दिस डायरेक्टली affects our bones and skeletal system.
1: बिल्कुल ठीक, amazing. आपने बिल्कुल perfect कहा कि अगर हम अपना ख्याल रखें, कुछ अच्छे nutritions, exercise और कुछ व्यसनों से दूर रहें, तो हम अपने bones की strength को, उनकी integrity को maintain कर सकते हैं, मजबूत बनाए रख सकते हैं. Absolutely fine. अब डॉक्टर साहब, बोन्स का यानी कि हड्डियों का टूटना फूटना, तो जैसे अभी अभी आपने कहा कि बच्चों की भी हड्डियां टूटती हैं तो उनको ग्रीन फ्रैक्चर बोला जाता है, कि भाई ठीक है वो फ्लेक्सिबल होती हैं, थोड़ा सा जल्दी जुड़ भी जाती हैं. ये टूटना फूटना तो बचपन से चलता रहता है. अब इसके कुछ कुछ कारण तो रहते ही होंगे, मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं, गिर पड़ा कोई या किसी कहीं जगह पर टक्कर लग गई, समथिंग लाइक दैट, और उन्हें आप लोग ठीक भी कर देते हैं कि भाई ठीक है प्लास्टर किया या सेट किया. लेकिन कुछ जगहों से सर ये भी क्वेश्चन आए थे कि बिना किसी कारण के भी बोन्स टूट जाती हैं. एक दो फिल्में भी देखी डॉक्टर साहब, जिसमें कुछ बहुत रेयर बीमारी थी कि अगर जरा सा भी धक्का उस व्यक्ति को लगता है तो उसकी कई हड्डियां टूट जाती हैं. वो क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: बिल्कुल, तो इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. इट इज कॉल्ड द साइलेंट डिजीज बिकॉज पेशेंट्स डोंट नो उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है. और पुराने जमाने में बुजुर्गों में ये दिखता था, लाइक इन वेरी एल्डरली पीपल, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, इट वाज वेरी कॉमन. बट द ट्रेंड अभी जो है, बिकॉज ऑफ सेडेंटरी जॉब्स, लैक ऑफ सन एक्सपोजर, lack of exercise, poor diet, and bad habits like smoking, drinking, no attention to self in terms of allowing the body weight to increase. All these things add up, you know. So basically, क्या होता है कि जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो बिना कारण हड्डी टूट जाती है. मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो इवन स्नीजिंग या
1: छींकने
0: से भी उनकी कुछ वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स हो चुके हैं. अभी अभी एक फ्रेंड का फोन आया कि वो बस में कहीं जा रहा था और बस स्पीड ब्रेकर से जोर से चली गई और वो जो पैसेंजर्स थे दे वेंट अप इन द एयर एंड यू नो फेल ऑन द सीट और उसकी वजह से उसको कॉक्सेक्स फ्रैक्चर भी हो गया.
1: ओह माय गॉड.
0: तो वो भी हो सकता है. फिर कभी कभी पेशेंट्स को जब कैंसर जैसे बीमारी हो जाती है तो कैंसर कैन स्प्रेड इनटू बोन्स. इट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस एंड दैट एरिया बिकम्स वीक एंड देन द फ्रैक्चर कैन हैपन थ्रू द मेटास्टेटिक लीजन एंड यू नो. सो बेसिकली दीज आर कॉल्ड fragility fractures. So in very very weak bones, even a small stumble, like thoda bhi gir gaye aap ya thodi si bhi kuch chot aa gayi to fracture zarur ho sakta hai because wo taakat ab wo bone mein nahi hai.
1: Okay, all right. Now doston, यूं तो सुनने में थोड़ा सा स्केरी, थोड़ा सा डरावना लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप डॉक्टर किरण जैसे स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाते हैं सो यू नीड नॉट टू बी स्केयर्ड, यू नीड नॉट टू अफ्रेड. आप बिल्कुल सेफ हाथों में हैं. उनकी काउंसलिंग, उनके बातचीत आपको बता सकती है कि व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए. वैसे मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब हमें बताएं कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की बात हो रही है एंड देन ठीक है बोन मेटास्टेसिस की बात होती है कैंसर पेशेंट्स में, लेकिन क्या ये इंसिडेंसेस बहुत रेगुलर है या थोड़े से रेयर है?
0: एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस इज क्वाइट कॉमन अनफॉर्चुनेटली. जैसे हमारी जो लाइफ का एज स्पैन है वो अब बढ़ चुका है, यू नो. ओल्डन डेज 40-50 वाज ओल्ड, बट नाउ
1: 80,
0: you know, people are living up to 80s, 90s and even 100s.
1: Correct.
0: I have operated on patients as old as 96-97.
1: Oh my god. Okay.
0: So the thing is it is not rare, but at the same time you know it can be easily detected. So the patients need to be aware. Luckily आजकल information age है तो सबके पास smartphones है, smart TVs है, you know WhatsApp university है,
1: बहुत सारे
0: Google बाबा है. तो usually patients should be aware. और you know basics है, like our ancients used to say, you know drink milk and eat green food and you know exercise, balanced diet, keep your weight under control. So yeah, basics will never change no matter which country you live in. You know. So the thing is, yes, it is unfortunately common and it should not be because it can be easily avoided.
1: Bahut khoob. Yeah. Doston, bahut dhyan se is baat ko samajhiye ki osteoporosis ya aise dusre कारण, ऐसे दूसरे रीजंस जो हड्डियों को ब्रिटल बनाते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी टूट जाने के रीजंस हो सकते हैं, उनसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. आपको अपने बोनी स्ट्रक्चर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारा अब व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल बाबा एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल जो कि आपको बता सकते हैं कि व्हाट शुड यू डू अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड द बोनी स्ट्रक्चर. डॉक्टर साहब ने कहा वेट आप कंट्रोल में रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स एंड न्यूट्रिशंस लीजिए, मिल्क. बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, मिल्क से मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है. कई बार कई लोगों की ये भ्रांति या मिथ, वो बोल देते हैं कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, नहीं होती हैं. लोग कंफ्यूज्ड हैं डॉक्टर साहब, हाउ ट्रू इज दैट?
0: सी एक्चुअली मिल्क डेफिनेटली इज यूजफुल प्रोवाइडेड यू नो इट इज नॉट यू नो डाइल्यूटेड. सो यू नो सचमुच क्वालिटी मिल्क मिलना भी
1: मुश्किल हो गया है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट.
0: बट एंड देयर आर मेनी पीपल हु हैव लैक्टोज इनटॉलरेंस, दूध
1: नहीं पी पाते,
0: दे कैन नॉट टॉलरेट. एंड आजकल उसके भी अभी ऑल्टरनेटिव्स है, कैशू मिल्क, आमंड मिल्क, सोया मिल्क.
1: ओके,
0: दीज आर एक्सपेंसिव बट अवेलेबल फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट. बट यस, मिल्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु कैन टॉलरेट इट. But provided the milk is not diluted and you know is actually fortified milk. Actually, because of milk fortification, जो हम पहले disease देखते थे, rickets वगैरह, अभी आजकल दिखाई नहीं
1: देते. जी बिल्कुल, गायब हो गए.
0: Because गायब हो गए हैं. तो yeah, milk is important, but with milk, proper diet, proper exercise and weight bearing exercise remains extremely important.
1: आई परफेक्टली अंडरस्टैंड. तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज ये भ्रांति, आज ये मिथ, आज ये कंफ्यूजन बहुत हद तक दूर हुआ होगा. दूध, मिल्क इज इंपॉर्टेंट. अगर आप इनटॉलरेंट हैं, अगर आपको दूध सूट नहीं करता है, तो देर आर अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, उनके ऊपर भी हम जा सकते हैं. लेकिन दूध जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अवॉइड करना उचित नहीं होगा. बहुत बहुत सारे फैमिलीज में आज की डेट में देखा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिलाते, ये मानते हुए कि वेल दूध तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. गाय या किसी भी एनिमल का अगर हम दूध दे रहे हैं तो वो उनके बच्चे के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं. ये एक भ्रांति है, कन्फ्यूजन है, इसको दूर कीजिए. तो डॉक्टर साहब, कुछ और भी इश्यूज हैं क्या, कुछ और भी बीमारियां हैं क्या जिनकी वजह से हड्डियां मुसीबत में आ जाती हैं, बेचारी वो कमजोर होने लगती हैं? कुछ और बीमारियां हैं क्या सर ऐसी?
0: सो आई मीन बीमारियां तो बहुत सारी हैं, बट एजिंग इज वन थिंग व्हिच एवरीवन यू नो
1: इज अफेक्टेड. एब्सोल्युटली.
0: और टाइम वेट्स फॉर नो वन. Aging, you know, it shrinks not only your patients, but it also shrinks your muscles and bones.
1: Correct.
0: जिसे हम sarcopenia भी कहते हैं.
1: जी.
0: और हड्डियाँ भंगूर हो जाती है, सो इसे हम osteoporosis कहते हैं. फिर there are diseases like Paget's disease, which can affect the bone. Then there are hormonal shifts like menopause, even less exercise, you know, bedridden states, जहाँ patient जब उसकी एक्टिविटीज कम हो जाती है तो द बोन्स बिकम वीक. यू नो वी नो दैट एस्ट्रोनॉट्स व्हेन दे गो इनटू स्पेस,
1: यस,
0: बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी, दे गेट ऑस्टियोपोरोसिस. तो दिस इज अ फैक्ट. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डू वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, एंड अति भी नहीं करना चाहिए. आई मीन देयर आर पीपल हु डू एक्सेस एंड यू कैन गेट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ऑल्सो. सो दैट इज द अदर एक्सट्रीम. सो It has to be a balanced exercise program which respects your individual body, your stiffness levels, your flexibility levels, but you cannot say I won't exercise, you know.
1: ये तो ऑप्शन ही नहीं है डॉक्टर साहब, बिकॉज कहीं पर मैंने पढ़ा था अवर बॉडी द नेचर एक्चुअली हैज मेड अवर बॉडी टू मूव, नॉट टू स्टे स्टिल. हमारी बॉडी को मूव करना ही करना है, अदरवाइज ना तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम वुड वर्क, बिकॉज लिम्फेटिक सिस्टम हैज गॉट नो पंप्स, अदरवाइज ब्लड हमारा हार्ट से पंप हो जाता है, बट लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम डजंट हैव एनी पंप. तो इसलिए हमें मूव तो करना ही करना होगा.
0: So life is movement and movement is life.
1: Absolutely. That's a very good saying. Beautiful, beautiful. Yeah. Life is movement and movement is life. क्या बात कही. तो लोग सब, वैसे तो मेरे दिमाग में ये सवाल आ ही रहा था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, किसी भी इंसान का बॉडी जो है वो श्रिंक होने लगती है. अभी मेरे फादर जो है वो 85 इयर्स के हैं, लेकिन वो इतने छोटे से हो गए हैं. किसी जमाने में मतलब ही यूज्ड टू बी क्वाइट जायंट, बड़ा अच्छा लगते थे, अभी वो इतने छोटे से हो गए हैं. फिर जाहिर सी बात है उनकी बोन्स तो श्रिंक हुई होंगी, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी मसल्स भी श्रिंक हो गई हैं. एंड ही कीप्स ऑन ट्राइंग टू वॉक सो दैट हिज मूवमेंट हेल्प्स हिज प्रोस्टेट, हिज बाउल मूवमेंट, हिज यूरिनेशन, हिज अदर थिंग्स. सो आपने ऑलरेडी ये चीज बताई कि हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए, तो ये सब चीजें संभलती रहती हैं. डॉक्टर साहब, आई कम टू द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बढ़ती हुई उम्र में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, पहले शायद डायग्नोस नहीं हो पाता होगा, जॉइंट्स में इश्यू हो जाता है, जॉइंट्स क्रैकिंग की आवाज करने लगते हैं, जो भी जिनकी उम्र बढ़ गई है उनको चलने में बहुत तकलीफ होने लगती है. तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही फेमस ट्रीटमेंट ऑप्शन बनकर निकला है. सो डॉक्टर साहब, आप बीइंग जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, प्लीज हमें बताएं कौन कौन से जॉइंट्स हैं पूरी बॉडी में जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं.
0: एक्चुअली टू आंसर योर क्वेश्चन, आपने जो पहले कहा कि यू गेव योर फादर्स एग्जाम्पल, एंड आई हैव ऑल्सो सीन मेनी रिलेटिव्स इन माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड अदर पीपल. सो कद छोटा होना एक काफी यू नो कॉमन है, बिकॉज जब वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स होते हैं या कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर्स होते हैं या डीजनरेशन होता है तो जो डिस्क स्पेस कम हो जाते हैं या जॉइंट के स्पेस कम हो जाते हैं तो उसके वजह से कद कम हो जाता है. और कभी कभी डिफॉर्मिटीज इतने एक्सट्रीम होते हैं कि पेशेंट की हाइट काफी कम हो जाती है. आई रिमेम्बर वन ऑफ माई फर्स्ट पेशेंट्स ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट आई डिड, वो एक विलेज से उसका बेटा मेरे पास लेके आया था और उसके दोनों नी इतने बेंट थे लाइक अ सी शेप्ड, यू नो धनुष बाण के शेप होते हैं वैसे. तो जब मेरे पास चल के आए तो उसका एक मैंने वीडियो लिया था, जब आई थी तो उसका दोनों घुटने में काफी अंतर था और जब ऑपरेशन किया तो उसके दोनों घुटने सीधे हो गए और उसकी हाइट भी बढ़ गई बिकॉज यू नो द डिफॉर्मिटी वॉज करेक्टेड. तो उसका बेटा जब फॉलोअप को आया उसने कहा डॉक्टर साहब जब मेरी माँ गांव चली गई वापस तो उसके पड़ोसी दे कुडंट रिकॉग्नाइज हर, ये वही औरत है.
1: ओह गॉड, ओके.
0: सो यू नो इट्स रिमार्केबल चेंज एंड दिस पेशेंट हु कुड नॉट वॉक अ सिंगल स्टेप कुड इजीली वॉक.
1: ब्यूटीफुल.
0: सो यस, सो जॉइंट रिप्लेसमेंट इज अमेजिंग ब्लेसिंग यू नो एंड दिस इज आल्सो माय चोजन स्पेशलिटी इन द यूके. 15 साल उधर रह के मैंने अपने आप को इस स्पेशलिटी में सिखाया और काफी एक्सपीरियंस लिया. अब इंडिया में 2005 में आने के बाद आई एम प्रैक्टिसिंग इन इंडिया विद द फोकस ऑन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी. एंड आजकल द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स विच आर रिप्लेस्ड आर हिप्स, नीज, फॉलोड बाय शोल्डर्स, एल्बोज and sometimes ankles and wrists and even the small joints of the fingers and toes can be replaced. So for example agar hindi mein kahe to kul hai ghutne kandhe takne kohni aur kalai inke joint replacements aajkal ho sakte hain apne desh mein.
1: Wow, okay. अमेजिंग. आई मीन दिस आज तक की डेट में डॉक्टर साहब सीरियसली मेरे को ये तो पता था कि हिप रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट है, लेकिन आई वॉज नॉट एक्चुअली अवेयर दैट इवन द रिस्ट रिप्लेसमेंट एंड द एंकल रिप्लेसमेंट कुड ऑल्सो बी डन एंड द शोल्डर रिप्लेसमेंट विच इज कंसिडर्ड. मुझे जो ऐसा सुन के भी लगता है कि बड़ा ही टिपिकल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता होगा बिकॉज शोल्डर को तो आप किसी भी तरीके से प्लास्टर भी नहीं कर सकते, मतलब कैसे. आई मीन
0: सो बट यू आर राइट एंड द शोल्डर रिप्लेसमेंट इज बिकमिंग कॉमन नाउ.
1: ओह माय गॉड,
0: देयर आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हु आर स्पेशलाइजिंग इन अपर लिम एंड शोल्डर सर्जरी. शोल्डर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है, फिर एक रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है जहां अपना जो कफ है शोल्डर डेफिशिएंट हो तो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट आर वेरी सक्सेसफुल. एक्चुअली एल्बो रिप्लेसमेंट हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करते हैं जहां पेशेंट्स को संधिवात होता है जो ऑटो इम्यून डिजीज है. एंकल रिप्लेसमेंट्स भी आजकल होते हैं, प्रमाण कम है लेकिन जरूर होते हैं.
1: Okay.
0: In Russia, I did actually a small joint replacement fellowship as well, where we replaced small joints of the wrist and fingers and even toes.
1: Okay.
0: Using ceramic joints. Yeah, it's all there.
1: तो डॉक्टर साहब ये सारे के सारे जो joint replacements की हम बात कर रहे हैं, majorly knee and hip.
0: And hip.
1: ये तो है ही हैं. बाकी के जी भी अगर इनको हम टोटालिटी में एक बार को एज ए हेलीकॉप्टर व्यू देखें, अगर टोटालिटी में देखने की कोशिश करें तो कोई भी एक लेमैन ये जानना चाहेगा डॉक्टर साहब कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना सेफ और कितना इफेक्टिव होता है. कैन यू गिव मी सम परसेंटेज, सम नंबर?

0: अच्छा, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट एज सच इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. आई वुड से मोर देन 90-95% सक्सेसफुल.
1: फैंटास्टिक.
0: एक्चुअली इफ यू से सक्सेस इन व्हाट टर्म्स, अगर समझो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत है समझो,
1: जी
0: और आप मेरे पास आए आपका घुटना लेकर, विच इज द
1: जी
0: मोस्ट कॉमन
1: जी जी
0: जॉइंट इन्वॉल्व्ड. सो यू विल कम टू मी बिकॉज आपने सब कुछ ट्राई किया है, आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथी जो अपने देश में काफी कॉमन है, फिर मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, सब कुछ किया आपने. और जब मैंने एक्सरे देखा आपका और हड्डी हड्डी पर टकरा रही है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद आपको 100% सक्सेस मिलेगा, पेन रिलीफ, डिफॉर्मिटी करेक्शन, है ना? सो दैट इज 100% बिकॉज यू केम टू मी विथ डिफॉर्म पेनफुल जॉइंट, और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद ये चला जाएगा, तो यू कैन से इट इज 100% सक्सेसफुल सर्जरी. बट ऑब्वियसली रिस्क तो हर सर्जरी में होते हैं,
1: होंगे ही होंगे, होंगे ही
0: और
1: होंगे.
0: या एंड वी डिस्कस दिस रिस्क विद द पेशेंट. सो उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लेना चाहिए कि क्या रिस्क है. अभी मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैनी पीपल आस्क फॉर बायलैटरल सर्जरी, यानी दोनों जॉइंट्स इकट्ठा कर दो डॉक्टर,
1: ओके
0: दोनों
1: ओके ओके.
0: घुटनों को मेरे ऑपरेशन कर दो, मुझे दोनों घुटनों का ऑपरेशन करके मेरे फैमिली को भी कम प्रेशर आएगा, मुझे भी वापस बार बार आना नहीं पड़ेगा, वगैरह वगैरह. का ऑपरेशन करके मेरे फैमिली को भी कम प्रेशर आएगा, मुझे भी वापस बार बार आना नहीं पड़ेगा, वगैरह वगैरह. तो ये जो है ना, तो बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट ये काफी ट्रिकी है. ऑब्वियसली द फेमस सर्जन्स इन द वेस्ट स्टार्टेड इट, एंड देन दोज सर्जन्स देमसेल्फ सेड दैट इट इज रिस्की, एंड द रिस्क इज क्वाइट सीरियस रिस्क. फॉर एग्जांपल द रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज मच मोर हायर इन बायलैटरल सर्जरीज. और उनका पेन जो थ्रेशोल्ड जिनका कम है, वो ये सर्जरी टॉलरेट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ पेनफुल सर्जरी.
1: ऑफ कोर्स.
0: हालांकि आजकल आजकल वी डू यूज मल्टी मोडल पेन मैनेजमेंट, सो पेशेंट को पेन नहीं होता. और मेरे कई सारे पेशेंट्स है, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स, सेम डे मैं उनको चलाता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल आज सुबह ऑपरेशन किया, आज शाम को आई एम कॉन्फिडेंट दैट द पेशेंट कैन स्टैंड एंड वॉक बिकॉज ऑफ एक्सेलेंट सर्जरी एंड एक्सेलेंट एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट. सो द थिंग इज, इट इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी. देर इज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अनहैप्पी पेशेंट्स, बट देर आर मेनी रीजन फॉर दैट.
1: Of course.
0: And the risks are like infection, joint sort of deep vein thrombosis, and sometimes scar issues can happen. But these are known risks of the surgery.
1: बहुत सबसे ज्यादा जो रीजन डॉक्टर साहब आपस में डिस्कशन करते हुए लोगों का सुनाई पड़ रहा है वो ये भी है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद जो भी पेशेंट था उन्होंने जो एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने सजेस्ट की थी कि आपको डेली इतना चलना है, खड़े होना है, वॉक करना है, उन्होंने वो की ही नहीं. दे जस्ट केप्ट ऑन सिटिंग ऑन द सोफा लाइक दे हैड बीन ट्रीटेड वेल. लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद उनके जॉइंट्स स्टार्टेड फेलिंग बिकॉज प्रोबेबली उनकी जो मसल्स थी जो जॉइंट रिप्लेस्ड या उसके ग्राफ्ट के आसपास जो थी वो डेवलप ही नहीं हो पाई, उसकी वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट वॉज फेलिंग एंड दे स्टार्टेड ब्लेमिंग द डॉक्टर फॉर द रॉन्ग यू नो ट्रीटमेंट. कई बार लोग ये कह रहे हैं कि इसमें डॉक्टर साहब की गलती नहीं थी, इस पेशेंट ने तो एक्सरसाइज ही नहीं किया. सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट एक्सरसाइज इज डॉक्टर साहब, वो कितनी जरूरी है?
0: तो समीर जी, शानदार जोड़ प्रतिस्थापन या जॉइंट रिप्लेसमेंट सक्सेस के लिए देर आर मेनी फैक्टर्स. ऑब्वियसली द करेक्ट पेशेंट, एन एक्सपीरियंस्ड सर्जन विद अ गुड टीम, विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड एनेस्थीशिया टीम, गुड फिजियोथेरेपी टीम, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट.
1: ऑफ कोर्स.
0: सो इससे क्या होता है कि हम आजकल प्री रिहैबिलिटेशन, यानी बिफोर जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑल्सो वी टेल पेशेंट्स कि आप एक्सरसाइज करना, यू शुड डू एक्सरसाइज, यू शुड कीप द जॉइंट्स एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल बाय कीपिंग द मसल्स अराउंड द जॉइंट.

0: joint as strong as possible.
1: Hmm.
0: And after the joint replacement, it is extremely important to do a physiotherapy rehabilitation program under the guidance of a proper physiotherapist. Because ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या? तो इमेजिन आपने एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज ले ली और उसको गैराज में खड़ा कर दिया, तो क्या होगा उसका?
1: Oh God, nothing.
0: same thing. And actually, I told you before also, too much of anything is bad. So over enthusiastic and over zealous physiotherapy and force and pressure can also be detrimental and cause issues. So the physiotherapy and the surgeon should be aligned. The patient should be cooperative. So sab kuch miljul ke aana chahiye.
1: तो डॉक्टर साहब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कई लोगों के दिमाग में ये सारी बातें सुन के आ रहा होगा कि कब कराना चाहिए जॉइंट रिप्लेसमेंट? ऐसी सिचुएशन कब आती है? किसी को कब पता चले कि अब आई थिंक आई शुड गो फॉर अ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड हमें डॉक्टर किरण जैसे किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? व्हेन?
0: So it's very easy. I tell my patients joint replacement is the last bus stop. So it's the last stage. So the first few bus stops are, you know, simple things: weight loss, physiotherapy, rehabilitation, hydrotherapy, you know, supplements which will help the joint cartilage, proper calcium, vitamin D supplementation. All these things are important. But jab ये सब कुछ फेल हो जाता है, यू ट्राइड एवरीथिंग सिंसियरली एंड कुछ उसका कुछ फायदा आपको दिखाई नहीं देता, और जब एक्सरे में हड्डी पर हड्डी टकरा जाती है जिसे हम कहते हैं बोन ऑन बोन डिजीज, और जब डिफॉर्मिटी दिखने लगती है, जब पेशेंट्स के नी जॉइंट्स डिफॉर्म्ड हो जाते हैं या हिप जॉइंट्स में लिम्प आ जाता है या पेशेंट ठीक से चल नहीं सकता, एक दो स्टेप भी नहीं ले सकता, so it is the last stage of arthritis when a joint replacement is absolutely necessary.
1: Okay. So बहुत बहुत क्लियर है दोस्तों, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बहुत बहुत साफ तरीके से बताया कि सारी कोशिशों के बाद भी अगर आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, नीज यानी कि घुटने डिफॉर्म हो रहे हैं या फिर हिप जॉइंट्स वो भी डिफॉर्म हो रहे हैं, आप बुरा ना मानिएगा लेकिन पेंगुइन की तरह अगर आपने चलना शुरू कर दिया है, सो इट इज अ साइन दैट यू शुड इमीडिएटली गेट योर सेल्फ चेक्ड, प्रॉपर एक्सरे लेकर, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा बोन ऑन बोन डिजीज अगर आइडेंटिफाई होती है तो इमीडिएटली यू शुड कंसिडर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, जो कि पूरी पूरी तरह से सेफ है, ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है, डिपेंड करेगा आपकी जील पर, आपकी उत्साह पर, आपके डॉक्टर पर और आपके डॉक्टर की टीम पर। दोस्तों डॉक्टर किरण एक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ बेहद बेहद सेंसिटिव इंसान है और एक बहुत प्यारे सिंगर भी हैं। तो चलिए ना कुछ उन्हीं के गाए हुए प्यारे प्यारे से गीत सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।

क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूब, एसडी बर्मन साहब की याद हो आई। दोस्तों चलिए अगला गीत सुनते हैं डॉक्टर किरण की आवाज में।

बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। हेमंत कुमार साहब को वापस से याद दिला दिया आपने, बहुत खूब। दोस्तों अगला गीत।

भाई वाह, एक के बाद एक सुपर सुपर हिट। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत का लुत्फ उठाते हैं।

0: बहुत खूब, थैंक यू सो मच डॉक्टर किरण सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते हमारे सभी ऑडियंस के लिए, सभी दोस्तों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समीर जी फॉर यू नो कॉलिंग मी एंड टॉकिंग टू मी अबाउट माय फेवरेट टॉपिक ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। आई एम डूइंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी सिंस 1990 एंड वी आर इन 2025. So joint replacement is very very rewarding surgery for the correct indication and the correct patient. Simple message, haste raho, you know, exercise karte raho, weight control mein rakho, proper diet is extremely important, and correct advice and proper follow-up is important. So self-care, awareness, and just be happy and moving, because life is movement.
0: Fantastic. Bahut khub. Badi hi pyari baat kahi doc sahab ne. Life is movement, and the movement is life. And dosto, badhti umr mein, don't dance so fast, because music won't last. Bahut zyada जुझारू बनने की भी जरूरत नहीं है कि ठीक है, अगर आप मजबूत हैं, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपका वेट बहुत अच्छा कंट्रोल में है, तो इवन यू कैन रन मैराथन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मैराथन भी रन कीजिए। लेकिन बढ़ती उम्र में अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बी वेरी वेरी केयरफुल। डॉक्टर किरण, थैंक यू सो मच, आई एम रियली रियली ओब्लाइज्ड। हमारे सुनने वाले भी आज बहुत सारे भ्रांतियों को दूर कर अवेयर होकर जा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
1: शुक्रिया समीर जी, थैंक यू वेरी मच।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: दोस्तों, कई बार मैंने कई लोगों को वॉकिंग करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान पीछे की तरफ चलते हुए देखा, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं ये। थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आइए जानते हैं इसके कुछ और सच। सो बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की ओर चलने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इससे विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इससे शरीर के संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की तरफ चलना बुजुर्गों, वयस्कों या चोट से उबरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि ये गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पीछे की ओर चलने से घुटनों और पीठ के नीचे हिस्से पर तनाव कम हो जाता है। क्योंकि चलने के लिए छोटे कदमों की लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे चलने या दौड़ने की तुलना में जोड़ों पर कम प्रभाव पड़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग मानसिक स्वास्थ्य जैसे दिमाग तेज होना, एकाग्रता और यहां तक कि मूड सुधार में भी योगदान करता है। पीछे की ओर चलने के अभ्यास को फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना बड़ा आसान है और उसे घर के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है। ये गति में बदलाव और वर्कआउट की विविधता में शामिल है, जिससे रोजाना व्यायाम करना दिलचस्प और प्रेरक भी बन सकता है। इस संबंध में फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह आप ले सकते हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में? विशेषज्ञ कहते हैं कि मांसपेशियों की मजबूती से लेकर जोड़ों के तनाव को कम करने तक बैकवर्ड वॉकिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि पीछे चलने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है, इसलिए जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। मजेदार बात हुई।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की

जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आइए एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति किसी कंसल्टेंट के पास गया, यानी कि सलाहकार, और उससे पूछने लगा कि भैया ये बताइए, कंसल्टेंसी यानी कि सलाहकारिता क्या होती है। अब देखिए, जो कंसल्टेंट महोदय थे उन्होंने कहा, मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल देकर, एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो कि दो लोग मेरे पास आते हैं, एक तो बहुत ही साफ सुथरा और क्लीन है और दूसरा बहुत ही गंदा है, धूल से भरा हुआ है, बाल एकदम डर्टी हैं, धूल में सना हुआ है। अब मैंने दोनों को कहा कि जाइए और नहा लीजिए। अब बताओ बेटा कि कौन नहाएगा? तो पहले स्टूडेंट ने पहले ही कहा कि जो डर्टी है, जो बहुत ही गंदा है, जिस पे धूल लगी हुई है, जो कीचड़ से सना हुआ है, वही तो नहाएगा। तब सलाहकार ने यानी कि कंसल्टेंट ने कहा, नहीं सुनो, क्लीन पर्सन जो नहा धो के आया है, साफ सुथरा है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको आदत है नहाने की, साफ सुथरा रहने की। जबकि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा गंदा है, उसको तो नहाने धोने की इंपॉर्टेंस यानी कि उसकी महत्ता के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो अब बताओ कौन नहाएगा? तब वापस से उस स्टूडेंट ने, उस व्यक्ति ने कहा, जो साफ सुथरा व्यक्ति है ना सर, वही नहाएगा। तब कंसल्टेंट ने वापस कहा, नहीं, जो गंदा बहुत ही मैला कुचैला सा व्यक्ति है, वो नहाएगा, क्योंकि उसको तो जरूरत है ना साफ सफाई करने की। तो चलो अब बताओ कौन नहाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, उस स्टूडेंट ने कहा कि सर, जो मैले कुचैले कपड़ों में है, बहुत ज्यादा गंदा है, वही नहाएगा। कंसल्टेंट ने कहा, अरे नहीं बेटे, दोनों नहाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को तो नहाने की और साफ सुथरा रहने की आदत है और दूसरे व्यक्ति को इस वक्त नहा धोकर साफ सुथरा हो जाने की जरूरत है। तो चलो मुझे बताओ कौन नहाएगा? अब की बार व्यक्ति बहुत परेशान होकर बोला, सर दोनों ही नहाएंगे। तब उस सलाहकार ने, कंसल्टेंट ने दोबारा कहा, गलत है बेटे, कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि जो गंदा है उसे तो नहाने के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है साफ सुथरा होने की, और जो साफ सुथरा व्यक्ति है वो तो पहले से ही नहा धो के आया है, साफ सुथरा होके आया है। तो अब बताइए कौन नहाएगा? अब की बार तो वो स्टूडेंट, वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और उसने बोला, सर आप हर बार अपना जवाब बदल देते हैं, हर बार आपका जवाब सही लगता है, अब हमें पता ही नहीं कि सही जवाब है कि आप ही बताएं। तब उस सलाहकार ने, उस कंसल्टेंट ने कहा, बेटा इसी को कंसल्टेंसी कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि रियलिटी यानी कि सच्चाई क्या है, जरूरी यह है कि मैं एक ही सच्चाई को कितनी अलग अलग तरह से सामने रखकर तुम्हें कंफ्यूज कर सकता हूं। इसी को कहते हैं कंसल्टेंसी।

पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

लीजिए दोस्तों, मिलिए डॉक्टर प्रदीप सेठी जी से। आजादी के 7.5 दशक में हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, इसे देखना है तो गांव में जाइए और किसी स्मृति समृद्ध बुजुर्ग के पास बैठिए, किसी ऐसे बुजुर्ग के पास बैठिए जिनकी याददाश्त अच्छी हो, मजबूत हो। तब आपको सन 1947 से लेकर 2024 तक का देश साफ साफ दिखाई पड़ेगा। हिंदुस्तान महानगरों और शहरों में नहीं है, अपने 6.5 लाख से ज्यादा गांवों में है, मगर इन गांवों की एक टीस बहुत पुरानी है। महानगर और बड़े शहरों ने उनकी अनगिनत संतानों को अपने मोहपाश में ऐसा फंसाया है कि वे अपनी माटी का कर्ज उतारना भी भूल गए हैं। लेकिन डॉक्टर प्रदीप सेठी ने जिस तरह से अपनी माटी का कर्ज अदा किया, उनका गांव पुष्ट दर पुष्ट इसके लिए उन पर नाज करेगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक गांव है, बेरुनपदी। करीब 44 साल पहले इसी गांव के एक बेहद गरीब परिवार में प्रदीप पैदा हुए। तब ओडिशा देश के अति पिछड़े राज्यों में शामिल था। जाहिर है बेरुनपदी भी सड़क, बिजली, अस्पताल, साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से तो बहुत दूर था। प्रदीप के परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो उन्हें फाका कशी से ही गुजरना पड़ता था। एक जोड़े कपड़े में कई कई हफ्ते निकल जाते थे। मगर ये नियति अकेले उन्हीं के परिवार की तो नहीं थी ना। ऐसे में सभी अभावग्रस्त परिवार एक दूसरे को सब्र और उम्मीद की डोर थमाते रहते थे। राहत की बात बस इतनी सी थी कि 1955 से गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा थी और प्रदीप के पिता घनघोर गरीबी के बावजूद बेटे को कभी पढ़ने लिखने से नहीं रोकते थे। हालांकि उन्हें कई बार स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती क्योंकि मजदूर पिता कभी गाय चराने तो कभी खेतों में घास छीनने की जिम्मेदारी उन्हें दे देते थे। इन सब मुसीबतों के बावजूद प्रदीप की पढ़ाई में रुचि गहरी होती ही गई। करीब 12 साल की उम्र में वो जिस सरकारी स्कूल में पढ़ने गए वहां अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उड़िया सुनते थे और बोलते थे। पहली बार यहां उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी सीखी। शुरू शुरू में वो कुछ हिचके, थोड़े झेपे, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की चाह ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बहुत जल्द ही शिक्षकों की निगाह में प्रदीप की मेधा आ गई, उन्हें भरपूर प्रोत्साहन दिया। फिर क्या था, छात्र की लगन और शिक्षकों के सहयोग ने एक गरीब बच्चे के दिन बदल दिए। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदीप बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। 10वीं के बाद से ही उनके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा आ गई थी, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं था। प्रदीप ने अपनी पढ़ाई लिखाई से पिता को गौरव के कई पल दिए, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत जमीन उनके पास थी बेटे की मेडिकल फीस जुटाने के लिए दांव पर लगा दी। परिवार के इस त्याग से प्रदीप बहुत दुखी हुए, लेकिन अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित थे। वो परिवार की तकलीफ और संघर्ष में बराबर के शरीक रहे। उनके पास जो भी खाली वक्त होता वो उसमें किसी ना किसी तरह की दैनिक मजदूरी कर लेते। एक ऐसा मोड़ भी आया जब सारी कोशिशों के बावजूद चीजें मुश्किल होने लगी और बात उनकी झोपड़ी से निकलकर गांव के चबूतरे पर आ गई। तब गांव के कुछ समर्थ लोगों ने बड़प्पन दिखाया और वजीफे के तौर पर उन्होंने प्रदीप की लगातार मदद की। प्रदीप को हर महीने एक तय राशि मिलने लगी जिनसे वो अपनी किताबें खरीदते और हॉस्टल मेस की फीस चुकाते। अब लक्ष्य सिर्फ MBBS की डिग्री थी। वो जी जान से जुट गए। साल 2004 में MBBS की डिग्री लेने के बाद उन्होंने मास्टर्स कोर्स के लिए देश के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के गुर सीखे। जाहिर है ये ऐसा चिकित्सा क्षेत्र है
जो पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती को लेकर सजग दौलतमंदों से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लिहाजा प्रदीप के पास प्रस्तावों और मरीजों की कोई कमी नहीं रही। पैसे तो खैर आने ही थे, उनके पास दुबई में क्लिनिक खोलने के लिए रोचक प्रस्ताव आया। लेकिन उसी समय उन्हें आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद की वो लाइन याद आ गई, हर मनुष्य के जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। नौजवान प्रदीप के जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना तो नहीं था, वो अपनी जड़ों की ओर मुड़े। कैंसर से पीड़ित पिता की दिली तमन्ना थी कि गांव में उनका एक घर होना था। प्रदीप ने घर की तामीर करवाई, मगर उनके बनने के चंद महीनों बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद प्रदीप ने साल 2016 में उस घर को एक कोचिंग सेंटर में बदल दिया, ताकि गांव और आसपास के बच्चे वहां आकर गणित और अंग्रेजी सीख सके। इसके बाद बकायदा प्रशिक्षित शिक्षक रख दिए गए वहां। सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में इस एक कोचिंग सेंटर से आई तब्दीली देखकर डॉक्टर प्रदीप को गहरा सुकून मिला। अब उन्होंने गांव में एक ऐसा स्कूल खोलने का फैसला किया जो गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दिलवा सके। उन्होंने गांव की उसी जमीन पर स्कूल बनाने की शुरुआत की जहां कभी दैनिक मजदूरी किया करते थे वो। गांव वालों ने अपने सपूत का बढ़ चढ़कर साथ दिया। कई लोगों ने स्कूल के लिए अपनी अपनी जमीनें दान में दे दी। करीब 10 एकड़ में पिछले साल ही उत्कल गौरव इंटरनेशनल स्कूल वजूद में आ गया। फिलहाल इसमें 450 बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इसकी क्षमता 2500 बच्चों को 12वीं तक शिक्षा देने की है। डॉक्टर प्रदीप सेठी आगे अन्य इलाकों में भी स्कूल खोलेंगे, मगर बेरुनपदी का कर्ज तो उन्होंने अदा कर दिया।

मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप।

मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की गायिका हैं उषा मंगेशकर जी। उषा मंगेशकर जी लता मंगेशकर और आशा भोसले जी की बहन हैं। उषा का जन्म मशहूर संगीतकार और गायक दीनानाथ मंगेशकर के घर में चौथी पुत्री के रूप में हुआ था। 15 दिसंबर 1935 को मध्य प्रदेश में जन्मी उषा मंगेशकर जी बचपन से संगीत में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखती थी, फिर भी उषा जी ने गायकी के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई। तो लीजिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उषा जी के इस गाने से।

हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, कन्नड़ और असमिया में भी कई गाने गाए। लता मंगेशकर जी ने उषा जी को प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। लीजिए, पेश खिदमत है उषा जी का एक और गीत।

उषा मंगेशकर जी ने वर्ष 1954 में आई फिल्म सुबह का तारा में बड़े धूमधाम से मेरी भाभी आई गाने से बॉलीवुड में एंट्री की। ये एक रोमांटिक ड्रामा सॉन्ग था। इसके बाद उन्होंने अपने सिंगिंग करियर में कई गाने गाए। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में ये गीत।

फिर फिल्म जय संतोषी माँ ने उनकी किस्मत पलट दी। 1975 में आई फिल्म जय संतोषी माँ के मैं तो आरती गाने ने उषा मंगेशकर जी को घर घर में पहचान दिला दी। इस फिल्म के गानों के लिए उषा मंगेशकर जी को फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग फीमेल का नॉमिनेशन भी मिला। पेशे खिदमत है उनकी आवाज का एक और नगमा।

उषा मंगेशकर जी ने 60 साल की उम्र तक सिंगिंग की। उन्होंने 1992 में दूरदर्शन के लिए म्यूजिकल ड्रामा फूलवती को भी प्रोड्यूस किया, जिसकी कहानी बाबा साहेब पुरंदरे पर आधारित थी। हम लाए हैं उन्हीं की आवाज का एक और गीत।

क्या दोस्तों आपको मालूम है, उषा मंगेशकर जी को सिंगिंग नहीं पेंटिंग पसंद थी। वो एक चित्रकार बनना चाहती थी, लेकिन लता मंगेशकर जी के प्रोत्साहन से वो सिंगिंग में आ गई। लीजिए उन्हीं की आवाज का एक सुरीला नगमा।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों, आज की गायिका है अलका याग्निक। जी हाँ, अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभा याग्निक था। अलका ने अपनी पढ़ाई मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स कोलकाता से की। घर में संगीत का माहौल था तो बस अलका की रुचि भी संगीत की ओर हो चली। चलिए सुनते हैं उनका गाया हुआ ये गीत।

अलका ने अपने करियर की शुरुआत 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक भजन गाया। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ बॉम्बे आई। बॉम्बे में निर्माता निर्देशक राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने की सलाह दी। तो हो जाए उनकी आवाज का ये प्यारा सा गीत।

1980 में अलका ने अपना पहला गाना गाया पायल की झनकार। बतौर सिंगर अलका याग्निक के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब उन्होंने गायन को अपना करियर चुना तो उनके सामने भारत के सुर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले थी। लेकिन अलका ने भी इन सब के बीच अपने आप को प्रसिद्ध करने की ठान ली। तो हो जाए इनकी आवाज का एक और नगमा।

अलका ने अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म लावारिस में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाया, जो बहुत जबरदस्त हिट हुआ। लगभग 8 साल तक मुंबई में संघर्ष करने के बाद 1988 में फिल्म तेजाब में अपने गीत 1, 2, 3 की सफलता के बाद वो पार्श्व गायिका के रूप में सफल हो गई। तो आइए दोस्तों, हो जाए यही गीत।

0: इंतजार।
1: कौन है?

सन 1989 में अलका ने फिल्म कयामत से कयामत तक में उदित नारायण के साथ ऐ मेरे हमसफर, अकेले हैं तो क्या गम है, गजब का है ये दिन, सोचो जरा जैसे सुपर हिट युगल गाने गाए। इन फिल्मों की सफलता के बाद तो हल्का को कई अच्छी फिल्मों के ऑफर्स मिले। सन 1994 में फिल्म हमेरा ही प्यार के सॉन्ग्स के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो पेशे खिदमत है दोस्तों उन्हीं की प्यारी सी आवाज में ये प्यारा सा गीत।

1999 में प्रदर्शित फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई भाषाओं की 700 से ज्यादा फिल्मों में करीब 20,000 गाने गाए। तो लीजिए उन्हीं की आवाज का ये गाना।

2012 में हिंदी सिनेमा के 100 सालों के दौरान फिल्म ताल के गीत ताल से ताल मिला को देसी मार्टिनी, हिंदुस्तान टाइम्स, फीवर 104 के द्वारा किए गए एक पोल में उनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले। तो ये लीजिए, पेश खिदमत है उनकी आवाज में एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के आज के शाम के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायरा हैं हमारे साथ हैं वो हैं सरोजनी जी। बाकी की बातचीत हम सरोजनी जी से ही करेंगे और उनके बारे में, उनके कलाम के बारे में और उनके कलाम भी सुनेंगे। सरोजनी जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया। और गजलों की दुनिया में मुझे लोग डॉक्टर सरोजनी तन्हा के नाम से जानते हैं।
0: बेहतरीन बेहतरीन, डॉक्टर सरोजनी तन्हा जी। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं मैम। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म स्थान क्या है और उसके बारे में कुछ रोचक सी जानकारी दे दीजिए।
1: मेरा जन्म स्थान दुनिया का, मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सबसे प्राचीन शहर वाराणसी, जो भगवान भोलेनाथ की नगरी है, वहाँ का कंकड़ माँ गंगा और काशी विश्वनाथ का है। और इसकी महत्ता तो मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लोग इसके बारे में इतना जानते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी इस बात को सुनकर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि कहे बगैर नहीं रह पाऊंगा कि
1: बिल्कुल
0: मैं भी बनारस से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ और 4 साल मैंने IIT BHU से पढ़ाई की और बनारस की गलियों गलियों से मैं वाकिफ हूँ। बड़ा ही खूबसूरत, और एक तरीके से तो बनारस मेरी दूसरी माँ है जिसने मुझे जीवन दिया।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपके विचार जानकर मन कहीं अंदर तक आह्लादित हुआ क्योंकि मेरी जन्मभूमि है और वहाँ की मिट्टी मुझे इतनी प्रिय है, क्या बताऊं। उससे जुड़ा कोई भी शख्स अगर मुझसे मिलता है तो मेरा, मुझे लगता है जैसे कोई अपना मिल गया।
0: तो मैम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल, कलाम या नज्म जो भी है आप हमें सुनाए।
1: हाँ, एक शायर जैसे किन किन हालात में गजल कहते हैं, तो एक गजल मैं आपको सुनाती हूँ जिसका मतलब कुछ यूं है कि कोई एहसास उतरता है, कोई एहसास उतरता है गजल कहने, दर्द जब हद से उतरता है गजल कहती हूँ। एक मासूम सी ख्वाहिश को लिए सीने में, एक मासूम सी ख्वाहिश को लिए सीने में, ख्वाब मेरा कोई मरता है गजल कहती हूँ, ख्वाब मेरा कोई मरता है गजल कहती हूँ। उसके आने की खुशी में सजाऊ उम्मीद का घर, उसके आने की खुशी में सजाऊ उम्मीद का घर, भर भरा कर जो बिखरता है गजल कहती हूँ। किसी दुश्मन के लिए दोस्त की मानिंद कभी, किसी दुश्मन के लिए दोस्त की मानिंद कभी, दिल जो चुपके से धड़कता है गजल कहती हूँ, दिल जो चुपके से धड़कता है गजल कहती हूँ। और लम्स के गुल जो कभी ख्वाब को महकाए तो, लम्स की गुल जो कभी ख्वाब को महकाए तो, दर्द दिल और निखरता है गजल कहती हूँ। और ये शेर कुछ यूं हुआ कि कितने पोशीदा ख्यालात है बेमौत मरे, कितने पोशीदा ख्यालात है बेमौत मरे, दिल जो सदमे से उबरता है गजल कहती हूँ। कोई आहट मुझे चौंका के चली जाती है, कोई आहट मुझे चौंका के चली जाती है, ज़हनो दिल खौफ से भरता है गजल कहती हूँ। उसकी आंखों में हया है न वफा है बाकी, उसकी आंखों में हया है न वफा है बाकी, जब भी तकरार वो करता है गजल कहती हूँ। अब तो ख्वाबों में भी आते ननकोशे माजी, अब तो ख्वाबों में भी आते ननकूशे माजी, वक्त करवट यूं बदलता है गजल कहती हूँ। वो मेरा है, ये मक्ते का शेर है कि वो मेरा है इसी संजीदा से खुशफहमी, वो मेरा है इसी संजीदा से खुशफहमी में, तन्हा दिल जब भी संवरता है गजल कहती हूँ, तन्हा दिल जब भी सवरता है गजल कहती हूँ, कोई एहसास उतरता है गजल कहती हूँ।
0: बेहतरीन बेहतरीन, बेहद
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश का, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बेहद खूबसूरत गजल, मैं इसी वजह से बीच में कुछ कहना ही भूल गया कि मुझे सुन लेने दीजिए।
1: नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात।
0: बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत।
1: हालांकि शायरों की ये आदत होती है बीच बीच में वाह वाह वाह वाह आते रहे तो उनकी हौसला अफजाई होती है, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम है इसलिए आपने उचित ही किया।
0: अब मुझे भी लगा कि एक फ्लो है उसको होना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: वरना इच्छा तो बहुत थी बीच में कूद कूदने की, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम सरोजनी सर, मैम आप अब कौन से गजल गायक की गजल हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी?
1: मैं वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको शायर का नाम बताती हूँ, क्योंकि एक एक ही शायर के गजलों को ना कई गायकों ने, जैसे पंकज उल्लास जी ने भी गाया उसे, उसे जगदीप सिंह ने भी गाया, किसी को गुलाम अली साहब ने भी गाया, तो आपके लिए जो अवेलेबल हो, आप जिनकी आवाज में अवेलेबल हो, मुझे तो उन वर्डिंग से मतलब होता है कि जो उसकी वो है, तो एक क्या बोलते हैं नवाज देवबंदी साहब हमारे पड़ोस के ही शायर हैं, महान शायर हैं, तो उनकी एक गजल मुझे बड़ी पसंद आती है कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके।
0: जी जी जी, बड़ी ही खूबसूरत गजल
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गजल है, जगदीप सिंह की आवाज में
0: जी
1: सुना है मैंने, और किसी ने भी शायद इसे गाया है, तो अगर जगदीप सिंह वाली ही आप सुना सके तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे।
0: बेहतरीन बेहतरीन। आइए दोस्तों, मैम की फरमाइश पर, मैम के हुक्म पर यही खूबसूरत सी गजल हम सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया मैम, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूं मैं, और ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में कुछ खास है तो बताइए।
1: अभी तो मैं मेरठ शहर में रहती हूँ और ये शहर स्पोर्ट्स सिटी कहलाता है। अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी शहर है, क्रांति धरा कहलाती है। 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई और खेलों के उत्पाद के रूप में मेरे ख्याल से दुनिया में लोग इसे जानते हैं। स्पोर्ट्स सिटी के नाम से किसी को बल्ला लेना हो, किसी को गेंद लेनी हो, कुछ भी लेना हो, कोई भी स्पोर्ट्स का आइटम लेना हो, यहाँ सब अवेलेबल है। ज्वेलरी का यहाँ एशियाई मार्केट है सबसे बड़ा, और कैंची, गजक, ये सब चीजें तो यहाँ की फेमस है ही। मूल रूप से हम मेरठ को 1857 की क्रांति धारा के रूप में ही जानते हैं, जो काली पलटन का विद्रोह यहाँ से जब आरंभ हुआ था। तो ये शहर की खासियत है। कार्यस्थल मेरा हापुड़ है, तो मैं रहती मेरठ में ही हूँ, यहीं से रोज चली जाती हूँ।
0: जी जी बेहतरीन। तो सरोजनी मैम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम पढ़ें।
1: जी बेहतर है। मेरा अगला कलाम, अगली गजल, जिसका मतलब कुछ यूं है कि आग पर चलना न टाला जाएगा, आग पर चलना न टाला जाएगा, कैसे फिर पांव से छाला जाएगा। साथ देते हैं हमेशा अपने ही, साथ देते हैं हमेशा अपने ही, ऐसी गफलत को न पाला जाएगा। और जिंदगी बद से भी बदतर है बनी, कैसे अब मुंह में निवाला जाएगा। टूटने से डर नहीं लगता हमें, टूटने से डर नहीं लगता हमें, कौन सा गम हम पे डाला जाएगा। दिल में रहकर दर्द ही सबने दिया, दिल में रहकर दर्द ही सबने दिया, सबको अब दिल से निकाला जाएगा, सबको अब दिल से निकाला जाएगा। शम से जज्बा आग उगले है सदा, शम से जज्बा आग उगले है सदा, जहन दिल से कब ये झाला जाएगा। दौरे हाजिर में बहुत है पाक हम, दौरे हाजिर में बहुत है पाक हम, लगता है माजी खंगाला जाएगा, लगता है माजी खंगाला जाएगा, कि दौरे हाजिर में बहुत है पाक हम, लगता है माजी खंगाला जाएगा। और मर के भी जिंदा रहे अल्फाज में, ऐसे फन में खुद को ढाला जाएगा। और ये मक्के का शेर कुछ यूं हुआ कि हमको फिर तन्हा हराने के लिए वक्त का सिक्का उछाला जाएगा, वक्त का सिक्का उछाला जाएगा। आग पर चलना न ताला जाएगा, कैसे फिर पांव से छाला जाएगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बेहद खूबसूरत,
1: बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजी का, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अमेजिंग अमेजिंग। दोबारा से वही हुआ कि कुछ बोलने की हिम्मत ही ना हुई। तो मैम, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के किसी शायर की, किसी गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं।
1: एक गजल मुझे सुदर्शन फकीर जी का है कलाम, वो मुझे बड़ा पसंद है। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सुना सकते हैं आप मुझे और दर्शकों को भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। ये बड़ा मुझे बहुत पसंद है ये।
0: जी, ये उन्हीं का गाया हुआ है कि लिखा हुआ है?
1: गाया हुआ तो नहीं है, लिखा हुआ है उनका।
0: तो गायक कौन होंगे?
1: मेरे ख्याल से जगजीत सिंह ने भी गा रखा है इसको, जगजीत सिंह जी ने भी गा रखा है और शायद पंकज उधास जी ने भी गा रखा है।
0: जी बेहतर है,
1: एक में मिल जाएगा,
0: बेहतर है। तो आइए दोस्तों, यही गजल सुनते हैं।

0: मैम, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गजल गायकों में आपके सबसे पसंदीदा गायक कौन है?
1: गायकों में तो मैं ज्यादातर जगजीत सिंह जी को ही सुनती हूँ
0: जी,
1: और कभी पंकज उदास जी को भी सुनती थी, ऐसे तो सभी को सुन रखा है। जिसके मुझे एक्चुअली गजल में जिनकी वर्डिंग्स पसंद आ जाती है ना, वो चाहे कोई भी गाए
0: जी।
1: अब चूंकि मैं शायर हूँ तो शायर हूँ, मुझे शब्दों में ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि गायक तो हर गायक हुनरमंद होता है और अपनी तरह से गा भी लेता है वो, लेकिन जो डूब के आप जिसको सुनते हैं वो आपके शब्द ही तो होते हैं जो आपके हृदय तक पहुंचते हैं।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया।
1: मुझे जो शायर हैं उनके कलाम्स पसंद है, वो चाहे कोई भी गा ले तो मैं सुन लेती हूँ उन्हें। वैसे ज्यादातर मेरे पास जगजीत सिंह जी की ही है, मतलब जो मेरे कलेक्शन में जो गजलें हैं वो जगजीत सिंह जी द्वारा ही गाई हुई हैं।
0: बेहतर बेहतर बेहतरीन, बिल्कुल ठीक मैम
1: जी।
0: तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम हमें सुनाएं।
1: जी बेहतर है। तो मेरा अगला कलाम, अगली गजल मेरी कुछ यूं है कि जिसका मतलब कुछ इस तरह बना कि कैसे उजड़े मकाम में रहता है
0: जी,
1: कैसे उजड़े मकाम में रहता है वो मेरे जिस्म उजा में रहता है, कैसे उजड़े मकाम में रहता है वो मेरे जिस्म उजा में रहता है। लोग सुनते हैं चाव से उसको, लोग सुनते हैं चाव से उसको, वो मेरी दास्तां में रहता है। और दौरे हाजिर का हर सबक अक्सर हर किसी के बयां में रहता है, हर खता का हिसाब होता है। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी होते हैं आसपास जो खुद को भगवान से कम नहीं समझते हैं, तो हर खता का हिसाब होता है, जान कर भी गुमा में रहता है। उसकी फितरत ही बेवफाई है, कितना छुप ले आया में रहता है, कितना छुप ले आया में रहता है। मेरा हर जख्म मुझ पे माइल है, मेरा हर जख्म मुझ पे माइल है, छुप के मेरे फुगा में रहता है। और कत्ल हो जाए खून भी ना देखे, शेर कुछ यूं हुआ कि कत्ल हो जाए खून भी ना दिखे, वो असर बस जुबां में रहता है। कत्ल हो जाए खून भी ना दिखे, वो असर बस जुबां में रहता है। इस भरी भीड़ में तन्हा ये वजूद है तो रुई गरा में रहता है, है तो रुई गरा में रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक दूसरी ही गजल, एक अलग ही पहचान, एक अलग ही रंग, एक अलग ही मतलब खसूसियत कह लीजिए, भावना कह लीजिए, एक अलग ही चीज थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली कौन सी गजल हम आपके पसंदीदा गायकों की सुनवाएं हमारे दोस्तों को?
1: एक फिल्म आई थी उमराव जान अदा
0: जी,
1: उसकी लगभग सारी ही गजलें, शहरयार जी की लिखी हुई सारी ही गजलें मुझे पसंद हैं, लेकिन एक कुछ खास पसंद है कि ये क्या जगह है दोस्तों,
0: ये क्या जगह है दोस्तों
1: जी, बहुत, बहुत मुझे पसंद है। अगर
0: जी जी बिल्कुल
1: संभव हो तो आप ये जरूर सुनाएं, मैं सुनना चाहूंगी इसको
0: जी आपके हुक्म पर। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं इस खूबसूरत सी गजल को।

0: बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अगला एक छोटा सा सवाल
1: जी
0: जिसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी बड़ा मजा आएगा और
1: जी
0: सुनने वालों को भी बड़ा मजा आएगा।
1: जी
0: अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने वाला कोई जिन्न मिल जाए
1: ओहो,
0: तो क्या मांगेंगी आप?
1: हमारे यहाँ एक कहावत है, मांगना भला नबाब से, बेटी भली न एक। तो मांगने की जो फितरत है ना, वो हम शायरों की नहीं होती, हम तो देते हैं उसके लिए, चाहे वो जिस्म हो, दिल हो, अल्फाज हो, कुछ भी हो।
0: चलिए
1: कि ये
0: तीन इच्छाएं आप फकत दुनिया के लिए ही मांग लीजिए।
1: भाई, दुनिया के लिए अगर मांगना है तो दुनिया में अमन चैन रहे, सब
0: जी
1: एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं,
0: जी
1: इससे ज्यादा और कोई क्या मांगेगा। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे, अपनों के बीच रहे, कोई तनहा ना रहे,
0: खूबसूरत।
1: यही
0: तो
1: मांगना।
0: मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाए।
1: जी बहुत बेहतरीन। अगली गजल का मतलब मेरा कुछ यूं है कि खामोश लब थे, खामोश लब थे फिर भी बहुत बोलता रहा, खामोश लब थे फिर भी बहुत बोलता रहा, दिल दिल ही दिल में जाने किधर लौटता रहा। जी, दिल
0: सुंदर
1: दिल ही दिल में जाने की घर डोलता रहा। और ये शेर कुछ यूं हुआ कि जिस बेवफा ने वक्त पे धोखा दिया हमें, जिस बेवफा ने वक्त पे धोखा दिया हमें, वो राज़े दिल हमें से सदा खोलता रहा। जिस बेवफा ने वक्त पे धोखा दिया हमें, वो राज़े दिल हमें से सदा खोलता रहा। वो बादे सबा ने हमसे किसी सुबह था कहा, उसे खोज ला जो मुझ में जहर घोलता रहा। ख्वाबों के सब्ज बाग का हाफिज कहा जिसे, ख्वाबों के सब्ज बाग का हाफिज कहा जिसे, हर अधखिली कली को वही नोचता रहा। वो जिसमें न इज्ज, कहते हैं नम्रता को,
0: जी
1: जिसमें न इज्ज और न सलीकाए रुस्तगू। ध्यान दीजिएगा
0: जी
1: कि
0: जी
1: ये आज का दौर है कि जिसमें ना इज्ज और ना सलीकाए गुफ्तगू, अल्फाज में तो वजन वही तोलता रहा, अल्फाज में तो वजन वही तोलता रहा। और इल्हाम की आवाज पे जिस राह भी चले, इल्हाम की आवाज पे जिस राह भी चले, गम हम सफर था, गम हम सफर था, अश्क वही पोषता रहा। और ये मक्ते का शेर कुछ यूं हुआ कि कुछ ऐसे ख्यालात जवां के जवां रहे, कुछ ऐसे ख्यालात जवां के जवां रहे, ताउम्र दिले तन्हा जिन्हें सोचता रहा, ताउम्र दिले तन्हा जिन्हें सोचता रहा। खामोश लब थे फिर भी बहुत बोलता रहा, दिल दिल ही दिल में जाने किधर बोलता रहा।
0: बेहतरीन बेहतरीन गजल, बेहद खूबसूरत बेहद खूबसूरत। शुक्रिया
1: जी
0: मैम। इसी बात पे हमें अपनी पसंद की, अपने पसंदीदा गायक की कोई गजल बताएं जो हमारे दोस्तों को हम सुनवा सकें।
1: एक मसरूर अनवर साहब का कलाम है, ये भी मुझे बहुत पसंद आता है, गजल है इनकी, कि हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही है। गुलाम अली साहब ने
0: वाह,
1: भी
0: जी
1: गाया है, पंकज
0: हाँ
1: उधास
0: जी
1: जी
0: हाँ
1: ने भी
0: जी
1: गाया है, और जगजीत सिंह जी ने भी गाया है। तो
0: बहुत बहुत प्यारी
1: अगर
0: गजल है
1: आपने
0: जी। लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है मैम की फरमाइश पर ये बेहद खूबसूरत सी गजल।
2: टीना सानी जी की आवाज में पेश खिदमत है ये गजल।

0: मैम आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: अगर आपका आपकी इजाजत हो, आपका हुक्म हो, तो एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं।
1: जी जी, अरे आप तो उसके लिए इजाजत की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम इसी काम के लिए यहाँ हैं, आप और मैं।
0: मैम अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं
1: जी,
0: तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: ओके, वैसे तो अपना परिचय चार लाइनों में ही सिमट जाता है, जब हम शायरी की दुनिया में हैं तो कुछ चंद शेर ही परिचय दे देते हैं
0: जी।
1: तो चार लाइनें मैं अपने मुतालिक भी आपको सुना देती हूँ
0: जी। इरशाद,
1: मुझे दे रहा है जो हौसला उसी गम की ताजा बयार हूँ, मुझे दे रहा है जो हौसला उसी गम की ताजा बयार हूँ, मेरी मुफलिसी को भी फख्र है मैं अमीर शहर शुमार हूँ, मुझे आदतों में भी फितरतन मिली नेकियां ही खुदा से हैं, दिले तन्हा नाम है दर्द का गम इश्क से जरदार हूँ।
0: बेहतरीन बेहतरीन
1: जरदार।
0: मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने जितने भी साहबान से और लोगों से इस सवालात को पूछा है
1: जी,
0: शायद नहीं यकीनन आपका जवाब सबसे उत्तम है, सबसे सबसे बढ़िया जवाब आया है। आपने बड़ी खूबसूरती से एक शेर के माध्यम से, एक शेर के सहारा लेकर बेहद खूबसूरत तरीके से अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शख्सियत को बयान कर दिया, बहुत शानदार। तो मैं आप गुजारिश करूंगा मैम कि आप अपना अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: जी, एक छोटी सी गजल समाप्त फरमाएं जिसका मतलब कुछ यूं हुआ कि गुलों से लब हैं, गुलों से लब हैं मगर दिल में खार रखते हो, ख्यालो ख्वाब में भी इंतिशार रखते हो, गुलों से लब है मगर दिल में खार रखते हो, ख्यालो ख्वाब में भी इंतिशार रखते हो, कभी मिलोगे मिलोगे कभी मिलोगे तो पूछेंगे हाल कैसा है, कभी मिलोगे तो पूछेंगे हाल कैसा है, सुना है तुम भी तो मतलब के यार रखते हो कभी मिलोगे तो पूछेंगे हाल कैसा है, सुना है तुम भी तो मतलब के यार रखते हो, ओ भरे जहान में मेरा ही दिल मिला तुमको, भरे जहान में मेरा ही दिल मिला तुमको, मेरे लिए जो मसाइब हजार रखते हो, और फिरासतन मुझे ये इल्म हो गया है अब, फिरासतन मुझे ये इल्म हो गया है अब, जबाने शीरी में खंजर की धार रखते हो। और ये मक्ते का शेर, छोटी सी पांच शेरों की गजल है, कि मक्ते का शेर कुछ यूं हुआ कि वो जिस मकाम पे तन्हा खड़े हैं हम दोनों, वो जिस मकाम पे तन्हा खड़े हैं हम दोनों, कहो कहो क्या दिल में जरा सा भी प्यार रखते हो, कहो क्या दिल में जरा सा भी प्यार रखते हो, गुलों से लव हैं मगर दिल में खार रखते हो, ख्यालो ख्वाब में भी इंतिशार रखते हो, कभी मिलोगे तो पूछेंगे हाल कैसा है, सुना है तुम भी तो मतलब के यार रखते हो।
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बेहद खूबसूरत,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बेहद खूबसूरत। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो, कि इस गजल को मैं याद कर लूं और कुछ मेरे दोस्त यार हैं जिनको मैं
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सुना सकूं कि देखो कमीनो तुम वो हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब किसी को प्यार प्यार से शर्मिंदा करना हो तो कि तुम भी तो मतलब के यार रखते हो,
1: बिल्कुल
0: क्या बात है। बेहद खूबसूरत, काश मेरे पास भी कुछ ऐसी ही कला होती जो मैं शब्दों से खेल पाता।
1: आपके पास जो कला है वो हर एक के पास नहीं है।
0: अरे अभी तो ये प्रोग्राम आपका है डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम आपका है, तो इसी बात पे अपने पसंदीदा गजल गायक या शायर की कौन सी गजल सुनवाना चाहेंगे आप?
1: गुलजार साहब का एक कलाम है, वो भी मुझे बहुत पसंद है, इसे भी मेरे ख्याल से पंकज उदास जी ने और जगजीत सिंह ने भी गाया है, दोनों ने गाया है
0: जी।
1: बट हाँ, मेरे कलेक्शन में जगजीत सिंह जी वाली है कि शाम से आंख में नमी सी है आज फिर आपकी कमी सी है, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: आहा, आहा। लीजिए दोस्तों, डॉक्टर साहब की फरमाइश पर, डॉक्टर साहब के हुक्म पर यही गीत सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपकी गजलें, आपके विचार, आपके फरमाइशें, आपके पसंदीदा गजल गायक, आपके पसंदीदा शायरों के बारे में सुनकर बहुत मजा आया।
1: जी, मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बातें करके।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे श्रोताओं को भी आज तो लुत्फ आया होगा असली गजल गायकी का, असली गजल लिखने वालों के कलामों का उन्होंने लुत्फ उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे ये अवसर दिया। आपका पहले शुक्रिया। आप अगर अवसर नहीं देते तो ना तो मैं यहाँ सुना पाती और ना मेरे आपके दर्शक मुझे सुन पाते। तो सबसे ज्यादा शुक्रिया तो आपका है और उस परमात्मा का है जिसने हमें एक दूसरे से मिलाया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, बहुत आभार।
2: दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
3: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
2: जी हां श्रोताओं, और हम आपके बीच में लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। और वर्षा, हम देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी घर पर बैठे हैं क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बारिश का महीना आएगा और हम अपने अगले फसल की तैयारी करने में हम जुट जाएंगे।
2: अरे नहीं नहीं मनीष जी, आप ये गलत कह रहे हैं। पता है, किसान हमारे वो साथी होते हैं जो कभी भी फ्री नहीं होते हैं। तो वो अगर घर में बैठे भी हैं, जो आपने कहा है वो ठीक है, वो बैठे होंगे, लेकिन वो उस टाइम में भी अपनी कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि जैसे ही बारिश होगी तब हम क्या करेंगे, कौन सी फसल लगाएंगे जिससे कम पानी लगे, जिसमें हमें मुनाफा ज्यादा हो, जिसमें लागत कम लगे, कैसे हम जुताई करेंगे, कैसे कौन से बीज होंगे जिनका चयन हम करेंगे। तो काफी सारी चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं जिन पर वो गंभीरता से सोच रहे होंगे। तो किसान साथियों, हम यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि

0: क्यों ना हम जैविक पद्धति की ओर बढ़े, क्योंकि आप देख रहे हैं ना दिन ब दिन हमारा मौसम जो है एकदम प्रभावित होता चला जा रहा है, और इस तरह से जब सालों साल मौसम को प्रभावित होने में लगेगा तो हमारा जो क्लाइमेट है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो जरूर होगा। तो आप देख रहे हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा पड़ने लगी है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। पहले समय से बारिश होती थी, समय से गर्मी होती थी, समय से सर्दी होती है, जो ये चक्र था वो अपने समय के अनुसार चलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: बिल्कुल वर्षा, आपने बिल्कुल सही कहा है, और खास तौर पर हम अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, जो हमारे किसान साथी, चूंकि बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, अगर झाबुआ जिले की बात करें, वो क्या करते हैं कि दो सीजन की फसल लेते हैं, रवि की और खरीफ की फसल लेते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे ही फसल बोते हैं, इसके बाद वो पलायन कर जाते हैं, चाहे वो गुजरात, राजस्थान या अन्य शहरों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार कहती है कि हमारे किसान साथी घर पर क्यों नहीं बैठते, घर पे क्यों नहीं रुकते हैं, उनकी आय किस तरीके से दुगनी होगी, क्योंकि सभी सरकारें प्रयास कर रही हैं कि हमारे किसान साथियों की आय दुगनी हो। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि आपके शहर झाबुआ में रेडियो टांटिया भील 90.8 FM खुला है, और उस पर जो खेती किसानी की जानकारी हम लोग लेकर आते हैं वो सुनने लायक है, आप उस पर अमल करिएगा, क्योंकि वो छोटी छोटी जानकारी आपके जीवन में बहुत महत्व देंगी। तौर पर देखा जाए, गर्मी का मौसम है, गर्मी का सीजन चल रहा है, सबसे पहले किसान साथियों को सलाह देना चाहेंगे कि ऐसी गर्मी में सबसे पहले अपने खेतों की गहरी जुताई कर लें, क्योंकि हम देखते हैं कि यहां पर ढालू जमीन है और पथरीला इलाका है, किसान साथी अधिकतर देखा जाता है कि ट्रैक्टर से ना कर वो हल वखर से अपनी खेती को करते हैं, तो ऐसे में किसान साथी गहरी जुताई अपने खेतों की कर दें। साथ साथ में गहरी जुताई करने के बाद वो जो खेतों में खाद की अगर बात करें, जैविक खाद की बात करें, पहले पुरानी पद्धति से अगर देखा जाए, पुराने समय में हमारे किसान साथियों के जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते थे कि जैसे ही गर्मी का मौसम आया, वो अपने खेतों की जुताई करने के बाद उसमें बढ़िया गोबर का खाद डालते थे और उसका एक बार फिर से पलट देते थे उसी खेत को, जिससे वो खाद उस जमीन में मिल जाए, और बारिश जैसे ही होने का समय होता था इसके बाद वो अपने बीजों का चयन कर लेते थे कि हमें बीज कौन सी बोना है। लेकिन अब समय बदल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी संबंधित अधिकारी, जैसे कृषि विभाग हुआ, KVK हुआ, उनसे संबंधित अधिकारियों से बात कर वो पूछे कि हमारे किसान साथी ऐसे में, चूंकि समय बहुत गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहा है, किसान साथी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की अगर आय की बात करें तो किस तरीके से बढ़ेगी, खाद आप घर पर बनाइएगा, उस पर बोइएगा, तो खाद का जो खर्चा है वो आपका बच जाएगा।
0: बिल्कुल मनीष जी, आपने एकदम सही बात बताई है। और चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी में, हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं खेतीबाड़ी कार्यक्रम में जैविक खेती के बारे में, यानी कि जैविक पद्धति से कैसे खेती हम कर सकते हैं, क्या क्या फायदे इसके हैं जैविक खेती के। चलिए इस बातचीत को हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम और भी जानकारी जैविक खेती से जुड़ी हुई आपको बताते रहेंगे।
1: लेकिन वर्षा, इससे पहले चूंकि बातचीत हो गई है तो हम क्यों ना अपन एक अच्छे से मिली गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
0: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: बढ़ते रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाले हैं। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर होता है। गाय के गोबर को फसल के लिए पोषण का सर्वाधिक श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती है। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, साथ ही इसका भंडारण भी सहज होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि पैदावार भी ज्यादा मिलती है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलन में है, जिनमें से मुख्य है पेड़ विधि। पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डाला जाता है। हर रोज गोबर को डालकर धीरे धीरे इस गोल चक्र को पूरा किया जाता है। पहली बार प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से केचुए डालकर गोबर को जूट के बोरे से ढक दिया जाता है। नमी के लिए बोरे के ऊपर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है। केचुए गोबर को खाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और अपने पीछे वर्मी कंपोस्ट छोड़ते जाते हैं। इस तैयार वर्मी कंपोस्ट को इकट्ठा करके बोरों में भर कर रख लिया जाता है। इस विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड़ बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड़ की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड़ को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड़ बनाने चाहिए। शुरुआत में पहले बेड़ में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड़ में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड़ की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड़ में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड़ से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छानकर भंडारित कर लिया जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वर्मी बेड़ों में भरे गए कचरे में कंपोस्ट तैयार होने तक 30 से 40% नमी बनाए रखे। कचरे में नमी कम या अधिक होने पर केचुए ठीक तरह से कार्य नहीं करते। वर्मी बेड़ में कचरे का तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यदि बेड़ पर तेज धूप पड़ती है तो तेज धूप पड़ने से कचरे का तापमान अधिक हो जाता है और केचुए तली में चले जाते हैं और अक्रियाशील होकर मर जाते हैं।

0: पेड़ में ताजे गोबर का उपयोग ना करें। ताजे गोबर में गर्मी अधिक होने के कारण केंचुए मर जाते हैं। इसके लिए करीब 4 से 5 दिन पुराना गोबर ले। केंचुआ खाद बनाने के दौरान भी किसी तरह के कीटनाशकों का उपयोग ना करें। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का इस्तेमाल ना करें। फसलों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। केंचुआ खाद भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता ही है, साथ ही मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में भी इजाफा करता है। वर्मी कंपोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं, जिससे रोग भी कम लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता है, साथ ही भूमि में जैविक क्रियाओं को बनाए रखता है। इसके अलावा फल, सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता है, जिससे किसान को उपज का बेहतर दाम मिलता है।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में, और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपड़ा रेडियो अपनी बात है। और मित्रों, अभी आपने केचुआ खाद बनाने की एक नई विधि के बारे में सुना है और समझा भी है, क्योंकि ये विधि हमारे पेड़ों के आसपास की जा सकती है और इससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में डाल सकते हैं और अपने खेतों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। और खास तौर पर जैविक पद्धति की अगर बात करें तो अब सरकार भी अब कहने लगी है कि आज से कुछ दिनों बाद फिर से लोग अब जैविक खेती की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे, और शुरू भी होने लगा है कि लोग अब जैविक पद्धति की ओर रुख कर रहे हैं, जैविक पद्धति से खेती करना शुरू कर दिया है। साथ साथ में अभी फिलहाल में ही सरकार ने घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती की ओर हमें रुख करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी फिलहाल की सरकार ने ये घोषणा की है कि 52 जिलों में 100 गांवों में हम प्राकृतिक खेती करने का हम काम शुरू कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम फिर से प्राकृतिक खेती और अपनी जैविक पद्धति की ओर रुख करने लगे हैं। अब नई चीज हम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं, आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों से बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में मोती पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है, जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है, तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। अब वक्त हो रहा है हमारे अगले सेगमेंट यानी कार्यक्रम खेत खलियान में मौसम की जानकारी का। तो आइए जान लेते हैं कि मौसम आखिरकार क्या कहता है। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आम तौर पर शुष्क रहने की संभावना देखते हुए हमारे किसान भाई भैंसे को तैरने के लिए पानी में छोड़ें और 2 बार नहलाएं ताकि शरीर में ठंडक बनी रहे और हरा एवं रसदार चारा पर्याप्त मात्रा में इनको खिलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क एवं आसमान आमतौर पर साफ रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना भी बताई जा रही है। रात का न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना बताई जा रही है। हवा की औसत गति 11 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना बताई जा रही है। मूंग एवं उड़द में रस चूसक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें और पाए जाने पर बचाव हेतु इमीडा क्लोरोप्लिड दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव अवश्य कर दें। अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खाली खेत में गर्मी की गहरी जुताई यानी 20 से 25 सेंटीमीटर

मिट्टी की पलटने वाले हल से कर दें, ताकि सूर्य ताप से कीट व्याधियों के जो अंडे रहते हैं एवं खरपतवार के बीज जो रहते हैं वो नष्ट हो सकें, तथा फसल के अवशेष यानी नरवाई जो रहती है उनको ना जलाएं। आने वाले 5 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई सब्जियां और फलदार वृक्षों में सिंचाई का कार्य शुरू कर देवे। वर्तमान मौसम में बैगन में जो फल एवं तना छेदक के कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए क्लोनोनाफास 25 सीसी दवा की 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। कद्दूवर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू हुई, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव के लिए हमारे किसान भाई ट्राइजोरम फास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देवे। तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि फल में यदि फटने की समस्या आ रही है तो 6.0 ग्राम बोरेक्स पाउडर प्रति लीटर पानी में की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नेप्थलीन एसिटिक एसिड 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी एवं फिनोलोफिक्स 5.0 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। शिमला मिर्च में जड़ सड़न रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, इसके बचाव हेतु बाप्स्टीन दवा की 2.0 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। तो ये थी जानकारी मौसम विभाग की। साथियों, हमने बहुत सारी बातें इसमें कर भी ली हैं, जान भी ली हैं, सोच भी ली हैं, समझ भी ली हैं। अब वक्त हो रहा है हमारे कार्यक्रम में अगले सेगमेंट का, यानी सुनते हैं सफल किसान की कहानी। तो आइए सुनते हैं सफल किसान की कहानी को, लेकिन इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: जय दिवाकी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
2: राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पॉन्ड फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पौंड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पोली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सबका उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने इन सफल किसानों की कहानी को सुना और जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया है, यानी खेती के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने योजनाओं का लाभ लिया है, उन्होंने आधुनिक पद्धति से खेती की है, उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट पर जोर दिया है, तो तमाम प्रकार की उन्होंने योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सफल किसान के नाम से उनको जाना जाता है राजस्थान में। तो साथियों, हमें आशा है कि ऐसे ही हमारे किसान साथी अब सोच रहे होंगे कि हम भी एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
3: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और सुन रहे कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: जी हां साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसान साथियों के लिए हम बहुत ही लाभदायक जानकारी लेकर आते हैं कि हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं और कैसे खेती करके अपना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में ये भी बताते हैं कि इस मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी जब भी खेतों में जाते हैं तो अपने सर को ढक कर रखें, तौलिए से, गमछे से या फिर किसी और चीज से, या टोपी भी आप लगा सकते हैं। खेतों में काम करते वक्त साथियों हमें ध्यान देना है कि पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है। अपने शरीर को पानी बार बार दें यानी कि पीते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा, तभी हम खेती का काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोताओं हम बात करने वाले हैं कि टिकाऊ खेती।
3: बिल्कुल श्रोता साथियों, कि टिकाऊ खेती आखिरकार है क्या, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि टिकाऊ खेती किसे कहते हैं, टिकाऊ खेती में किस तरीके से नई पद्धति से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना नई पद्धति का आ गया है कि कैसे किसान साथी नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर हमारे किसान साथी आगे बढ़ सके, उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को नई नई पद्धति के बारे में खास तौर पर बता रहे हैं और कुछ ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना होगा किसान साथियों को, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। पानी की किल्लत को देखते हुए हमारे किसान साथी कम पानी वाली फसलों पर जा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब उसके लिए बीजों का चयन होता है, तो बीजों के चयन के लिए हमारे किसान साथी केवीके में जाकर या कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से जो हम कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं वो हमारे किसान साथियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण बातचीत हम लेकर आते हैं। और जैसा कि टिकाऊ खेती की बात करें तो अभी हमारे किसान साथी, चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, तो उनको यदि पथरीला इलाका है तो छोटी छोटी जमीन भी हमारे किसान साथियों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस एक माध्यम हो सकता है, ग्रीन हाउस जिसे कहा जाता है, उसमें नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, पौधे भी उसमें लगा सकते हैं, उसमें भी खेती कर सकते हैं। तो किस तरीके से खेती करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर आज हम एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में कुछ किसान अपने जो सफल हुए हैं और वो अपने अनुभव साझा करेंगे, तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसानों के पास हमारे श्रोता साथियों को ले चलते हैं, उनके अनुभवों को हम जानते हैं, वो नई पद्धति से किस तरीके से खेती करते हैं, क्या अनुभव उनका रहा है। तो आइए हम अपने किसान साथियों की आवाज में इस उनकी कहानी को हम सुनते हैं।
4: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है, जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
5: मैं सुंदरदास, जगदीशपुर का किसान। हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीक को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
6: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। भैया, यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
7: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक

0: धन। और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार, लाभ बार बार। यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: जय दिवाकी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार।
1: हाँ दिशा में पकड़ो, उधर से पकड़ो, चलो। तुम रुको रुको, मैं पहले उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक,
2: आराम से आराम से।
3: अरे घर में शादी है क्या? राम राम।
1: राम राम, तुम हटो यार जरा।
2: का कह रहे हो कल्लू भैया?
3: घर, मैंने कहा घर में किसी की शादी है क्या भैया?
1: शादी से तुम्हारा मतलब?
3: अरे इतना सारा सामान लेकर आए हो, शादी का ही लग रहा है।
2: शादी का? अरे कल्लू, ये जो पाइप है ये सामियाना का पाइप थोड़े ना है। ऊपर से ये बताओ, जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या? है,
3: ये तो बात सही कह रहे हो भैया, लेकिन है क्या ये बवाल?
1: अरे भाई कल्लू, कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं, इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं।
2: हाँ, और तुम्हें पिछली बार की बात याद है? संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए, और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
3: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
1: हाँ थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन भाई वो सब बराबर हो जाएगा, क्यों दिलशान भाई?
2: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।
3: इससे अच्छा तो आप अपने पान की दुकान खोल लेते, उससे तो रोज रोज आमदनी आती।
1: तुम भी यार कल्लू, हद है
2: भैया। हम लोग हैं किसान, हम लोग खेती करेंगे तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। पान और बीड़ी सुरती बेच के कुछ नहीं होने का है।
1: और वैसे भी कल्लू, छोटा बिजनेस नहीं, बड़ा बिजनेस करो,
2: और आज की नहीं आगे की सोचो
4: भाई। पॉली हाउस में लगाओ लागत एक बार और कमाओ बार बार।
2: संगम भैया राम राम,
4: राम राम भैया राम राम।
1: संगम भैया कैसे हैं?
4: मैं तो भैया आप ही जैसा हूँ, एकदम टकाटक।
1: संगम भैया, यहाँ मैं और दिलशान भाई पॉली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं, आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं। क्यों दिलशान भाई?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया, जिस दुकान पे आपने कहा था हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
3: संगम भैया, कितना भी सस्ता पड़ा हो लेकिन है तो महंगा ही।
4: अरे कल्लू भैया, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत देके जाएगा, तब आपका जो पान का खोखा है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया, आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा, एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
1: अरे दिलशान मियाँ, किसे समझा रहे हो? तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो, और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
3: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
4: अरे भैया, पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती, और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हों और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा, यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
3: अरे भैया ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं दिलशान भाई?
2: क्यों नहीं? लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
3: चलो ठीक है, मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
4: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब हुआ थे बुद्धू और बन गए महात्मा बुद्ध।
5: कार्यक्रम खेती बाड़ी में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आप लो रेडियो आपड़ी बातें। अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे एक लघु नाटकिया जिसमें हम जान रहे थे कि किस तरह से पॉली हाउस होते हैं और हमारे किसान साथी कैसे उसमें नर्सरी लगाकर कुछ फायदा ले सकते हैं। चलिए श्रोताओं, अब हमारा वक्त हो चला है अगले सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो नई पद्धति के बारे में हमें बता रहे हैं, तो कैसे हमारे किसान साथी उस नई पद्धति का फायदा ले सकते हैं। लेकिन श्रोताओं, उससे पहले हम यहाँ पर सुन लेते हैं एक गीत को।

0: आदिवासी जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: सर्वप्रथम तो है कि पाली हाउस बड़े काम की चीज है और खास तौर पे जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका अंग होता है कि इसमें आप 6 से लेकर 8 गुना तक ज्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ दूसरी भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। जो भी आप सब्जी लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिना सीजन के आप उगाते हैं तो हमारी जनसंख्या को देखते हुए ये है कि हम जो है सब्जी उत्पादन अपना जो है जितना हो रहा है उससे हम बढ़ा देते हैं तो हमें बहुत सारी जो है सब्जियां जो है बिना मौसम में खाने को लिए मिलती हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। देखिए पॉली हाउस कई तरह के होते हैं और जैसे आपका लो कास्ट है मीडियम कास्ट है हाई कास्ट है तो हमारे किसान भाई किस तरह का पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं कास्ट उस पर निर्भर करता है। इसमें जो हम पॉली सीट यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह की पॉली सीट आती है कि एंटी डस्ट है एंटी सल्फर है एंटी फॉग है तो ये लागत तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई किस चीज का बनाते हैं। आप बांस का भी बना सकते हो साधारण पॉली हाउस आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो किस तरह का बनाते हैं। ज्यादा करके किसान भाई जो हमारा प्रदेश है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है।

0: बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं, कम से 60-70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों वगैरह का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका न हो जहाँ पे छाया आती हो, या ऐसी जगह न हो जहाँ पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके। पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं। और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसान भाई पॉली हाउस अगर बना, ऐसा नहीं कि जब भी जो ये आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता है। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जाने जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जैसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे इस प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपको लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाएं तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें, क्योंकि आपकी उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का, जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा। तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का, जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए, और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि दो फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी ले लीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहे और सोच बनाए रखें, खासतौर पर उन सब्जियों को भी जैसे लगता है कि साल भर आमदनी की बात है, तो कुछ किसान भाइयों को पॉली हाउस वगैरह भी बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना मौसम में भी जो है सब्जी हम लगा के आप जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लगाने से सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाई जैसे है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस सब्जी को लगाने जा रहे हो उसमें लागत कितनी आएगी और उसका बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। तो जहां भी आप लगाना चाहो, ये नहीं कि हमने कह दिया कि कोई भी सब्जी आप साल भर उगाते रहिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बहुत कोई नई सब्जी आप जैसे एक्जोटिक आप लेट्यूस लगाना चाहते हैं, सेल्ली लगाना चाहते हैं, इस तरह की सब्जियों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक बार बात जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारे दिल्ली है, वहां आपको मूल्य बहुत ज्यादा उसका मिलेगा। तो इस तरह की चीजों में लगने से पहले एक बार बाजार को देख ले, वैज्ञानिक सलाह जरूर ले ले। और मुझे लगता है कि ऐसी सब्जी है जैसे टमाटर तो पूरे साल भर, और किसान भाई देख रहे हैं कि हर एक सब्जी पूरे साल भर मिल रही है, मिल कहां से रही है, जब कोई किसान उगा रहा तभी तो मिल रही है आपको, तो दूसरा उगा सकता है, हमारे देश के दूसरे भाग में उगा सकता है, तो हम क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो पूरा है कि सब्जी से अगर व्यवसाय में लगा जाए तो हम पूरे साल भर जो है उसमें लगे रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हमें आधुनिकीकरण करना पड़ेगा कि हमें जो है पॉली हाउस है, मल्च है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, कुछ नई चीजें जो आई है, नई प्रजातियां हैं, इनका हम समावेश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि साल भर जो है हमारा जो परिवार, हम खुद भी अच्छी सब्जी खाएंगे, दूसरे को भी अच्छा खिलाएंगे। तो ये जैसा कि है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो सब मिल के चलें तो सभी अच्छा ही अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना विषय विशेषज्ञ को, तो काफी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी हमारे किसान साथियों के मन में। जो भी सवाल चल रहे थे इस खेती को लेकर और साथ में नई पद्धति को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास का क्लाइमेट एकदम से खराब होता चला जा रहा है, पानी की कमी हमें देखने में आ रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन से वे बीज हैं जिनका चयन करके हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा एक मिल सकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं और आइए इसी कार्यक्रम में हमारे साथ पशुपालन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो इस मौसम में हम कैसे पशुपालन पर ध्यान दे सकते हैं, क्या चीजें उनके लिए सही होती हैं, क्या हमें करना चाहिए पशुधन के साथ, तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
3: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें, साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यावसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती कहती हैं कि पीएयू से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
4: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए, घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही, मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई, मेरे को मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए।
3: वहीं पीएयू के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाह देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही पीएयू ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
5: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम उसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर दयाल सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है, जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी RJ वर्षा
6: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
2: जी हां साथियों, आप ही आप सुन रहे थे सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से साथियों हम जब खेतों में चावल उगाते हैं और उसको सीधा ही हम मंडी पर बेच देते हैं, जिससे हमें बहुत ही कम मुनाफा और सीमित मुनाफा मिलता है, लेकिन अगर हम उन्हीं चावलों का कोई और प्रोडक्ट बनाकर तैयार करें, उनकी पैकिंग कर अगर बेचें तो उससे दो गुना फायदा हम कमा सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें समझने की और एक प्लान करने की कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में दालें बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप किसी और सब्जी की बहुत ज्यादा पैदावार करते हैं, मान लीजिए आपका आलू बहुत ज्यादा होता है, तो आप आलू ऐसे ही बेचने की बजाय आप उनके चिप्स बनाकर भी बेच सकते हैं बाजारों में, जो आपकी अच्छे दामों में चली जाएगी, जिसका अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान साथियों को सीधे पहुंच सकता है। तो साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि हमारा समय हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो आज का ये कार्यक्रम खेती बाड़ी साथियों आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर फोन के माध्यम से बताना ना भूलेगा, और साथ में हमें सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम आपके अनुसार यानी आपके लिए फायदेमंद है तब भी हमें बताइएगा, और फायदेमंद अगर नहीं है तब भी हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है
6: 9425416303। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ में यदि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ साथ में विषय विशेषज्ञ की सलाह भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो हम अपने विषय विशेषज्ञ से सलाह लेकर आपके सवालों का जवाब हम कार्यक्रम के माध्यम से दिलाएंगे। और हम साथियों कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं वो छोटी सी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचनी चाहिए जो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। खासतौर पर अगर देखा जाए कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे वर्षा जी ने बताया था कि हम सीधे जैसे चावल को बोते हैं और उसको बेच देते हैं, तो डायरेक्ट ना बेचकर, या फिर आलू यहाँ पर जो भी सीजनेबल चीजें रहती हैं जो उगाई जाती हैं खासतौर पर झाबुआ में, तो उनको सीधा ना बेचकर उनको पैकिंग कर यदि संगठन के माध्यम से अगर हम उसको बेचा जाए तो आपको दाम भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी आपको अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझनी होगी, सोचनी होगी और अपने जीवन में अपनानी होगी। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो आपके रेडियो साथी मनीष
2: और आपके रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति, फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आप हैं आपके दोस्त समीर के साथ। तो दोस्तों, एक बार एक सूफी अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ नदी में नहाने के लिए गए। उन्होंने देखा कि किनारे पर एक परिवार के ही सदस्य थे जो बड़े ही गुस्से में एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़े, मुस्कुराए और पूछा, ये लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं? स्टूडेंट्स कुछ देर सोचते रहे। उनमें से फिर एक ने कहा, जब हम शांति खो देते हैं तो हम चिल्लाने लगते हैं। तो सूफी ने पूछा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति बगल में ही खड़ा है तो चिल्लाते क्यों हैं? बात नरमी से भी तो कही जा सकती है। स्टूडेंट्स ने कुछ और जवाब दिए, लेकिन सूफी को मजा नहीं आया। आखिरी में सूफी ने समझाया, देखो, जब दो लोग एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं तो उनके दिल बहुत दूर हो जाते हैं। उस दूरी को कम करने के लिए वो एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, जिससे कि बात सुनाई दे जाए। वो जितने गुस्से में होते हैं उतनी दूरियां उनकी बढ़ती जाती हैं, फिर उसे कम करने के लिए दरअसल वो चिल्लाते हैं। दोस्तों सोचिए ना, परिवार में ही दो लोग बिल्कुल बगल बगल में ही खड़े होते हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, उस वक्त उनके दिल दूर दूर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ने पूछा, अच्छा क्या होता है जब दो लोग प्यार में होते हैं? सूफी संत ने कहा, वो धीरे धीरे बातें करते हैं, उनके दिल करीब हो जाते हैं, उनके बीच की दूरियां ना के बराबर हो जाती हैं, इसलिए चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह दोस्तों, ये बात तो सही है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वो चिल्लाकर कभी बात नहीं करते, वो दरअसल फुसफुसा के बात करते हैं। इसका मतलब हुआ, उनके दिल काफी नजदीक होते हैं। सूफी ने आगे कहा, जब वो और अधिक प्यार करते हैं तो उनका तो बोलना ही बंद हो जाता है, कानाफूसी करने से या सिर्फ देखने भर से काम चल जाता है। इसलिए दोस्तों, दिलों को दूर मत होने दीजिए, ऐसी बातें बिल्कुल ना कहिए जिनसे दूरियां बढ़ जाएं, नहीं तो दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि लौटने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा।

आइए दोस्तों बात करते हैं गुस्सा करने से, क्रोध से कितना नुकसान होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है। दलाई लामा जी कहते हैं, कठिन परिस्थितियों में गुस्से से बचकर धैर्य के साथ काम करने से आप उन सभी बुरे परिणामों से बच सकते हैं जो गुस्सा आने पर किसी भी व्यक्ति को भोगने पड़ सकते हैं। कई बार आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको कठोर कदम लेने पड़ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ठोस कदम आप गुस्से में आकर उठाने के बजाय करुणा और दूसरे के प्रति चिंतित होकर भी तो उठा सकते हैं। किसी के विरुद्ध बहुत कठोर कदम उठाने का एक कारण ये भी है कि अगर आप अपने साथ हुए अन्याय या नुकसान को यूं ही नजरअंदाज करेंगे तो उस बात का खतरा रहता है कि उस व्यक्ति को वैसा नकारात्मक व्यवहार करने की आदत पड़ जाए जो कि आगे चलकर दरअसल उसी व्यक्ति के पतन और विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए कठोरता से विरोध करना जरूरी है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसा दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा और चिंता के कारण कर रहे हैं। ऐसा कीजिए, एक स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें कोई आदमी जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, जो आपके निकट है और आपको प्रिय भी है, किसी खास स्थिति में गुस्सा हो जाता है। ऐसा किसी कटु संबंध में होता है या फिर किसी ऐसी परिस्थिति में जहां निजी तौर पर कुछ परेशानी हो। उस व्यक्ति को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पूरी तरह से अपनी मानसिक शांति खो बैठता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक तरंगे छोड़ रहा होता है, यहां तक कि खुद को मार रहा होता या चीजें तोड़ रहा होता है। उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा किए हुए गुस्से के परिणामों के बारे में सोचिए तो आप उस व्यक्ति में शारीरिक बदलाव होता हुआ महसूस करेंगे। वो व्यक्ति जो आपके नजदीक है, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे देख लेने से ही आपको अच्छा लगता है, अब एक बहुत ही गंदा और कुरूप व्यक्ति में बदल चुका होता है। मैं ये आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कल्पना करने के लिए इसलिए कह रहा हूं

क्योंकि अपनी तुलना में दूसरों के दोष देखना आसान होता है ना। तो अपनी कल्पना की मदद से कुछ देर इस पर ध्यान लगाइए। तो अब इसके बाद इसी स्थिति का विश्लेषण कीजिए और उन्हीं स्थितियों में अपने अनुभव के साथ जरा जोड़कर देखिए। सोचिए कि आप खुद ऐसी अवस्था में कितनी बार आ चुके होंगे जब आप बेहद गुस्सा हो गए होंगे, चीख रहे होंगे और नकारात्मक ऊर्जा दे रहे होंगे। दृढ़ निश्चय कीजिए तब जरा अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से आप किसी दूसरे व्यक्ति को कुरूप और गंदा देख रहे थे, आप कैसे दिख रहे होंगे। अब तय कीजिए कि मैं खुद को गुस्से और घृणा से बचा कर रखूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरी भी वही दशा होने वाली है जो उस व्यक्ति की हुई, जो दरअसल मेरा प्रिय था लेकिन गुस्से में उसने सब बर्बाद कर दिया। मेरा भी यही परिणाम होगा, मेरी भी मानसिक शांति खत्म हो जाएगी, मैं भी धैर्य खो बैठूंगा और उसी तरह कुरूप बन जाऊंगा। अब इस निर्णय लेने के बाद ध्यान के अंतिम कुछ मिनटों में बिना और कुछ विश्लेषण किए अपने दिमाग को उस निष्कर्ष पर फोकस कर दीजिए, केंद्रित कर दीजिए। अपने दिमाग को उस गुस्से और घृणा के प्रभाव से दूर हटा लीजिए। स्वयं ही कहिए, मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा, होने ही नहीं दूंगा। इसी दृढ़ निश्चय को पैदा करते रहिए। बस कुछ ही मिनटों में अपने मस्तिष्क को उस दृढ़ता पर केंद्रित रहने दीजिए और आप एक खूबसूरत इंसान के रूप में निकल कर आएंगे। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

इस बेचैन संसार में हर कोई किसी न किसी तरह की शांति, खुशी या कोई आश्रय पाने के लिए तरस ही रहा है। ऐसे में हम आखिर क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पाना चाह रहे हैं, इसका पता लगाना हमारे लिए जरूरी तो है ना। शायद हम में से ज्यादातर लोग अशांति, युद्ध, संघर्ष, कलह से भरे हुए इस संसार में एक ऐसा आश्रय चाहते हैं जहां पर कुछ शांति हो। इसलिए हम खोज में लगे हैं। हम एक के बाद एक दूसरे नेताओं के पीछे, एक धार्मिक संगठन से दूसरे धार्मिक संगठन के पीछे, या फिर एक गुरु से दूसरे गुरु के पीछे दौड़ते रहते हैं। मगर क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं, या किसी भी तरह से बस तुष्टि, मौज मजे की तलाश कर रहे हैं जिससे खुशी पा लेने की उम्मीद रखते हैं हम। खुशी और तुष्टि में देखिए दोस्तों अंतर है। क्या खुशी को खोजा जा सकता है, सोचिए। खुशी आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज है। वो किसी और चीज के साथ अचानक ही चली आती है। यहां बहुत तेज जिज्ञासा, ध्यान, सोच, ख्याल की जरूरत है दोस्तों। ऐसे किसी चीज की खोज में लगने से पहले हमें पता लगाना चाहिए कि हम पाना क्या चाहते हैं दरअसल, खुशी या तुष्टि। तुष्टि का मतलब सैटिस्फैक्शन, पूर्णता। मुझे लगता है अधिकतर लोग तुष्टि की तलाश में हैं, खुशी की नहीं। वो संतुष्ट होना चाहते हैं, अपनी खोज के आखिरी में पूर्णता का एहसास करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शांति खोज रहा है तो वो उसे बड़ी आसानी से पा सकता है। आंखें मूंदकर अपने आप को किसी उद्देश्य, किसी विचार के लिए समर्पित कर दीजिए और उसमें आश्रय ले लीजिए। निसंदेह ऐसा करने से समस्या का हल तो नहीं हो जाएगा, किसी विचार के घेरे में अपने को अलग थलग कर लेने से हमारे मन में जो उलझन चल रही है उससे मुक्ति तो नहीं मिलेगी। इसलिए हमें अपने भीतर और बाहर पता लगाना होगा कि वो क्या है जिसे हम में से हर कोई चाहता है। यदि हम इसके बारे में साफ हैं तो हमें किसी गुरु के पास, किसी उपासना गृह में या संगठन में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए हमारी कठिनाई अपनी मंशा में साफ होने की है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि दरअसल हमें चाहिए क्या। सारी तकलीफ तो यही है। क्या इसके बारे में हम साफ हो सकते हैं? हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे धार्मिक आध्यात्मिक सभाओं में जाते हैं, चर्चाएं करते हैं, संगठनों को ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से इस उलझन का, अपने जीवन के क्लेशों का समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। और यदि हम ये सब नहीं कर पाते तो सोचने लगते हैं कि हमने पा क्या लिया। यानी कि हम कहने लगते हैं कि कोई विशेष संगठन ऐसा है, कोई विशेष गुरुजी, कोई आचार्य, कोई ग्रंथ ऐसा है जो हमें संतुष्ट करता है। हम जो कुछ भी चाहते हैं वो शायद उसमें मिल जाएगा और बस हम उसमें जड़ होकर, कैद होकर रह जाते हैं। बाहर की तरफ देखना ही नहीं चाहते हम।

दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए। दोस्तों, जब आप खुशी को नहीं जानते तो महज ये एक विचार है, और जब आप इसे जानते हैं, खुशी को जानते हैं, तो वो आप ही हैं। खुशी एक इंसान की सबसे स्वाभाविक स्थिति है। जब आप भीतर से आजाद महसूस करते हैं तभी तो खुशी दिखाते हैं। जब हम अपने स्वभाव से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि ये बात बड़ी अजीब सी है कि खुद खुशी का स्रोत होने के बावजूद हम इसे दूसरी जगहों पर ढूंढते रहते हैं। हमें उनके कारणों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। ऐसा क्या है जो हमारी खुशी को प्रभावित करता है? पहला स्वास्थ्य हो सकता है, हेल्थ हो सकती है। दूसरा हमारे आसपास का माहौल, पर्यावरण हो सकता है। और तीसरा शायद दिल, हमारा विचार। चौथा हो सकता है महत्वाकांक्षा। हम चाहते क्या है जिंदगी में, हम हमेशा क्या उसी को सोचते रहते हैं। कई बार वो चीजें भी हमें दुखी कर सकती हैं। मान लीजिए कि ये जो ऊपर मैंने चार बताए, स्वास्थ्य, पर्यावरण और तीसरा चित्त, हमारा मानस, चौथा महत्वाकांक्षा, इनमें से फर्ज कीजिए हमारे पास तीन हैं, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं तो ये हमारी स्थिति को उत्तेजित कर देगा। अब इच्छा का मतलब है भविष्य में इच्छाओं की पूर्ति के माध्यम से खुशी दिखाना। यदि आप कहें कि जब आप सभी इच्छाओं से छुट्टी पा लेंगे तब खुश होंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं दोस्त। चुनौती अपनी गतिविधियों को छोड़े बिना खुश रहने में है। ये एक ऐसा कौशल है जो सीखा जा सकता है। इसके लिए छोटे बच्चों से बेहतर कोई शिक्षक नहीं मिलेगा आपको। उनको गौर से देखिए, उनकी आकांक्षाएं तो बहुत होती हैं, फिर भी वो पल में खुश हो जाते हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वही करते हैं जो जरूरी है, लेकिन वो उन तक ही सीमित नहीं रहते। उनका मन बहुत ही आसानी से एक चीज से दूसरी चीज पर चला जाता है। हमें मन को इच्छा अनुसार निर्देशित करना चाहिए और किसी भी चीज पर अटके नहीं रहना चाहिए। देखिए, खुशी एक विचार है, एक दृष्टिकोण है जिसे विकसित किया जाना चाहिए, मैं मानता हूं। महर्षि पतंजलि ने संतोष या खुशी को एक नियम, एक व्यक्तिगत नैतिकता के रूप में बताया। आपको खुद को खुशी के मूड में ढालना होगा। वो सिर्फ एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक घटना नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव देखिए आते ही रहेंगे। हर स्थिति में व्यक्ति को खुशी के स्वभाव में बने रहने की कोशिश तो करनी होगी। दुनिया की किसी भी चीज को अपनी खुशी में खलल न डालने दें, दृढ़ संकल्प करें। बहुत सारे सन्यासियों के नाम आनंद से खत्म होते हैं। उनका नाम ही उन्हें याद दिलाता है कि वो आनंदमय हैं। वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते और चारों ओर खुशियां फैलाने में लगे रहते हैं। कोई भी मनुष्य अपने घर, परिवार या अड़ोस पड़ोस से कटके नहीं रह सकता। यदि परिवार में एक व्यक्ति दुखी है तो इसका प्रभाव तो दूसरे सदस्यों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहना बिल्कुल बेकार होगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दुखी रहो, होगा ही नहीं ऐसा। हालांकि खुशी एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, पर यह हमारे चारों तरफ के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जब अगली गली में दंगे हों तो अंदाजा लगाइए आपकी गली क्या खुश हो सकती है। इसलिए हमें अपने साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम खुश हो पाएंगे। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

भक्त नरसी मेहता जूनागढ़ सौराष्ट्र में गृहस्थ जीवन बिताते हुए भगवान की पूजा उपासना और रोगियों की सेवा में लगे रहते थे। वो अपने रचे हुए पदों पर तन्मय होकर गाया करते थे और बस श्रोता मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। एक दिन दलित समुदाय के एक भक्त ने उनसे पूछा, क्या आप मेरे घर आकर संकीर्तन करेंगे और हमें पवित्र करेंगे? मेहता जी ने कहा, कीर्तन क्यों नहीं किया जा सकता, बिल्कुल मैं करूंगा, तुम तैयारी करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। नरसी मेहता उसके घर पहुंचे, बहुत तन्मय होकर उन्होंने भगवान का संकीर्तन किया, प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद उनकी जाति के कुछ रूढ़िवादी सवर्णों को जब ये पता चला कि नरसी जी एक दलित के यहां जाकर कीर्तन करके आए हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने पंचायत पर नरसी मेहता को दलित के घर कीर्तन करने के आरोप में जाति से बहिष्कृत कर डाला। नरसी मेहता जी ने सवर्ण जाति के मुखिया से बहुत विनम्रता से कहा, भगवत भक्तों की कोई जाति नहीं होती प्रभु, जो भी एक साथ कीर्तन करते हैं वो सब एकाकर होकर एक ही जाति के हो जाते हैं। आप लोगों ने तो मुझ पर बड़ा एहसान किया कि केवल एक जाति के दायरे से मुझे निकाल दिया, अब मैं बहुत बड़ी जाति का एक सदस्य हूं, मैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मुखिया सारंगधर भक्त नरसी का मुंह देखते रह गए और शर्म से पानी पानी हो गए। आइए दोस्तों, ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

दोस्तों, आप भीतर से कितने भी धनवान हैं, ये बात ही आपको वास्तविक रूप में संपदा से संपन्न बनाती है। इस संपदा का एक बड़ा भाग है हमारे निजी अनुभव। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो केवल सीखने और अनुभव करने के लिए। जी हां, अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे तो प्रेम हो गया है, अब मैं क्या करूं, तो आप प्रेम में कमजोर मत पड़िए, उसे अपनी ताकत बनाइए। देखिए, प्रेम एक अनुभव है, आपको इसका अनुभव करना चाहिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम अनुभव का एहसास इतनी आसानी से नहीं कर सकते जब तक कि हमारा अतीत प्रदूषित हो। मतलब कि अगर हम पीछे से परेशान होकर आए हैं तो अनुभव का एहसास हमारे अंदर ठीक से आएगा नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाता कि हम नाश्ते की टेबल पर बैठकर अपने भोजन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में ऑफिस की डांट का अनुभव चल रहा होता है। क्यों? ये विचार हमारे वर्तमान के सुखद अनुभव को खराब कर देता है। मनुष्य को अतीत के अनुभवों के बजाय वर्तमान को सुखद अनुभवों में परिवर्तित करना चाहिए। मतलब अभी इस वक्त, इस पल में जिए।

रहस्यदर्शी संत कबीर जी ने कहा था कि ढाई अक्षर प्रेम का। इसी चीज को लेकर बहुत सारे संतों ने बहुत सारी बहुत खूबसूरत प्यारी प्यारी बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रेम जो है आत्मा का भोजन है, प्रेम आत्मा में छिपी हुई परमात्मा की ऊर्जा है, प्रेम आत्मा में निहित परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है, प्रेम को जीवन और परमात्मा के बीच संगीत की संज्ञा दी गई और कहा गया कि प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं है, तुमसे विराट अपनी उंगलियां तुम्हारे ऊपर रखता है। हां, तुम चाहो तो बजने से इनकार कर सकते हो, तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो, तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की उंगलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा ही नहीं कर पाएंगी। वो कहते हैं कि जब तुम प्रेम में होते हो तो किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया, किसी ने सोए हुए तारों को छेड़ दिया, बस वही प्रेमी हो जाता है। वो प्रेमी हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है जिसने आपके दिल के तार छेड़े, लेकिन प्रेम का स्वर एक ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कोई नाता रिश्ता बनाते रहो लेकिन अचानक कोई एक घटना घट जाती है, ये मूल्यवान है, समझ लेना इसको। प्रेम के तीन तल होते हैं। देखिए, प्रेम एक इंद्रधनुष है, उसमें कई रंग हैं, निम्नतम से लेकर श्रेष्ठतम तक, काम से लेकर राम तक। प्रेम कोई एक आयामी घटना नहीं है, बहुत सारे पहलू होते हैं उसके। मूलतः तीन आयाम समझ लीजिए। पहला आयाम शरीर का। शरीर का प्रेम नाम मात्र को प्रेम है, 1% प्रेम होता है, 99% रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। 1% होते हो तुम, 99% होता है अचेतन। जिस तल पर जानवर जीते हैं उसी तल पर अधिकतर मनुष्य भी जीते हैं। जिन्होंने प्रेम का पहला तल ही जाना वो प्रेम के दुश्मन हो जाते हैं। इस तरह के दुश्मनों ने ही धर्म को बिगाड़ दिया है। प्रेम की ऊंचाइयां जानी नहीं, प्रेम की छोटी होने की बात को करने लगे और तब प्रेम के खिलाफ हो गए। एक तो प्रेम है शरीर के तल का, जो कि जानवर जैसा होता है, विवाह के नाम पर जो चल रहा है बस वही प्रेम है। और दूसरा प्रेम है मन का, जो कविता की तरह होता है, बहुत मानवीय होता है। क्या घटता है प्रेम के दो पलों में? दो व्यक्ति पास आते हैं, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि हम दो हैं, ऐसा भी नहीं लगता कि हम एक हो गए हैं, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम दो हैं। उसी पल में तुम्हें पहली दफा ये पता चलता है कि दो भी हैं और एक भी है, क्योंकि दोनों दिलों के बीच में जो संगीत चल रहा है वो अलग अलग नहीं बज रहा, वो एक ऑर्केस्ट्रा है, एक साथ बज रहा है। उसमें एक लयबद्धता है, एक के बीच में दो लोगों के होने का अनुभव है, दो के बीच में एक के होने की अनुभूति भी है। प्रेम जो है वो एक पहेली हो जाती है और बस यही खोज धार्मिक खोज में बदल जाती है। यही प्रेम प्रार्थना बन जाता है, वही प्रेम परमात्मा को तलाशता है, क्योंकि वही प्रेम फिर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में नहीं रह जाता, वो प्रेम तो फिर व्यक्ति और अव्यक्त के बीच में हो जाता है, यानी कि प्रभु के बीच में, यानी कि परमात्मा के बीच में हो जाता है। वो प्रेम तो फिर अंश और समग्र के बीच हो जाता है, बूंद और सागर के बीच हो जाता है।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा। आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। हम अक्सर बोल देते हैं, अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी राशि ऐसी ही है। लेकिन क्या सिर्फ राशि एक टैग है, या फिर एक दर्पण है जिसमें हम अपनी आदतें, अपनी डर, अपनी ताकत देख सकते हैं? आज हम सरफेस लेवल के ट्रेड्स की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे हर राशि के अंदर छुपे मनोवैज्ञानिक पैटर्न की, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शैडो और उनका जीवन मंत्र। चलिए शुरू करते हैं एक गहरी सच्ची यात्रा। मेष, शुरुआत करने वाले। मेष लोग जन्म से पायनियर होते हैं, इनके अंदर एक अलग सी आग होती है कुछ नया करने की। इन्हें रुकना पसंद बिल्कुल नहीं है, इन्हें कम्पीट करना बहुत पसंद है। साइकोलॉजी के लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा डर अगर मेष राशि वालों को किसी चीज का होता है तो वो ये है कि उन्हें लोग भूल जाएंगे, इसीलिए ये हर जगह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, पहला कदम हमेशा लेना चाहते हैं। पर जब चीजें इनके हिसाब से नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है इनमें। इनकी ताकत इनका करेज, हिम्मत इनकी कमजोरी इनकी जल्दबाजी, और इनका जीवन मंत्र, हर जंग लड़ना जरूरी नहीं है मेष राशि वालों, कभी कभी शांति भी जीत होती है। वृषभ राशि, वृषभ को सुकून चाहिए और कुछ नहीं, स्टेबल रिश्तों का, स्टेबल करियर का, स्टेबल जीवन का। इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल नीड है सिक्योरिटी, सुरक्षा। ये लोग तब फलते फूलते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि जमीन मजबूत है, पर इसी सिक्योरिटी की वजह से ये बदलाव से बहुत ज्यादा ही डरते हैं। चेंज इन्हें पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी लॉयल्टी और इनकी कंसिस्टेंसी, और इनकी कमजोरी इनकी जिद और कंफर्ट जोन से चिपक जाना। इनका जीवन मंत्र, जो टूट रहा है शायद वही जगह बना रहा है नए के लिए। मिथुन राशि, विचारों के यात्री। मिथुन का दिमाग कभी रुकता नहीं, ये ऑब्जर्व करते जाते सवाल पूछते ही रहते हैं, एनालाइज करते ही रहते हैं। इनकी साइकोलॉजी का बेस है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। इन्हें सब कुछ जानना है, सब समझना है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब माइंड ओवरलोड हो जाता है, फोकस टूट जाता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी कम्युनिकेशन और अडैप्टेबिलिटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी डेप्थ यानी गहराई की कमी। सब कुछ ऊपर ऊपर से देखना है, अंदर झांकने की कोशिश शायद इन्होंने कभी नहीं की। इनका जीवन मंत्र, हर बात जानना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसमें गहरा उतरना जरूरी है। कर्क राशि, भावनाओं के रक्षक। कर्क राशि के लोग इमोशनल इंटेलिजेंस से भरे हुए होते हैं, ये लोग रूम का मूड फील कर लेते हैं। इनका सबसे बड़ा नीड है बिलोंगिंग, इन्हें अपनापन चाहिए, अपनी स्पेस चाहिए, एक सेफ स्पेस चाहिए। पर जब उन्हें लगता है कि उनकी केयर का रिटर्न नहीं मिल रहा तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और बहुत गहराई से हर्ट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी संवेदनशीलता, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनके मूड स्विंग्स,
और बार बार पास से जाकर चिपक जाना। इनका जीवन मंत्र, हर याद को संभाल कर रखना जरूरी नहीं, कुछ को आशीर्वाद देकर जाने देना चाहिए। सिंह राशि, प्रकाश के वाहक। सिंह को स्पॉटलाइट पसंद है, पर स्पॉटलाइट सिर्फ ईगो नहीं होता, ये इनकी नेचुरल वॉर्मथ है। साइकोलॉजी के हिसाब से सिंह का सबसे बड़ा डर होता है इग्नोर हो जाना, इसीलिए ये

सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर कभी कभी ये इम्प्रूवमेंट को ऑब्सेशन बना लेते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म इनका सबसे बड़ा बोझ है, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका डिसिप्लिन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी खुद पर बहुत कठोर हो जाना। जीवन मंत्र, जो आप कर चुके हैं उस पर गर्व कीजिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हम इंडियंस का असली टैलेंट क्या है पता है? ऑनलाइन 1999 का प्रोडक्ट देखकर बोलते हैं, अरे महंगा है। फिर 1899 का देखते ही मन से एक बात निकलती है, वाह 100 रुपीज बचा लिए। प्रोडक्ट वही है पर फीलिंग बिलियनर वाली। What?

दिमाग, किस्मत और फ्री विल, हम चुनते हैं या हमें चुना जाता है। दोस्तों, कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, जो फैसले मैं लेता हूं क्या वो सच में मैं ले रहा हूं, या वो मेरा दिमाग पहले ही डिसाइड कर चुका है, या फिर कहीं सितारे भी इस कहानी का हिस्सा तो नहीं। आज हम बात करेंगे तीन चीजों की, न्यूरोसाइंस, फ्री विल और एस्ट्रोलॉजी। तीनों अलग लगती हैं, पर कहीं ना कहीं एक ही सवाल जुड़े हैं, इंसान कितना आजाद है। पहला अध्याय, दिमाग का राज। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? ये कहती है कि हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। हर सोच, हर इमोशन, हर डिसीजन न्यूरॉन्स के बीच चलने वाली छोटी सी बिजली की लहरों का एक नतीजा है। रिसर्च में ये पाया गया है कि कभी कभी हमारा दिमाग डिसीजन ले लेता है और हमें उसका एहसास मिलीसेकंड्स बाद होता है। सोचिए, आपने हाथ उठाया, आपको लगा आपने डिसाइड किया, पर एक्सपेरिमेंट बताता है दिमाग ने सिग्नल पहले ही भेज दिया था। तो सवाल ये है, अगर दिमाग पहले ही तय कर लेता है तो मैं कहाँ हूं? क्या फ्री विल सिर्फ एक महसूस करने वाली चीज है, एक दूर का इल्यूजन है? दूसरा अध्याय, सितारे और ग्रह। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष कहती है, जब आप पैदा होते हो उस वक्त ग्रहों की पोजीशन आपके स्वभाव और आपके जीवन की दिशा पर असर डालती है। ये कहती है आपका टेम्पर, आपका गुस्सा, आपका डिसीजन लेने का तरीका, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, सब कुछ एक कॉस्मिक पैटर्न है। अब न्यूरोसाइंस कहता है आपका बिहेवियर दिमाग के स्ट्रक्चर और हार्मोन से आता है, और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपका पैटर्न जन्म के वक्त ही सेट हो जाता है। दोनों अलग जुबान बोलते हैं, पर दोनों एक बात मान रहे हैं, इंसान का एक पैटर्न जरूर है और एक पैटर्न में ही चल रहा है। तीसरा अध्याय, फ्री विल बीच में कहां है? फ्री विल का मतलब है मैं अपनी मर्जी से चूज करता हूं, पर अगर मेरा दिमाग केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है और मेरी पर्सनालिटी एक जन्म कुंडली के पैटर्न से बंधी हुई है, तो मेरी मर्जी कहां है और कितनी मेरी है? ये डिबेट बहुत सालों पुरानी है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं फ्री विल पूरी तरह से एक इल्यूजन नहीं है, हमारे पास एक पॉज बटन जरूर होता है। इंपल्स आता है जैसे गुस्सा, लालच, डर, पर हम इंपल्स पर एक्शन लें या रोकें, ये हम सीख सकते हैं। इसी ट्रेनिंग, इसी अवेयरनेस को कहते हैं फ्री विल, और यही एक बीज हो सकता है अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। एक सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है और बहुत जल्दी गुस्सा आता है। न्यूरोसाइंस कहेगा आपके ब्रेन का इमोशनल सेंटर ज्यादा एक्टिव है। एस्ट्रोलॉजी कहेगी आपका मार्स स्ट्रॉन्ग है। पर दोनों के बीच एक तीसरा सच है, आप अपने रिएक्शन को धीरे धीरे समझ के बदल सकते हो। मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, थेरेपी, ये सब दिमाग के सर्किट्स को बदलते हैं। मतलब पैटर्न लिखा हो सकता है, पर कहानी पूरी तरह पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है। किस्मत वर्सेस चुनाव। सोचिए, जिंदगी एक नदी है। एस्ट्रोलॉजी कह सकती है नदी का सोर्स और डायरेक्शन पहले से ही तय है। न्यूरोसाइंस कह सकता है पानी का फ्लो ग्रेविटी और टेरेन डिसाइड करता है। पर फ्री विल क्या है? फ्री विल शायद ये है कि आप नदी में तैरना सीख सकते हो, धारा के साथ या उसके खिलाफ। पानी को रोक नहीं सकते, पर अपनी चाल संभाल सकते हो। आज का जमाना, आज के समय में ब्रेन स्कैन मशीन बता सकती है कि कौन सा हिस्सा कब एक्टिव हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर जन्म का समय देखकर आपका टेम्परमेंट बता सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल वही है, अगर आपको पता चल जाए कि आपका ये पैटर्न है, तो क्या आप उस पैटर्न के गुलाम रहोगे या उसे समझकर
उसका फायदा उठाकर उस पर काम करोगे। एक गहरी सोच, शायद फ्री विल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं। शायद फ्री विल का मतलब ये है कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। न्यूरोसाइंस हमें दिखाता है कि दिमाग कैसे काम करता है। एस्ट्रोलॉजी एक सिंबॉलिक मैप देती है कि हम किस प्रकृति के हो सकते हैं। पर स्टेयरिंग व्हील वो शायद फिर भी हमारे ही हाथ में है। दोस्तों, सच इन तीनों के बीच कहीं ना कहीं है, आधा आगे आधा पीछे आधा बीच में। हम पूरी तरह आजाद तो नहीं हैं, पर हम पूरी तरह बंधे हुए भी नहीं हैं। हम एक पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, पर उस पैटर्न को समझकर उसे इवॉल्व करना शायद वही इंसानियत का सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसीलिए अगली बार जब आपको कोई फैसला लेना हो, एक पल रुककर जरूर सोचिए, ये मेरे दिमाग का इंपल्स है, मेरी कुंडली का पैटर्न है, या मेरी सजग सोच का चुनाव है। हो सकता है तीनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हो, और शायद यही जिंदगी का असली राज है। हम लिखे हुए भी हैं और लिख भी रहे हैं। जरा लिख कर देखिए।

जो गुजरे कैसे बताऊं, आजा रे आज जरा आ लहरा किया जरा, आंखों से दिल में समा आजा रे आज।

0: दिल में हमारा लहरा आ, लहरा के आ जरा आ आजादिया जरा लहरा के आ जरा।
1: चलो दोस्तों अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
2: शादी में कोई रिलेटिव मिलते ही बोलता है, बेटा कितना कमा लेते हो, शादी कब कर रहे हो, वेट थोड़ा बढ़ गया है ना। मैं सोचती हूँ आप लोग रिश्तेदार हो या एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल की कमिटी। और सबसे डेंजरस लाइन, तुमसे छोटी वाली की शादी हो गई क्या? मतलब कंपैरिजन का ओलंपिक चल रहा है और मुझे पता भी नहीं था कि मैं पार्टिसिपेंट हूँ।

पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार।

तुला राशि। तुला का मिशन है बैलेंस। ये कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं हर लेवल पे, हर कीमत पर। इनका साइकोलॉजिकल नीड है शांति, पर कभी कभी दूसरों को खुश करते करते अपनी आवाज खो देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत डिप्लोमेसी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका डिसीजन नहीं ले पाना। जीवन मंत्र, अपनी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी दूसरों की। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि सुपरफिशियल नहीं होते, इन्हें सच चाहिए और सिर्फ सच, पूरा सच। इनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पैटर्न है कंट्रोल और ट्रस्ट। ये तब तक दिल नहीं खोलते जब तक श्योर ना हो जाएं, पर जब ट्रस्ट हो जाता है तो लॉयल्टी अनमैच्ड होती है। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका ट्रांसफॉर्म होने की कैपेबिलिटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनके शक की आदत। जीवन मंत्र, हर इंसान दुश्मन नहीं है, कभी कभी जिंदगी को सरप्राइज देने दो। धनु राशि। धनु को बंधन पसंद नहीं है, इन्हें एक्सप्लोर करना है जगह भी विचार भी। इनका कोर नीड है फ्रीडम, आजादी, बट कभी कभी कमिटमेंट से बचने लगते हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी पॉजिटिविटी, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी रेस्टलेसनेस, किसी भी करवट चैन ना पा पाना। जीवन मंत्र, आजादी और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। मकर राशि। मकर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनका साइकोलॉजिकल बेस है अचीवमेंट, और इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए हर कीमत पर कभी कभी इमोशंस को साइड कर देते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका पेशेंस और इनका एम्बिशन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका इमोशनल डिस्टेंट हो जाना बार बार। जीवन मंत्र, सफलता तब और सुंदर लगती है जब किसी के साथ बांटी जाए। कुंभ राशि। विचारों के क्रांतिकारी। कुंभ अलग सोच के होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। इनका सबसे बड़ा पैटर्न है इनकी इंडिविजुअलिटी, पर कभी कभी इमोशनल कनेक्शंस कम हो जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनोवेशन, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बात बात पे अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना समाज से। जीवन मंत्र, बदलाव दिल से शुरू होता है, सिर्फ आइडिया से नहीं। मीन, सपनों के सौदागर। मीन इंट्यूटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनकी बेसिक नीड है इमोशनल यूनिटी, सब साथ चले, पर कभी कभी रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं ये लोग। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी इमेजिनेशन और इनकी संवेदनशीलता, और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बात बात पर भाग जाना, जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाना। जीवन मंत्र, सपनों को पंख दो पर जमीन मत छोड़ो। दोस्तों, राशियां लेबल नहीं होती, वो पैटर्न्स होती हैं। हर साइन एक कहानी है, हर साइन एक सफर है, और सबसे बड़ी बात, आप सिर्फ अपनी राशि नहीं हैं, आप अपनी चॉइसेस भी हैं। सितारे दिशा देते हैं, पर मंजिल पर चलना आपको ही है। आज अपनी राशि को समझिए, पर उसे एक्सक्यूज मत बनाइए, उसे एक अवेयरनेस बनाइए। क्योंकि जब इंसान अपनी प्रकृति को समझ लेता है, तब वो अपनी किस्मत को लिखने लगता है। राशियां आसमान में होती हैं, पर उनका सच दिल में जगता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी, पर असली रीजन बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ एफएम रेडियो और रेडियो तात्या भी 90.8 एफएम पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
1: दोस्तों, कई बार मैंने कई लोगों को वॉकिंग करने के दौरान यानी कि चलने के दौरान पीछे की तरफ चलते हुए देखा, तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों करते हैं ये। थोड़ा बहुत तो अंदाजा था कि ये भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आइए जानते हैं इसके कुछ और सच। सो बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की ओर चलने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इससे विभिन्न मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शारीरिक और मानसिक लाभ भी मिलते हैं। इससे शरीर के संतुलन और समन्वय में सुधार होता है। बैकवर्ड वॉकिंग यानी कि पीछे की तरफ चलना बुजुर्गों, वयस्कों या चोट से उबरने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होता है, क्योंकि ये गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है। पीछे की ओर चलने से घुटनों और पीठ के नीचे हिस्से पर तनाव कम हो जाता है। क्योंकि चलने के लिए छोटे कदमों की लंबाई की आवश्यकता होती है, इसलिए आगे चलने या दौड़ने की तुलना में जोड़ों पर कम प्रभाव पड़ता है। बैकवर्ड वॉकिंग मानसिक स्वास्थ्य जैसे दिमाग तेज होना, एकाग्रता और यहां तक कि मूड सुधार में भी योगदान करता है। पीछे की ओर चलने के अभ्यास को फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना बड़ा आसान है और उसे घर के अंदर या बाहर भी किया जा सकता है। ये गति में बदलाव और वर्कआउट की विविधता में शामिल है, जिससे रोजाना व्यायाम करना दिलचस्प और प्रेरक भी बन सकता है। इस संबंध में फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह आप ले सकते हैं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ इस बारे में? विशेषज्ञ कहते हैं कि मांसपेशियों की मजबूती से लेकर जोड़ों के तनाव को कम करने तक बैकवर्ड वॉकिंग बड़ी फायदेमंद है। क्योंकि पीछे चलने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है, इसलिए जोड़ों पर दबाव भी कम पड़ता है। मजेदार बात हुई।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।